0: तरह का सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
4: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

इसी भजन के साथ कार्यक्रम आराधना यही संपन्न होता है। मुझे दीजिए अनुमति। वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 27वीं तिथि, तदनुसार 18 अगस्त 2026 सुबह के 5:53 और 42 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: चलिए श्रोताओं, अब एक नजर डालते हैं हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर, जो कि इस प्रकार हैं। 6:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुप्रभात, पेश करेंगे मुनीष जौली।
1: धोनी के शेर लॉर्ड्स के मैदान पर क्या बरकरार रख पाएंगे अपनी T20 की बादशाहत, सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो के। धोनी के शेर लॉर्ड्स के मैदान
0: 7:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, जिसे लेकर हाजिर होंगे निखिल कुमार। 9:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम दिल के तराने, गाने नए पुराने, निखिल कुमार से। 11:02 पर कार्यक्रम होगा बॉलीवुड ट्रेल्स, जिसे लेकर आएंगी बबीता त्रिपाठी।

1:02 पर कार्यक्रम होगा रेनबो हेल्पलाइन। 2:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आशियाना, जिसे लेकर आएंगी ज्योतिका सिंह।

आइए सुनते हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो पर अब तक की मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर 2000 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। झारखंड सरकार ने 2024 की जेएसएससी सीजीएल परीक्षा और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की। पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे सिंधिया प्रमुख नामों में शामिल। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के तहत गणना का चरण पूरा हो गया है। दिल्ली सरकार ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सीटों के चरणबद्ध विस्तार के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार है। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। काठमांडू में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण 87 सड़कें बंद हैं। चंबा में लोहे का एक पुल ढह गया। आज भी कई जिलों में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत तैनात 200 से अधिक भारतीय शांति सैनिकों को उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका के साथ कूटनीतिक कोशिशें नाकाम रहती हैं तो वो हुर्मुज जल डमरू मध्य में पूरी तरह से आक्रामक सैन्य रुख अपना सकता है। नई दिल्ली में हो रही BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के आयुष शेट्टी ने चीन के दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी और मौजूदा चैंपियन शी युकी को हरा दिया। और गोल क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका पहली पारी में 284 रन पर सिमटी, भारत को 178 रन की बढ़त। FM रेनबो पर ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सुप्रभात, और इस सुबह के साथ, सावन के महीने की एक नई सुबह के साथ, हम आप सभी लोगों को एक बहुत ही शुभ दिन की आशा और वो दुआ देकर यहां भारत से, यहां दिल्ली में बैठे ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भेज रहे हैं। भले ही आप दिल्ली या इसके आसपास हों, भारत के किसी भी शहर में हों, किसी भी प्रांत, किसी भी कोने में हों, या फिर वो श्रोता जो हमें सुन रहे हैं भारत की इन सरहदों के पार न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से, आप भारत से जुड़े, आकाशवाणी रेनबो से जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात में हमारी ये कोशिश होती है कि हम कुछ ऐसी बातें करें जिससे एक बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ आप ये दिन की शुरुआत कर पाएं और आगे बढ़ें। आज सुप्रभात में एक बार फिर से हम आधुनिक काल के मॉडर्न टाइम्स के गुरु के पास जाएंगे, जो हमेशा सुप्रभात में आकर कोई ऐसी कहानी, वाक्या, कोई ऐसा उदाहरण देते हैं जिसमें छुपी होती है सकारात्मक सोच। कई बार कोई गुत्थी सुलझ ना रही हो तो सुलझाने का वो नुस्खा, वो रेमेडी आधुनिक काल के गुरु हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और कोई ना कोई उदाहरण अपने शिष्यों के साथ बात करते हुए उनके सवालों से जुड़ा जवाब, एक सकारात्मक ऊर्जा या फिर एक वो उत्तर दे बैठता है जिसकी तलाश मॉडर्न टाइम्स के गुरु के स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि शायद हमारे श्रोता भी तलाश कर रहे हो। तो आइए चलते हैं फिर से आधुनिक काल के उन गुरु के पास, और आज उनके सामने उनके शिष्य आशीष बैठे हैं। आशीष एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं जो IAS की तैयारी कर रहे हैं, IAS अफसर बनना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा सा बदलना चाहते हैं अपने देश के लिए, और अपने गुरु से आके सवाल पूछते हैं कि गुरु जी, हम देखते हैं कि एक उम्र के बाद कोई ना कोई ऐसा मार्गदर्शक मिल ही जाता है जो शायद अपने स्टूडेंट्स को अपने से भी बेहतर बनाना चाहता है, क्या ये बात सही है? गुरु मुस्कुरा के कहते हैं हां। फिर वो कहते हैं कि ऐसा कभी आपके साथ हुआ जब आपने किसी को कोई मार्गदर्शन दिया हो और आपको लगा हो कि आपकी कदर नहीं की गई, आपने बहुत मन लगाकर किसी भी शिष्य का मार्गदर्शन किया और उसने उसकी कदर ना की हो? गुरु ने कहा कि मैंने जिंदगी में बहुत हार देखी है। जब अपनी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा हार का सामना कर बैठो, और जब हार भी तुमसे ये कहे, वो पराजय भी तुमसे कहे कि अब बस, तो उसके बाद हर कदम जीत का होता है। तुम्हारी इस बात से जुड़ी एक कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूं।

सुनोगे? आशीष ने सर झुका के मुस्कुरा कर कहा, जी हां गुरुजी। और अब गुरुजी शुरू हो गए मॉडर्न टाइम्स के गुरुजी। उन्होंने कहा कि एक 70 वर्षीय एक जनाब अपनी पेंशन लेने के लिए घर से तैयार होते हैं और अपनी अर्धांगिनी को कहते हैं कि जल्दी से मेरा कुर्ता पजामा निकाल दो और मुझे बैंक जाना है, पेंशन लेने का समय आ गया है, मैं बैंक जा रहा हूं और आने में देर हो जाए तो परेशान मत होना। तैयार होते होते घड़ी देख रहे थे और कह रहे थे, आजकल के युवाओं को समय की कद्र कहां, छोटे छोटे काम में भी एक एक घंटा लगा देते हैं। ये कहकर वो जनाब जिनका नाम था राम निवास, वो बाहर जाने लगे तो उनकी पत्नी ने पीछे से कहा कि आपके इतने सारे विद्यार्थी, उनमें से किसी को क्यों नहीं कह देते कि बैंक चले जाओ और मेरी पेंशन ले आओ। राम निवास जी ने कहा कि जमाना बदल गया है, पहले जैसे विद्यार्थी अब कहां हैं जो अपने गुरु का मान रखते हैं, उन्हें तो मेरा नाम भी याद नहीं होगा। अब ये कहकर वो बैंक की तरफ चले गए। महीने का पहला सप्ताह होने के कारण बैंक में भीड़ भी थी और एक खाली कुर्सी देखकर वो बैंक में बैठ गए। बैंक में एक फॉर्म भरना होता है तो वो फॉर्म भरकर कैशियर वाले डेस्क के सामने खड़े हो गए और एक स्टाफ ने उन्हें आदर सहित कुर्सी पर बैठा दिया फिर से और खुद फॉर्म लेकर कैशियर के कैबिन में चले गए। वो कुछ समझ पाते तब तक बैंक का एक चपरासी उनके लिए चाय ले आया। उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि वो बिना चीनी की चाय पीते। चपरासी बोला, साहब ने बिना चीनी वाले ही चाय ही ऑर्डर की है सर आपके लिए। ये कहकर राम निवास जी के हाथ में चाय की प्याली उन्होंने थमा दी। जब राम निवास जी ने घड़ी देखी, 10:05 हो रहे थे बैंक में। सोचने लगे, चाय पिलाया है, लगता है 2 घंटे से पहले मेरा काम नहीं होगा, तभी तो ये चाय मेरे पास आई है। तभी एक लगभग 30-32 वर्षीय सज्जन ने आकर उनके पैर छुए और विड्रॉ की गई राशि उनके हाथ पर रख दी। इतनी जल्दी काम पूरा होता देख राम निवास जी चकित रह गए। उन्होंने उन सज्जन को धन्यवाद देते हुए परिचय पूछा तो उन्होंने कहा कि सर, मैं इस बैंक का नया मैनेजर हूं, एक सप्ताह पहले ही मैंने ज्वाइन किया है, लेकिन उससे पहले मैं आपका विद्यार्थी था सर। विद्यार्थी? राम निवास जी ने आश्चर्य से पूछा। उन्होंने कहा, जी सर, कुछ साल पहले आप सहारनपुर के उच्च माध्यमिक विद्यालय में 9वीं कक्षा के विद्यार्थी को गणित पढ़ाते थे, मैं भी उन्हीं में से एक था सर। गणित मुझे समझ नहीं आती थी सर, तो परीक्षा में पास होने के लिए मैंने नकल करना चाहिए और मैं पकड़ा गया था सर। प्रिंसिपल सर मुझे रस्टिगेट कर रहे थे और आपने उनसे कहा था कि ना समझी में विद्यार्थी तो गलती करेंगे ही, हम तो शिक्षक हैं ना, हमारा काम उन्हें शिक्षा देने के साथ साथ सही राह दिखाना भी है। तो मेरा नाम संजीव है सर और आपने तब कहा था कि संजीव की यह पहली गलती है, रेस्टिगेट कर देंगे तो इसका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, जो मेरे विचार से उचित नहीं है। ये आपने प्रिंसिपल से कहा था सर और आपने उनसे विनती की थी कि मुझे माफी देकर अगली परीक्षा में बैठने दिया जाए सर, तो प्रिंसिपल सर ने आपकी बात मान ली थी और आपने अलग से मुझे ट्यूशन पढ़ाया और मैं परीक्षा से अच्छे अंकों में पास हो गया और आज आपके सामने खड़ा हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाथ जोड़कर मैनेजर साहब ने अपने गुरु को धन्यवाद दिया और ससम्मान से उन्हें बाहर तक छोड़ने भी गए।

ये पूरी कहानी सुनाने के बाद मॉडर्न टाइम्स के गुरु ने अपने शिष्य आशीष की तरफ देखा और कहा कि जानते हो कि रामनिवास जी जब घर वापस आ रहे थे तो वो क्या सोचने लगे। आशीष समझ नहीं पाए तो बोला, मालूम नहीं गुरु जी। तो आधुनिक काल के गुरु ने कहा कि लौटते वक्त रामनिवास जी सोचने लगे कि जमाना चाहे कितना भी बदल जाए, जीवन भले ही मशीनी हो जाए, लेकिन विद्यार्थियों के दिलों में शिक्षक का सम्मान हमेशा रहेगा। आज बैंक मैनेजर ने अपने गुरु के प्रति सम्मान के साथ बता दिया। इसलिए मॉडर्न टाइम्स के गुरु ने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर मैं सच्चे मन से किसी का मार्गदर्शन करूं और वो भूल जाए। ये कुदरत का कानून है कि सच्चे मन से की गई कोई भी सेवा, भावना, मार्गदर्शन अधूरा नहीं रहता। सच्चा मन बंधन जोड़ता है।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

सुप्रभात सुन रहे हैं आप आकाशवाणी रेनबो पर, और हम यहाँ हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में बैठे हैं और यहाँ से प्रोग्राम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि हिंदुस्तान के, भारत के विभिन्न राज्यों में, विभिन्न शहरों में, विभिन्न प्रांतों में हमें सुना जा रहा है, और अगर आप हमारे साथ इस समय जुड़े हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ तमाम प्रोग्राम्स की एक श्रृंखला है आज, जिसके बारे में मैं आगे चल के बताऊंगा। हम सुप्रभात में बात कर रहे थे, मॉडर्न टाइम्स के गुरु हैं जिनके सामने उनके शिष्य आशीष बैठे हैं। उन्होंने अपने गुरु से पूछा कि आप इतने लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, कभी कोई निराशा नहीं हुई कि कोई स्टूडेंट आया और आपसे मार्गदर्शन लिया और शायद आपको पीछे मुड़ के ना देखा हो या आपको भूल गए हों? तो गुरु ने कहा एक कहानी के माध्यम से कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सच्चे मन से कोई काम किया गया हो, और वो बंधन जो बंधा है सच्चे मन से, किसी भी बंधन का होना, सच्चे मन से किसी भी काम का होना, वो टूट जाए या बिखर जाए। सच्चा मन बहुत शक्तिशाली होता है, कभी भी कोई बंधन तोड़ने नहीं देता, भले ही शब्दों का इस्तेमाल किया जाए कि अब बहुत हो गया, अब मुझे तुमसे नहीं मिलना, अब मैं जा रहा हूं। सच्चा मन सच्चा होता है। आशीष मॉडर्न टाइम के एक स्टूडेंट हैं, तो अपने गुरु से पूछते हैं, जो मॉडर्न टाइम के गुरु हैं, मुस्कुराते रहते हैं हमेशा। मुस्कुराते इसलिए हैं क्योंकि उनके गुरु ने एक बार उनसे कहा था कि अगर जीवन में कोई भी विपत्ति पड़े, मुस्कुराते रहो, खुशियां हो मुस्कुराते रहो, दुख हो मुस्कुराते रहो, निराशा हो, असफलता सामने आ जाए, मुस्कुराते रहो।

जीवन सुख दुख का एक संगम है, दुख थोड़ा ज्यादा है, सुख थोड़ा कम है, लेकिन मुस्कुराते रहो। अब आशीष ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी ये बताएं कि हम देखते हैं कि हमारा भारतवर्ष आगे नई दिशाओं में जा रहा है और आगे की नई दिशा कैसे होगी किसी को मालूम नहीं है, फिर भी लोग सिक्योर्ड होना चाह रहे हैं कि आगे के लिए ये बेहतर होगा। मालूम किसी को भी नहीं कि आगे क्या होने वाला है, ये सिर्फ परमात्मा को ही मालूम है कि आगे क्या होने वाला है। तो इस आगे बढ़ते समाज में जहां हम जैसे युवा हैं, तो हमें किस तरीके से हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं उनका ख्याल रखना चाहिए, या हमें उनके साथ डील करना चाहिए, उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। तो मॉडर्न टाइम्स के जो गुरु हैं उन्होंने कहा, आशीष देखो कुछ दिन पहले एक बात हुई मेरे सामने, मैं वो तुम्हें बताता हूं, शायद तुम्हें उसका भी उदाहरण मिल जाए। आशीष मुस्कुराकर ये तो जानता था कि मेरे मॉडर्न टाइम्स के गुरु जब भी कोई कहानी या कोई भी वाक्य सुनाते हैं वो दिलचस्प होता है, इसलिए मुस्कुराकर उन्होंने कहा, जी गुरु जी बताएं। तो उन्होंने कहा कि लगभग 90 वर्ष के एक इंसान वो सफर कर रहे थे, तो बार बार वो एक ही बात पूछ रहे थे किसी जगह के बारे में, और ये वाक्य है दिल्ली की मेट्रो का, जहां ये 90 वर्षीय बिल्कुल सामने बैठे थे और उनके साथ एक और सज्जन पुरुष बैठे थे जो उनकी मदद करना चाह रहे थे। तो मॉडर्न टाइम्स के गुरु ने कहा, वो लोग आपस में कुछ बात कर रहे थे लेकिन मेरा ध्यान तब गया जब 90 वर्षीय उन पुरुष के माथे पर इन जनाब ने अपना हाथ रखा और बोला, आप ध्यान से सोचिए कि आपको जाना कहाँ है। 90 वर्षीय पुरुष ने कहा, वही तो भूल गया हूं। और फिर उन जनाब ने पूछा, फिर आप जाएंगे कहां? 90 वर्षीय पुरुष ने बोला, एक बड़ा सा स्टेशन है ना। तो इन जनाब ने पूछा, ठीक है मैं कुछ नाम लेता हूं, शायद आपको याद आ जाए, नई दिल्ली, राजीव चौक। कई नाम लिए, उन्होंने सबको नकार दिया, ये नहीं, एक स्टेशन है ना सेंटर में, सेंटर में जहां पे गाड़ी बदलते हैं। तो इन जनाब ने कहा, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट? 90 वर्षीय उन पुरुष ने कहा, हाँ हाँ वहीं वहीं, थैंक यू थैंक यू। अब इन जनाब ने कहा, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से आप किधर जाएंगे? 90 वर्षीय पुरुष ने कहा, वो तो मुझे याद नहीं, मैं 90 ईयर का हूं, आई एम 90 ईयर्स ओल्ड, कुछ आप बताइए। तो जितनी भी बातें ये जनाब सोच रहे थे वो भूलकर 90 वर्षीय उन पुरुष की मदद करने के लिए तैयार हो गए। तो उन्होंने बड़े धैर्य से पूछा, आप पहले गए हैं, कितनी देर लगती है? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं गया हूं उस जगह पे काफी बार, नाम याद नहीं आ रहा। तो इन जनाब ने कहा, कहीं पटेल चौक तो नहीं? तो 90 वर्षीय जो पुरुष थे उनका चेहरा खिलखिला उठा, बोला, बिल्कुल बिल्कुल अब याद आ गया, पटेल चौक ही जाना है मुझे। इन जनाब ने एक स्लिप पर पटेल चौक लिख दिया और उनको दिया और कहा, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट आने वाला है, जब आप मेट्रो से बाहर निकलेंगे तो ये स्लिप किसी को भी दिखाइएगा, वो सही मेट्रो में आपको बैठा देगा। 90 वर्षीय उस पुरुष ने बहुत दुआएं दी और कहा कि पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं भूल जाता हूं ना। तो इन पुरुष ने कहा, कोई बात नहीं, आप ये स्लिप रख लो, आपको जहां जाना है जब भी याद आए ये स्लिप किसी को दिखा दें, इस पे उसी स्टेशन का नाम है जहां आपको उतरना है।

इतने में वो स्टेशन आता है। 90 वर्षीय पुरुष उतरते हैं, लेकिन ये जनाब उनके पीछे पीछे उतर जाते हैं। और जानते हो, मॉडर्न टाइम्स के गुरु ने कहा, मैं भी उनके पीछे पीछे उतर गया। उत्सुक था देखने के लिए अब कि आगे क्या होगा। देखा कि 90 वर्षीय उन पुरुष को उनके साथ बैठे वो सज्जन जो उनकी मदद कर रहे थे उन्हें दूसरी लाइन तक छोड़ने चले गए। उतरने से पहले उन्होंने कहा, संभाल के उतरिएगा, यही पटेल चौक है। अब 90 वर्षीय पुरुष ने आगे बढ़ने की बजाय पीछे मुड़कर मेट्रो का दरवाजा बंद होते होते अपनी ट्रेन को पकड़ने के लिए जब शीशे के अंदर से हाथ हिलाते हुए उन सज्जन पुरुष को आशीर्वाद दिया, तो लगा कि यही तो जिंदगी है। मॉडर्न टाइम्स के गुरु उन सज्जन के पास गए और बोला कि आपने उनकी मदद की ना। सज्जन पुरुष ने कहा, हां। मॉडर्न टाइम्स के गुरु ने इन सज्जन से पूछा, आपने उन 90 वर्षीय जनाब की मदद क्यों की, जान सकता हूं? उन्होंने कहा कि हम भारतीय हैं, एक बुजुर्ग अकेले यात्रा करे, अगर उसको उसके घर या गंतव्य तक हम पहुंचा दें तो और क्या चाहिए। हम बात करते हैं कि हमारा देश तरक्की करे, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारत में अगर हम हमारे सीनियर सिटीजन्स का ख्याल रखना शुरू कर दें, उनके बारे में सोचना शुरू कर दें, उनकी दुआ ही हमारे देश को सबसे आगे ले जाएगी। दे आर दी रिजर्वॉयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। इसलिए हमें अपनी सोसाइटी में अपने सीनियर्स के प्रति बहुत सम्मान और हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

सुप्रभात सुन रहे हैं आप, और आपने सुना कि किस तरीके से एक युवा आशीष अपने गुरु से, जो मॉडर्न टाइम्स के गुरु हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से उन्हें अपना रवैया रखना चाहिए सीनियर सिटीजन के लिए। एक कहानी के माध्यम से मॉडर्न टाइम्स के गुरु ने बताया कि पेशेंस चाहिए और उनके साथ खड़े रहें, क्योंकि कौन किस परिस्थिति में है इसका ध्यान किसी को भी नहीं है, कोई सोच भी नहीं सकता। इसलिए कुछ पूछना, कुछ कहना उससे बेहतर है कि बस अपना साथ उसे दे दो, उसके साथ रहो बस। मॉडर्न टाइम आधुनिक काल के गुरु मुस्कुराते रहते हैं और उनके शिष्य आशीष उनके सामने जो बैठे हैं, अब वो सवाल पूछते हैं कि गुरुजी, हम आज हम देखते हैं समाज में लोग आध्यात्म से कुछ ज्यादा ही जुड़ रहे हैं, क्या ये जरूरी है? मॉडर्न टाइम्स के गुरु युवा आशीष को समझाते हुए कहते हैं, तुम इस युग में पैदा हुए हो तो शायद तुम्हें लग रहा है कि इसी युग में भक्ति के मार्ग पर लोग चलते हैं, लेकिन ये तो सदियों पुराना मार्ग है, यहां पे चलना कोई नई बात नहीं। आशीष ने पूछा, भक्ति के मार्ग में कुछ लोग चलते क्यों हैं गुरुजी? गुरु ने कहा, कई बार हम इस जीवन में ये सोचकर आते हैं कि हम ही राजा हैं और हम ही प्रजा, हम ही हम हैं और कोई भी नहीं, हमें अपने तरीके से जिंदगी जीनी है। ख्याल बुरा नहीं है, लेकिन कुछ आगे चल के अंधेरा दिखता है, समझ नहीं आता जिंदगी है क्या। वही इंसान जो अपने आप से ये कहता है कि हम ही हम हैं और कोई भी नहीं, मेरा काम पहले हो जाए।

और किसी का नहीं। अपने आप को अकेला महसूस करने लगता है और तब जरूरी यह होता है कि वो भक्ति के मार्ग में चले और वो सवाल जो उसे पूछने थे उनके जवाब उसे मिलते हैं। विश्वास नहीं होता तो तुम खुद आंख बंद करके नमन करो उस शक्ति का, परमात्मा का, जिसे तुम मानते हो। क्या पता कोई ऐसा प्रश्न तुम्हारे अंदर हो जिसका जवाब तुम ढूंढ रहे हो और वो तुम्हें मिल जाए।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: तो पार्टी शुरू हुई है।
0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।

सुप्रभात सुन रहे हैं आप और आशा करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। कुछ ही देर में लगभग 7 बजे हिंदी में समाचारों की जो कड़ी है वो दोबारा से आप सुन पाएंगे और उसके बाद प्रोग्राम होगा गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR जिसे पेश करेंगे निखिल कुमार। 8 बजे हेडलाइंस होंगी और उसके बाद प्रोग्राम होगा गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। 9 बजे प्रोग्राम होगा दिल के तराने गाने नए पुराने और उसके बाद 10 बजे के बाद हिंदी की हेडलाइंस होंगी और उसके बाद वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम होगा मैचलेस म्यूजिक आवर। 11 बजे का समय होगा बॉलीवुड ट्रेल्स का जिसे पेश करेंगी बबीता त्रिपाठी। इसके बाद 12 बजे एक खास प्रोग्राम आपके बीच आएगा वेस्टर्न म्यूजिक का ही प्लेट कूल जिसे ईशा गोयल प्रस्तुत करेंगी और फिर रेनबो हेल्पलाइन दोपहर के 1 बजे आप सुन पाएंगे बबीता त्रिपाठी के साथ। हिंदी में हेडलाइंस हर घंटे आपके बीच आती रहेंगी। 2 बजे के बाद हेडलाइंस के बाद ज्योतिका सिंह आपके लिए प्रोग्राम लेकर आएंगी आशियाना और उसके बाद 3 बजे से लेकर 4 बजे तक रेडियो डॉक्टर ये लाइव फोन प्रोग्राम है जिसका आज का शीर्षक है फर्स्ट एड एंड ट्रॉमा केयर एक्सपर्ट्स हैं डॉक्टर संजय कुमार प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन और डॉक्टर सचिन माहेश्वरी जो क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं। ये प्रोग्राम 3 बजे होगा रेडियो डॉक्टर लाइव प्रोग्राम है फोन प्रोग्राम है और उसके बाद शाम को 4 बजे हिंदी में मुख्य समाचारों के बाद ज्योतिका सिंह अल्फा जेन करियर पाथवे से जुड़ा ये प्रोग्राम लेकर आएंगी आपके बीच। शाम के 5 बजे से लेकर न्यूज़ हेडलाइंस के बाद 6 बजे तक सिटी लाइट्स का प्रोग्राम गीतांजलि सोनी लेकर आएंगी। भारती डैंग 6 बजे हिंदी हेडलाइंस के बाद मैसेज मसाला मिक्स प्रोग्राम लाएंगी। उसके बाद दीपिका दास शाम के 7 बजे के बाद ये प्रोग्राम लेकर आएंगे।

मिलेगी जिसका नाम है यू आस फॉर इट। रात के 8 बजे हिंदी में समाचार होंगे और उसके बाद ये म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम होगा नॉनस्टॉप डांस हिट्स का। भारती डांग इसको लेकर आएंगी। रात्रि के 9 बजे प्रज्ञा तिवारी न्यूज हेडलाइंस पढ़ेंगी हिंदी में और उसके बाद आपकी याद आती रही ये प्रोग्राम है जहां 1990 और उसके बाद के जितने भी ट्रैक्स हैं खास खास ट्रैक्स यादगार ट्रैक्स उनको प्ले करेंगी। रात्रि के 10 बजे न्यूज़ हेडलाइंस होंगी और उसके बाद लिपिका दास एक प्रोग्राम लेकर आएंगी वेस्टर्न म्यूजिक का जिसका नाम है म्यूजिक मिक्स। ये हिट सॉन्ग्स हैं डिफरेंट जॉनर्स के। 11 बजे रात्रि को हिंदी में मुख्य समाचारों के बाद प्रज्ञा तिवारी प्रोग्राम लेकर आएंगी जो गजलों पर आधारित है जिसका नाम है रंगे महफिल। आशा करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया है। जुड़े रहिए हमारे साथ। मेरा नाम है मुनीश जॉली और मैं एक और प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR की दूसरी कड़ी जो 8 बजे शुरू होगी उसमें आपके बीच उपस्थित होऊंगा। आप रखिए अपना ख्याल। जी हाँ, मंगल का दिन है, मंगल ही को जन्मे, मंगल ही करते, वो है हनुमान। आइए ये गीत उनके नाम, ये बजरंग बाण उनके नाम का हम सब जपते हैं। एंड ऑफ कोर्स आपका दिन मंगल का है, बहुत मंगलमय हो यही आशा करते हैं।

नमस्कार, सुबह के 7 बज चुके हैं। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। झारखंड सरकार ने 2024 की जीएसएससी सीजीएल परीक्षा और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2014 से संचालित भर्ती परीक्षा की जाँच का आदेश भी दिया है। दिल्ली सरकार ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सीटों के चरणबद्ध विस्तार के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार है। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत गणना का चरण पूरा हो गया है। 24 अगस्त से 23 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। केरल में आज से विंझजम समुद्री बंदरगाह से सीधा निर्यात और आयात शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशान इस सेवा का उद्घाटन करेंगे। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर 200 से अधिक संचालकों को गिरफ्तार किया। दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत तैनात 200 से अधिक भारतीय शांति सैनिकों को उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। काठमांडू में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के पास ईरानी सेना से बातचीत के लिए गुप्त संपर्क होने का दावा खारिज कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण 87 सड़कें बंद हैं। चंबा में लोहे का एक पुल ढह गया है और आज भी कई जिलों में मूसलाधार वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल देहरादून में एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्केटिंग ट्रॉफी प्रतियोगिता 2026 का उद्घाटन किया और FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

एक बहुत ही खूबसूरत ट्रैक के साथ शुरुआत हुई इस प्रोग्राम की, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, आपके दोस्त आरजे निखिल के साथ में। और सबसे पहले इस प्रोग्राम की शुरुआत में आपको बताते हैं इतिहास के पन्नों में क्या छिपा हुआ है आज के दिन के लिए। तो वर्ष 1765 में आज का दिन था जब जोसेफ द्वितीय रोमन सम्राट बने थे। वर्ष 1800 में आज के दिन ही लॉर्ड वेलजली ने

कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी और वर्ष 1838 में अमेरिका का पहला नौसैनिक अभियान शुरू हुआ था। वर्ष 1868 में फ्रांस के खगोलविद पियरे जेंसिन ने हीलियम की खोज की थी। हीलियम के बारे में आपको बताऊं, ये एक ऐसा रासायनिक तत्व है जो रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और अक्रिय है, जो कि गैस की अवस्था में है और ये शून्य समूह यानी उत्कृष्ट गैसों में सबसे ऊपर आता है और हाइड्रोजन के बाद यही एक ऐसा तत्व है जो ब्रह्मांड में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में है। और आपको हम बता दें कि आज के दिन ही वर्ष 1924 में फ्रांस ने जर्मनी से अपनी सेना को बुलाना शुरू किया था। वर्ष 1940 में आज का दिन था जब पहली बार मौसम मानचित्र का टेलीविज़न पर प्रसारण हुआ था। वर्ष 1949 में आज के दिन हंगरी में संविधान लागू हुआ और वर्ष 1951 में भारत में पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में पहली बार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना हुई थी और वर्ष 1973 में अमेरिका के बोस्टन में पहले एफएम रेडियो स्टेशन के निर्माण को मंजूरी दी गई थी और वर्ष 2000 में आज के दिन ही इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज़ को 2 दिन में हराकर टेस्ट क्रिकेट का मैच जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। और आज के दिन ही वर्ष 2012 में नाटो के हवाई हमले में अफगानिस्तान के 13 आतंकवादी मारे गए थे। तो ये इतिहास की कुछ ऐसी प्रमुख घटनाएं थी जिन्होंने अपनी खास पहचान बना करके रखी हुई है। आज के दिन के लिए आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल 102.6। फिलहाल एक और बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपके लिए हम प्ले करते हैं, इसे आप इंजॉय कीजिए।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल, प्रोग्राम चल रहा है गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, आपके दोस्त आरजे निखिल के साथ में। और अब समय है कुछ जानी मानी हस्तियों को याद करने का। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हम याद कर रहे हैं श्री नारायण चतुर्वेदी को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। हिंदी के साहित्यकार, प्रचारक, सर्जक और पत्रकार रहे और आजीवन हिंदी भाषा के लिए समर्पित रहे और काम करते रहे। वे सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे, जो एक बहुत ही जानी मानी पत्रिका रही है। उन्होंने राष्ट्र को हिंदीमय बनाने के लिए जनता में भाषा की जीवंत चेतना को बढ़ावा दिया। और आपको बता दें कि अपनी अमूल्य हिंदी सेवा के माध्यम से उन्होंने भारत रत्न मदन मोहन मालवीय और पुरुषोत्तम दास टंडन की योजनाओं और लक्ष्यों को आगे बढ़ाया था। उन्होंने अपने जीवन में दो कविता संग्रह तैयार किए थे और वो लिखा उन्होंने श्रीवर के नाम से, जिन्हें हम सभी रत्नदीप और जीवन कण के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी भाषा से उन्होंने अनुवाद किया विश्व का इतिहास और शासक का। और आपको बता दें कि उनके संपादकीय लेखों का संग्रह पावन स्मरण 1976 में प्रकाशित हुआ था। और आपको बता दें श्रोताओं की आज ही हम याद कर रहे हैं अच्युत पोद्दार जी को, जो कि एक जाने माने चरित्र अभिनेता रहे हैं हिंदी और मराठी फिल्मों के। आज उनकी भी पुण्यतिथि है। उन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया है और ख़ास बात यह है कि जहां लोग ये बहुत ही कम उम्र में अपनी करियर की शुरुआत फिल्मों से करना चाहते हैं, वहीं पर अच्युत पोद्दार जी की फिल्मी करियर की जो शुरुआत हुई थी वो 44 वर्ष की उम्र में हुई थी, वर्ष 1980 की फिल्म आक्रोश से। इससे पहले उन्होंने इंडियन ऑयल में लगभग 25 वर्षों तक काम किया और अभिनय का शौक था, इसलिए उन्होंने थिएटर और रंगमंच के साथ साथ फिल्मों की और भी कोशिशें जारी रखी। अपने लंबे फिल्मी अभिनय करियर में 125 से अधिक फिल्मों में उन्होंने काम किया और कई सारे टीवी धारावाहिकों में भी आपने उन्हें देखा होगा। उनकी फिल्मों की बात करें तो अर्धसत्य, तेजाब, रंगीला, इश्क वास्तव, हम साथ साथ हैं, परिणीता, लगे रहो मुन्ना भाई, भूतनाथ, दबंग 2 और 3 इडियट्स जैसी फिल्में शामिल हैं। 3 इडियट्स में एक प्रोफेसर की छोटी सी भूमिका थी जिसमें उनका प्रसिद्ध संवाद था जो आजकल लोग बहुत पसंद करते हैं, अरे कहना क्या चाहते हो। जी हाँ, ये वही शख्स हैं। फिलहाल एक खूबसूरत सा गीत आपके लिए हम प्ले करते हैं रेनबो पर, इसे आप एंजॉय कीजिए। इसके बाद बातें आपसे और भी होंगी, और भी जानकारी और कुछ खास है आपके लिए 7:30 बजे के आसपास। तब तक इंतज़ार कीजिए और सुनिए इस ब्यूटीफुल से ट्रैक को, और इसके बाद कुछ और बातें।

हर्षो, तो आपको बता दें कि आज जयंती है पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर की, जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान गायक, संगीताचार्य और संगीत के प्रचार प्रसारक रहे हैं। उनके पिता दिगंबर गोपाल स्वयं भजन और कीर्तन गाते थे, इसलिए बचपन से ही उन्हें संगीत का वातावरण मिला। हालांकि एक दुर्घटना में उनकी आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन इसके बावजूद जितनी भी कठिन परिस्थितियां उनके सामने आई, उन सभी का सामना करते हुए उन्होंने संगीत की शिक्षा जारी रखी। उन्होंने 12 वर्षों तक संगीत की कठोर साधना की थी और भारतीय संगीत के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वर्ष 1901 में लाहौर में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना और अनेक महान संगीतकारों को उन्होंने शिक्षा दी थी। उनके प्रमुख शिष्यों में पंडित ओंकारनाथ ठाकुर, विनायक राव पटवर्धन और नारायण राव व्यास शामिल हैं। उन्होंने संगीत को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए सार्वजनिक संगीत कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया था और उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी, जिसमें संगीत बाल बोध, संगीत तत्वदर्शक, राग प्रवेश और भजनामृत लहरी शामिल हैं। और फिलहाल एक गीत हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं, इसके बाद आप सुनेंगे BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप की अपडेट। तो ये सब सुनने के लिए आपको रहना है हमारे साथ आकाशवाणी के FM रेनबो चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए गीत भी प्ले करेंगे और तमाम आपको जानकारी भी देंगे। बने रहे रेनबो पर।

0: अजीब है ना, जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब पीछे छूट जाने का डर इतना बड़ा हो जाता है कि हमें ये दिखाई भी नहीं देता कि हम खुद कितनी दूर आ चुके हैं। कल तक जिसे पाने के लिए पूरी जान झोंक दी थी, आज वो उपलब्धि छोटी लगने लगती है। शायद तरक्की की यही पहचान है। आज भारतीय बैडमिंटन ठीक उसी मुकाम पर खड़ा है। 2009 में जब भारत में आयोजन हुआ था प्रतिष्ठित BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप का, तो 19 वर्षीय साइना नेहवाल पदक के लिए भारत की एकमात्र उम्मीद थी। वो भी दावेदारों की पहली कतार में नहीं थी। प्रकाश पादुकोण और पुलेला गोपीचंद की कहानियां बीते कल के किस्से लगते थे, लेकिन आज 2026 में जब ये कारवां लौट कर भारत आया है तो उम्मीदवारों की एक लंबी श्रृंखला है। इसीलिए तो इस टूर्नामेंट के पहले दिन सोमवार होने के बावजूद अच्छी खासी संख्या में बैडमिंटन प्रेमी नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पहुंचे। और फिर कोर्ट पर जो नजारा देखने को मिला वो दर्शकों के लिए किसी सौगात से कम नहीं था। भारत के 21 वर्षीय आयुष शेट्टी ने किया एक ऐसा उलटफेर जिसे देख पूरा विश्व चौंक गया और भारतीय प्रशंसक खुशी से झूम उठे। 21 वर्षीय आयुष ने एक कश्मकश भरे मुकाबले में रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन चीन के शी यू की को मात दी। आयुष का मैच पॉइंट स्कोर करते ही इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में मानो जोश का एक विस्फोट हुआ। कहते हैं पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। फरवरी 2025 में 19 वर्ष की आयु में पहली बार आयुष शेट्टी का सामना शियुकी से हुआ था इंडोनेशिया ओपन में, और उस टूर्नामेंट में भी आयुष ने शियुकी को एक कड़ी चुनौती दी थी लेकिन उनको हरा नहीं सके थे। लेकिन इस बार अपनी गलतियों से सीख पूरी तैयारी के साथ आए थे आयुष, ऐसा उन्होंने कहा। मैच के दौरान आयुष को चोट भी लगी, उंगली से खून भी बहने लगा। जब कोर्ट साइड डॉक्टर को उन्होंने बुलाया तो फैंस चिंतित हुए, लेकिन आयुष ने मैच के बाद इस बात का आश्वासन दिया कि उनकी चोट गंभीर नहीं थी।
1: आई थिंक आई वाज ब्लीडिंग ऑन माय

0: आयुष के हर स्मैश, हर ड्रॉप शॉट, हर पॉइंट जीतने पर गड़गड़ाती हुई तालियों से जब स्टेडियम गूंजता तो उससे उन्हें एक अलग तरह की ऊर्जा मिलती।
1: The crowd was really, you know, behind me and it was giving me the energy. I was so bit tired, but I think the crowd cheering like that, I think gave me a lot of energy.
0: ऐसा ही कुछ पुरुषों के डबल्स वर्ग में अपने जोड़ीदार हरिहरन अमसा करुणन के साथ पहला मुकाबला जीतने पर एम अर्जुन ने भी कहा।
2: बहुत अच्छा था, कोर्ट के अंदर जाने से पहले वी डिडंट नो, एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना क्राउड आएगा। हम लोग का नाम अनाउंस करने के बाद क्राउड चिल्लाना शुरू किया।
0: अर्जुन और अमसा करुणन के सामने आयरलैंड से आने वाली स्कॉट गिल्डिया और पॉल रेनॉल्ड्स की जोड़ी थी जो मैच के दौरान चोट के चलते रिटायर हो गई। हालांकि उससे पहले भी मैच में भारतीय जोड़ी का दबदबा कायम था। इसके चलते अमसा करुणन और अर्जुन राउंड ऑफ 32 में प्रवेश कर चुके हैं। दूसरी तरफ इस वर्ग में गोल्डन बॉयज की जोड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रांकी रेड्डी को बाय मिला है। वो भी राउंड ऑफ 32 में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं महिलाओं की। जाहिर सी बात है, सबसे बड़ी स्पॉटलाइट पीवी सिंधु पर होने वाली थी। राउंड ऑफ 64 में उनके सामने आयरलैंड की सोफिया नोबल की चुनौती कोई खास कड़ी नहीं मानी जा रही थी और कोर्ट पर भी वही देखने को मिला। सिंधु ने दो सीधे सेटों में आयरिश प्रतिद्वंदी को मात देकर अगले राउंड में अपनी जगह बनाई। लेकिन मैच के बाद उन्होंने बताया कि क्योंकि वो इस अपोनेंट के खिलाफ पहली बार खेल रही थी, उन्हें सतर्क रहना था और साथ के साथ कोर्ट की कंडीशंस को समझने के लिए ये मुकाबला बेहद जरूरी था।
3: Of course, I'm playing with her for the first time, and I think more than anything, it was important for me to just focus on what I do and what I play and how I play. I mean, I was excited to get onto the court happening here in India, so it was really good to you know get onto the court, and I could see a lot of people cheering and supporting me. I think that gave me a lot of confidence. I mean, irrespective of whoever the opponent is, it was just that I had to just play my game and give my best. It was important for me to get used to the court conditions and see how it is and how the shuttle is. So I was actually figuring out how it is and what it is. It's not like the best element. Obviously, we will play the best badminton, but like sometimes, you know, when you actually get onto the court, you need to understand the court conditions. So today, I think that was the first thing for me that came into my mind. But I think I've managed it well and the court conditions are pretty good.
0: Sindhu, BWF World Championships 2026 में भारत के लिए पदक की एक प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं। लेकिन सिंधु का कहना है कि वो अभी उतनी दूर तक की नहीं सोच रही हैं और उनका फोकस अगले मैच पर है।
3: मेडल तो काफी दूर है अभी मेरे लिए, बस एक मैच एट अ टाइम, वन मैच एट अ टाइम, एंड मैं बस हर एक मैच में अच्छा खेलना है, 100% देना है, और अभी फर्स्ट मैच हुआ है, यू नो आई नीड टू फोकस ऑन द नेक्स्ट मैच, एंड इट्स जस्ट वन मैच एट अ टाइम फॉर मी, सो आई जस्ट हैव टू गिव माय बेस्ट।
0: जहां एक तरफ पहले भी वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में मेडल जीत चुकी दिग्गज सिंधु है, तो दूसरी तरफ कुछ युवा खिलाड़ी भी भारत का प्रतिनिधित्व इस टूर्नामेंट में कर रहे हैं। युगल वर्ग में काविप्रिया सेल्वम और सिमरन सिंघी की जोड़ी अपना पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल रही हैं। उन्होंने भी शानदार शुरुआत करते हुए स्पेनिश जोड़ी को दो सीधे सेटों में मात दी। मैच के बाद सिमरन से हमने जानने की कोशिश की कि कोर्ट की कंडीशंस किस प्रकार है।
4: फर्स्ट टाइम है और सब क्राउड हमारा, एंड स्टार्ट में थोड़ा डिफेंसिव स्टार्ट किया, कोर्ट कंडीशंस थोड़ा एडजस्ट नहीं हो रहा था बिकॉज एक साइड से इट्स वेरी स्लो और बाकी फास्ट है, तो एडजस्ट होने में टाइम लग गया एंड वी वर प्लेइंग वेरी डिफेंसिव। देन आफ्टर 10-12 पॉइंट्स वी चेंज द गेम, हमने डिसाइड किया हम ऑल आउट अटैक करेंगे एंड यू नो वी आर गोना कीप इट डाउन, एक जन आगे जाके कीप करेगा और अटैक करेगा, तो हमने एंड में गेम चेंज किया, वी वर डाउन बट बहुत लेट चेंज हुआ, सो बट देन लेटर वी कैच इट ऑन एंड वी विन द मैच।
0: युगल वर्ग में ही चोट के बाद वापसी कर रही ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने कमाल का प्रदर्शन किया। ट्रीसा की चोट के चलते कुछ अहम टूर्नामेंट्स में ये जोड़ी शिरकत नहीं कर पाई थी, जिससे काफी मायूस और हताश थी।
5: I think obviously it's sad missing so much of tournaments and our rank also went little bit down. I think those situations it was, I was mentally preparing for that, I just need to recover and just come back and play, and obviously these kind of prestigious tournaments after the injury I am playing, and it makes me more feeling more happy and so excited.
0: लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरजोर वापसी की है. गायत्री के पिता और कोच पुलेला गोपी चंद कोर्ट साइड पर मौजूद थे और उनकी उपस्थिति में स्पैनिश जोड़ी को

0: 21-9 और 21-13 से इन दोनों ने मात दी। हाँ, भारतीय प्रशंसक लगातार तालियों की गड़गड़ाहट से इनकी हौसला अफजाई करते रहे, जिससे उन्हें मोटिवेशन मिला और उनका बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिला।
1: इट्स अमेजिंग, आई मीन इट्स अमेजिंग टू प्ले इन इंडिया, यू नो द होल स्टेडियम सपोर्टिंग फॉर यू, चीयरिंग फॉर यू, इट फील्स ग्रेट। बहुत अच्छा लगा सर, पहला मैच खेल के इंडिया में, वो भी तो बहुत स्पेशल फील हो रहा है। और हाँ, बहुत अच्छा था फर्स्ट गेम, नेक्स्ट राउंड के लिए वेट कर रहे हैं।

नाम किया है। सोमवार को राउंड ऑफ 64 के मुकाबले में आसान सी जीत भी दर्ज की, लेकिन यूंग का कहना है अभी वो पूरी तरह से फिट नहीं है। उसके बावजूद ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपने देश का परचम लहराने का उनका जज्बा है जो उनको यहाँ लेकर आया है। और मंगलवार को भारत का तिरंगा ऊंचा लहराने के उद्देश्य से BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में अपने सफर की शुरुआत करेंगे लक्ष्य सेन और उन्नति हुडा। साथ के साथ भारतीय फैंस की नजर मिक्स डबल्स पर भी होगी, जहां ध्रुव कपिला और तनीषा क्रास्टो की जोड़ी को तो बाय मिला है, लेकिन आसिफ सूर्या और अमृता प्रथमेश और रोहन कपूर और ऋत्विका गाड़े की जोड़ियां राउंड ऑफ 64 में अपना पहला मुकाबला खेलेगी। प्रोड्यूसर शाहनवाज खान और एडिटर वंदना के साथ दर्पण टीकिया और मोहम्मद शाहिद आजमी की खास रिपोर्ट।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: NCR EPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

वेलकम बैक आकाशवाणी के एफएम रेनबो 102.6 पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग एलियंस। यार श्रोताओं, आपको बता दें कि आज जयंती है लेफ्टिनेंट कर्नल ए बी तारापोरे की, जिनका पूरा नाम था अर्धशिर बरजारी तारापोरे। भारतीय सेना के महान वीर सैनिकों में से उनकी गिनती होती है, आज उनकी जयंती है। वे पूना हॉर्स रेजिमेंट के अधिकारी थे और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने असाधारण वीरता और नेतृत्व का परिचय दिया था। आपको बता दें, सियालकोट सेक्टर के फिल्लौरा और चाविंडा के युद्ध के दौरान उन्होंने गंभीर परिस्थितियों में सेना का नेतृत्व किया और घायल होने के बावजूद युद्ध भूमि को नहीं छोड़ा और अपने इतिहास को बहुत ही बेहतर बनाते हुए सैनिकों का उत्साह बढ़ाया और लगातार लड़ते रहे। 1965 के युद्ध में जो उन्होंने अद्भुत साहस दिखाया और अपनी एक टुकड़ी के साथ में बड़ी संख्या में दुश्मन के टैंकों को नष्ट किया और फिर 16 सितंबर 1965 को चाविंडा के युद्ध में वे वीरगति को प्राप्त हुए और उनकी वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए ही भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया था, जो कि भारत का सर्वोच्च सैन्य वीरता सम्मान है। और श्रोताओं को बता दें कि आज ही हम याद कर रहे हैं गुलजार साहब को, जिनका आज जन्मदिन है। वो हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध गीतकार, कवि, लेखक, पटकथा लेखक और फिल्म निर्देशक के तौर पर जाने जाते हैं। और आपको बता दें कि उन्होंने मेरे अपने, अचानक, आंधी, मौसम, अंगूर, इजाजत और लेकिन जैसी कई फिल्मों का निर्देशन भी किया था और साहित्य और सिनेमा के क्षेत्र में अनेक प्रतिष्ठित सम्मान भी उन्होंने प्राप्त किए थे। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उनके गीतों की बात करें तो मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास है, तेरे बिना जिंदगी से, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी और दिल से रे जैसे अनेक लोकप्रिय गीत हैं। और जो गीत बैकग्राउंड में बज रहा है उसके लिए उन्हें ग्रैमी पुरस्कार

और श्रोता, आपको बता दें कि आज ही जन्मदिन है जाने माने पंजाबी गायक, गीतकार और संगीतकार दलेर मेहंदी का, जो अपने जोशीले गीतों और भांगड़ा संगीत के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हुए। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी और आगे चल करके भारत में पंजाबी पॉप संगीत को लोकप्रिय बनाने और विदेशों में ख़ास तौर पर लोकप्रिय बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका जो पहला एल्बम था वो बोलो तारा रा था, जो 1995 में आया था, जिसने चार्ट बस्टर में उन्हें रातों रात लोकप्रिय बना दिया था। उसके बाद कई सारे उन्होंने गीत गाए और बनाए जिनको फिल्मों में भी इस्तेमाल किया गया, और फिल्मों में जब उन्होंने गीत गाना शुरू किया तो एक नई पहचान सामने आई अपनी, ख़ास तौर पर ऊर्जावान आवाज़, एक विशेष अंदाज, उनकी भांगड़ा शैली ने उन्हें बहुत ही ज़बरदस्त पहचान दिलाई थी। वैसे तो कई सारे उनके गीत हैं जो काफ़ी पसंद किए जाते हैं, लेकिन ख़ासतौर पर जो मुझे अच्छा लगता है वो ये वाला है। ये मैं आपके लिए प्ले करता हूँ, सब एन्जॉय कीजिए रेनबो पर।

0: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

और श्रोताओं, फिलहाल आपको हम थोड़ी सी जानकारी देते हैं खेल जगत की कुछ गतिविधियों के बारे में। जैसे बात करते हैं भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे पहले क्रिकेट टेस्ट मैच की, जो खेला जा रहा है गोल में, और इसमें भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 विकेट अपने पूरे खोए और 462 रन बनाए थे पहली पारी में, जिसमें देवदत्त पड्डिकल की शानदार 167 रन शामिल थे और केएल राहुल ने 82 रन बनाए थे। इसके बाद जब श्रीलंका की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो उनकी पूरी टीम 284 रन पर ही सिमट गई, जिसमें सोनल दिनुष्का ने 100 रन की पारी खेली और 80 रन बनाए थे इस मैच में निरुशन टिकोलिया ने। अब इसके बाद जो श्रीलंका की टीम है वो 178 रन पीछे है, तो ऐसे में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा देखना ये कि इस मैच का रिजल्ट क्या निकलता है, खासतौर पे जब आज खेल का चौथा दिन है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो 102.6 प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली से, और फिलहाल हम लेते हैं आपसे थोड़ी देर के लिए अनुमति, इजाज़त, बने रहें आप रेनबो पर।

तो 8 बज चुके हैं, आइए सुनते हैं आकाशवाणी रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। झारखंड सरकार ने 2024 की JSSC CGL परीक्षा और TDPL एजेंसी द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। दिल्ली सरकार ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सीटों के चरणबद्ध विस्तार के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार है। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत गणना का चरण पूरा हो गया है। 24 अगस्त से 23 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने सिक्किम में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए वर्ष 2002 को आधार वर्ष निश्चित करने के निर्वाचन आयोग के निर्णय में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। केरलम में आज से विंझिजम समुद्री बंदरगाह से सीधा निर्यात और आयात शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशान इस सेवा का उद्घाटन करेंगे। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत तैनात 200 से अधिक भारतीय शांति सैनिकों को उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। काठमांडू में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के पास ईरानी सेना से बातचीत के लिए गुप्त संपर्क होने का दावा खारिज कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण 87 सड़कें बंद हैं। चंबा में लोहे का एक पुल ढह गया। आज भी कई जिलों में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल देहरादून में एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्केटिंग ट्रॉफी प्रतियोगिता 2026 का उद्घाटन किया। ये प्रतियोगिता गुरुवार तक चलेगी। और FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। आकाशवाणी रेनबो पर ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर सुन रहे हैं आप। एक घंटे ये प्रोग्राम चलेगा। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, मैं हूं आपका दोस्त मुनीश जौली।

गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर सुन रहा, मेरा नाम है मुनीश जौली और जानते हैं कि कल दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने दिल्ली नगर निगम का जो एक खास अभियान है वो शुरू किया और दिल्ली को कूड़े से आज़ादी स्वच्छता अभियान 2026 का शुभारंभ किया। ये अभियान पूरी दिल्ली में 2 अक्टूबर 2026 तक चलाया जाएगा और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता केवल किसी एक विभाग या एजेंसी की जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की साझा जिम्मेदारी है। ये वाला जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया इसमें बहुत दम है कि स्वच्छता केवल किसी एक विभाग या एजेंसी की जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की साझा जिम्मेदारी है। इससे मुझे याद आया कि एक ऐड आता था टेलीविजन में जहां कूड़ा इकट्ठा करने के लिए जो कर्मचारी है वो घर पे आते हैं, बेल बजाते हैं और अंदर से मम्मी पूछती हैं अपने बच्चे से, बेटा कौन है? तो बच्चा कहता है मम्मी कूड़े वाला है। तो मम्मी उसे करेक्ट करती हैं, कहती हैं बेटा कूड़ा फैलाने वाले तो हम हैं, वो तो कूड़ा साफ करने वाला है। मेरे ख्याल से इस दिल्ली को जब इस मॉडर्न एरा की हम बात करते हैं तो आपका और मेरा फर्ज बनता है कि हम अपनी कैपिटल सिटी को साफ रखें। कैसे साफ रखना वो आप भी जानते हैं।

सुबह का प्रोग्राम है, लोग कहते हैं प्राइम टाइम शो आप कर रहे हो, तो यहाँ ज्यादा बोलना मत, कम बोलना, संगीत ज्यादा सुनाना, और ये भी साथ साथ बताना कि हम कौन हैं।

गुड मॉर्निंग, दिल्ली एनसीआर सुन रहा है। मेरा नाम है मुनीश जौली और दिल्ली और इसके आसपास से जुड़ी कुछ खबरें इस प्रोग्राम में जो आज न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बनी है वो बताएंगे।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
3: अरे सर, फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
2: इम्पॉसिबल
3: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, एक घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
5: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो।
6: दोस्तों, आजादी का पर्व 15 अगस्त बड़ी धूमधाम से मनाया गया, हर घर तिरंगा। और अच्छा लगा कि लोग घरों में नहीं बल्कि अपनी गाड़ियों में, स्कूटर में, मैंने तो एक बाईसाइकिल में देखा कि आगे पीछे झंडा लगाकर एक बहुत ही पेट्रियोटिक इंसान सड़क पे जा रहे थे। लेकिन 15 अगस्त के बाद ही ये पर्व खत्म नहीं होता। मैं वो गीत चला रहा हूं अभी जो लाल किला में 15 अगस्त को बहुत छाया रहा, एंड इट बिकेम वेरी इमोशनल फॉर ऑलमोस्ट एवरीबडी। और इस गीत को गाया बी प्राक ने, और हर एक शब्द में, एक लिरिक में देश प्रेम की भावना है।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर सुन रहा, मेरा नाम है मुनीश जॉली। दो दिन पहले मेरी आंख में कुछ घुस गया और पहलवानी दिखाते हुए, दिल्ली की पहलवानी और किसी पे तो नहीं दिखाई, अपनी आंखों में दिखा दी और आंख हो गई लाल। और जब आई स्पेशलिस्ट के पास गए, अच्छी अच्छी बातें की, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, रगड़ना नहीं चाहिए, और साथ ही साथ एक खबर जानने में मिली कि देश में रेटिना विशेषज्ञों की कमी हो रही है और उसको दूर करने और रेटिना रोगों की देखभाल में मानक स्थापित करने के लिए एम्स के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंटर फॉर ऑप्थेल्मिक साइंसेज ने विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। और सेंटर के एक संवाददाता ने यह बताया कि एम्स और रोच इंडिया हेल्थ के इंस्टीट्यूट की साझेदारी से विकसित ये भारत का अपना एक पहली तरह का अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र बनाया जा रहा है, जहां पे सेंटर का लक्ष्य अगले 3 वर्षों में 100 से अधिक नेत्र रोग विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करना है। रेटिना से जुड़े मामले आते जा रहे हैं और हमारे यहां जो स्पेशलिस्ट हैं, दे आर ऑलरेडी टू लुक आफ्टर अस, लेकिन साथ ही साथ बढ़ती दुनिया, मॉडर्न माहौल, शरीर हमारा वही है, वो मॉडर्न नहीं हो रहा, उसका ख्याल रखना जरूरी है।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
3: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
4: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
3: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
5: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
6: ठीक है,
5: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
4: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
3: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
7: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
3: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
4: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
3: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
4: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
3: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
4: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
3: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
4: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
8: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
9: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर सुन रहा है, मेरा नाम है मुनीश जौली और जानते हैं कि संचार मंत्रालय ने कल कहा कि कतर में रहने वाले भारतीय अब कतर पोस्ट आउटलेट के जरिए भारत में यूपीआई सक्रिय बैंक खाते में सीधे पैसे भेज सकते हैं। इससे कतर, जिसको बहुत से लोग कतार कहते हैं, कतर में नौकरी, कारोबार या अन्य पेशा कर रहे भारतीयों के लिए अपने परिजनों को राशि भेजना आसान हो गया और इस सेवा के तहत प्रत्येक लेन देन की अधिकतम सीमा 1,00,000 रुपए है। मंत्रालय के अनुसार यूपीआई द्वारा संचालित पीओएस ट्रांसफर पर आधारित नई राशि भेजने की सेवा के जरिए कतर में ग्राहक कतर पोस्ट आउटलेट के जरिए भारत में पैसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति की यूपीआई आईडी और पहचान की जानकारी देकर रकम भेज सकते हैं। एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट मूव।

0: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

गुड मॉर्निंग जली एनसीआर सुन रहे हैं आप और दिल्ली या उसके आसपास के इलाकों में हैं तो आपको पता होगा कि बैडमिंटन की वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है वो चल रही है दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में और वहां जाके आप ये मुकाबले देख सकते हैं। और कल ही भारत के मतलब एक जाबाज कहूँगा एक खिलाड़ी ने जिन्हें चीन के पहले वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराया और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ शेट्टी की जिन्होंने एक बहुत बड़ा मुकाबला यहाँ खेला एंड ऑफकोर्स पीवी सिंधु ने अपना एक मुकाबला खेला और वो अपना एक मुकाबला जीती। भारत के जो टॉप सीडेड प्लेयर्स हैं वो शिरकत कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में और मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा मौका है जहां पे वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप को हम लोग देख सकते हैं। दूसरी तरफ हॉकी का भी एक वर्ल्ड कप चल रहा है जहां भारत कल इंग्लैंड से हारा 4-2 से। तीसरे क्वार्टर में शुरुआत हुई थी 2-2 के बराबरी से लेकिन उसके बाद 3-2 हुआ और उसके बाद 4-2 से इंग्लैंड ने भारत को पछाड़ा। एक बहुत ही टैक्टिकल हॉकी खेलने को मिली। साथ ही साथ एक और वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही है जहां पे भारत की महिला टीम भी शिरकत कर रही है हॉकी में ही। और अगर हम बाकी स्पोर्ट्स की बात करें तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो पहला टेस्ट मैच चल रहा है भारत ने वहां पे लीड तो ले ली है लेकिन 178 रन की बढ़त। क्या भारत उस टेस्ट मैच को जीत पाएगा या नहीं ये बहुत बड़ी एक सवालों के घेर में भारतीय टीम जुड़ी है लेकिन बहुत अच्छा प्रदर्शन वो गोल में कर रही है श्रीलंका में।

गुड मॉर्निंग जलियन सी आर सुन रहे हैं आप, और ये बताना चाहूंगा कि इसके बाद निखिल अपना प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, दिल के तराने, गाने नए पुराने, और उसके बाद 10 बजे न्यूज हेडलाइंस के बाद ईशा गोयल अपना प्रोग्राम लेकर आएंगी वेस्टर्न म्यूजिक का मैचलेस म्यूजिक आवर, और 11 बजे हिंदी में मुख्य समाचारों के बाद बॉलीवुड ट्रेल्स लेकर आएंगी बबीता त्रिपाठी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और आशा करता हूँ कि गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर आपको पसंद आया होगा। जी हाँ, और ढेर सारी हमारी जो आशाएं हैं दिल्ली में, जो BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही है, वहाँ आयुष शेट्टी ने कल चीन के दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मौजूदा चैंपियन शी यू को जो हराया, तो वो आगे भी और कारनामे जरूर करेंगे और भारत को एक बहुत बड़ा पदक दिलाएंगे। आप रखिए अपना ख्याल एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।

नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। पेश अब तक के मुख्य समाचार। झारखंड सरकार ने 2024 की जेएसएससी सीजीएल परीक्षा और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2014 से संचालित भर्ती परीक्षा की जाँच का भी आदेश दिया है। भारत आज नई दिल्ली में 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। दिल्ली सरकार ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सीटों के चरणबद्ध विस्तार के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार है। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत गणना का चरण पूरा हो गया है। 24 अगस्त से 23 सितम्बर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने सिक्किम में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए वर्ष 2002 को आधार वर्ष निश्चित करने के निर्वाचन आयोग के निर्णय में हस्तक्षेप से इनकार किया है। केरलम में आज से विझिंजम समुद्री बंदरगाह से सीधा निर्यात और आयात शुरू हो रहा है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण विनिर्माण योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपये के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। काठमांडू में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें ये सम्मान प्रदान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की, इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों को और सख्त बनाने के लिए आदर्श बताया। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण 87 सड़कें बंद हैं। चंबा में लोहे का एक पुल ढह गया है। आज भी कई जिलों में मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग ने आज झारखंड में भी अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम पोल डी के अपने दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी और आयुष शेट्टी ने नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में विश्व के नंबर एक और मौजूदा चैंपियन शी यू क्यूई को हराया। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: और अब आइए सुनते हैं हम दिल के तराने, गाने नए पुराने।

चलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है। रुक तो जा तू है गॉड, ये तो बता तू है।

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाए अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
3: पता का चाय, गजब का स्वाद।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: और श्रोताओं, आपको बता दूं, मेरे जाने के बाद आप कौन से प्रोग्राम सुन पाएंगे, तो ईशा गोयल लेकर के प्रोग्राम वेस्टर्न म्यूजिक का मैचलेस म्यूजिकार आपके साथ होंगी 10:02 पर, और फिर बबीता त्रिपाठी के साथ आप सुनेंगे 11:02 पर बॉलीवुड ट्रेन। और श्रोताओं, आपको बता दें कि दिन में 12:02 पर वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम प्ले इट कूल पेश करेंगे ईशा गोयल, और फिर रेनबो हेल्पलाइन लेकर के बबीता त्रिपाठी आपके साथ होंगी 1:02 पर, जिसमें आज का टॉपिक है हाउ टू मेंटेन एन आइडियल बॉडी वेट, जिसमें एक्सपर्ट हैं शोभा कॉल, और ये प्रोग्राम आप सुन सकते हैं। इसके बाद ज्योतिका सिंह लेकर के आएंगे दिन में 2 बजे से आशियाना, तो ये सभी प्रोग्राम आप आज सुन पाएंगे आकाशवाणी के FM रेनबो 102.6 चैनल पर। फिलहाल हम लेते हैं आपसे इजाज़त, हमें दीजिए अनुमति, और बहुत ही जल्द हम लोग फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। सुनते रहें आकाशवाणी का FM रेनबो और इन्जॉय कीजिए ब्यूटीफुल ट्रैक्स को।

0: a quiet remembrance of Netaji and a generation that dreamed of a free India. Time for a short break. We'll be right back with more music.
1: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
2: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सरायकाली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में।
1: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में। आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
2: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
1: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: वेलकम बैक टू द मैचलेस म्यूजिक और हियर ऑन आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ विद टाइमलेस मेलोडीज। वन सॉन्ग कैन मेक यू नॉस्टैल्जिक एंड द नेक्स्ट वन कैन मेक यू वांट टू टर्न द वॉल्यूम अप। एंड देन देयर आर सम सॉन्ग्स दैट आर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू लिसन टू विदाउट स्माइलिंग। But the next track queued up for you is about something we should never outgrow: dreaming. The Everly Brothers with All I Have to Do Is Dream.

0: And now, before we continue with more music, let's take a short break.
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी

0: कर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: Welcome back again to the Matchless Music Hour on Akashwani Rainbow 102.6 MHz with your host Isha Goyal Mathur. We are in the middle of a show, and if you have just tuned in, well, there's always room for a new beginning. And maybe that's exactly how we can look at our days as well. Whatever happened yesterday, today is another beginning. Here's the Carpenters, "We Have Only Just Begun."

0: Stay tuned. We'll be back after this short break.
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाए अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: वेलकम बैक टू मैचलेस म्यूजिक आर ऑन आकाशवाणी रेनबो 102.6 megahertz. Let's get back to the music and the memories. And now, let's return with a song that carries a story in its very first line. Delta Dawn by Tanya Tucker.

नमस्कार, पेश है इस घंटे के मुख्य समाचार। झारखंड सरकार ने 2024 की जेएसएससी सीजीएल परीक्षा और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। राज्य सरकार ने झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2014 से संचालित भर्ती परीक्षा की जांच का भी आदेश दिया है। भारत आज नई दिल्ली में 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। दिल्ली सरकार ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सीटों के चरणबद्ध विस्तार के माध्यम से चिकित्सक शिक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार है। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत गणना का चरण पूरा हो गया है। 24 अगस्त से 23 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने सिक्किम में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए वर्ष 2002 को आधार वर्ष निश्चित करने के निर्वाचन आयोग के निर्णय में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। केरलम में आज से विझिंगजम समुद्री बंदरगाह से सीधा निर्यात और आयात शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशान इस सेवा का उद्घाटन करेंगे। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। काठमांडू में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की मतदाता पहचान प्रणाली की प्रशंसा की। इसे अमेरिका के चुनाव विनियमों को और सख्त बनाने के लिए आदर्श बताया। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण 87 सड़कें बंद हैं। चंबा में लोहे का एक पुल ढह गया। कई जिलों में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। एफआईएच महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। और आयुष शेट्टी ने नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में विश्व के नंबर एक और मौजूदा चैंपियन शी यू कुई को हराया। ये थे एफएम रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी,
1: ये है आकाशवाणी रेनबो। और आकाशवाणी रेनबो पर ये है बॉलीवुड ट्रेल्स, और आपके साथ ये है बबिता त्रिपाठी। शो शुरू हो चुका है बीटी विद बीटी, बॉलीवुड ट्रेल्स बबिता त्रिपाठी के साथ। तो ढेर सारी बॉलीवुड की अपडेट के साथ ढेर सारी और भी बातें, और वो क्या है वो बताऊंगी बस इस गाने के बाद। आप सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक। तो बॉलीवुड की ढेर सारी खबरें सुनिए, और भी बहुत कुछ आपके लिए जो सरप्राइजेज हैं वो सब सुनिए, एंजॉय कीजिए, लाइफ को मस्त बनाइए, क्योंकि आप जुड़े हैं आकाशवाणी रेनबो से। फिलहाल जी।

देखिए जी, ऐवे ही तो आप बॉलीवुड ट्रेल्स के ऊपर मरते नहीं हैं। आपको पता है कि इस शो में आपके लिए कितने सारे सरप्राइजेस होते हैं। एक तो आपकी मन पसंदीदा बातें होती हैं, वो भी बॉलीवुड की, आपके फेवरेट स्टार्स क्या कर रहे हैं, कौन सी मूवी आने वाली है, किस मूवी का क्या हाल है, सब कुछ यहीं पर बयां किया जाता है और वो भी रोज। और साथ में आपके लिए एक सवाल भी होता है जिसका जवाब अगर आपने सही दे दिया तो बॉलीवुड सरताज तो आपको बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। मतलब कोई एक दिन में बनेगा, लेकिन अब डेली शो आ रहा है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, कभी ना कभी तो आप जरूर बनेंगे। और अगर नहीं भी बने तो आपके आपका नाम तो शामिल होगा ही, उसके लिए आपको मेरी बातों को ध्यान से सुनना होगा और 11:30 बजे जब सवाल पूछूंगी तो आपको जवाब आता होगा, बस व्हाट्सएप मैसेज करके जवाब दे दीजिएगा, आपका काम हो गया, नाम भी शामिल होगा और क्या पता बॉलीवुड सरताज बन जाए और हमसे बात करने का मौका मिले। सुनते रहिए।

भैया आप बॉलीवुड की बात कर रहे हैं तो ये तो जानना जरूरी होता है ना कि इस समय बॉक्स ऑफिस पर कौन सी फिल्म कैसा परफॉर्म कर रही है। आप सबके दिमाग में भी क्यूरियोसिटी रहती है मेरी तरह कि आखिर कौन सी मूवी चल रही है, अगर देखना जाए तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे और टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपको ऐसा कुछ जानना है तो आपका टेस्ट पता होना चाहिए और आपके टेस्ट के हिसाब से जो फिल्में चल रही हैं वो है या नहीं आपको जानना है, तो ये जानना ज़रूरी है कि किस तरह की फिल्म रिलीज़ हुई है और कैसी चल रही है। तो बता देती हूँ कि किस तरह की मूवी बॉक्स ऑफिस पर चल रही है। अब बात कर रही हूँ आवारापन 2 की, इमरान हाशमी की आवारापन 2। इमरान हाशमी भी क्या पता आपको बहुत पसंद हो और क्या पता इनकी फिल्म का आपको इंतज़ार हो। तो लीजिए, आपका इंतज़ार पूरा हो चुका है। 4 दिन पहले आवारापन 2 रिलीज़ हो गई और जिस तरह से रिलीज़ हुई और बॉक्स ऑफिस पर कमाल धमाल कर रही है, लोग तो आवारापन मतलब जो पहली आई थी ना उसको अभी फ़िलहाल फिर से याद करने लग गए हैं। पता है क्यों रिलीज़ हुई थी? बहुत ज़्यादा इसको नाम पहचान उस वक्त नहीं मिला था, मतलब ऐसा नहीं था कि लोगों ने कहा कि क्या बात है, क्या कमाई कर रही है, क्या ज़बरदस्त मूवी है। लेकिन बाद में इस मूवी ने जो लोगों के दिलों में छाप छोड़ी ना, लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं देखना चाहिए, बढ़िया मूवी है। और उसके बाद जो है इमरान हाशमी इस मूवी से जाने जाने लगे, ज़बरदस्त ये मूवी थी। और एक बार फिर से 19 साल बाद एक्शन थ्रिलर ये मूवी आवारापन 2 जब लेकर आए हैं और 14 अगस्त को इस मूवी को रिलीज़ किया है, तब से इस मूवी ने बता दिया कि भाई बात तो है इस मूवी में, जो दमखम आवारापन में था उससे कहीं बढ़कर आवारापन 2 बॉक्स ऑफिस की सफलता के हिसाब से दिखा रही है। और अब रही बात इस मूवी के आंकड़ों पर, चलते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाना है, आ गए हैं लगभग यहीं पर। आवारापन 2 ने पहले दिन 22 करोड़ रुपए के साथ शानदार खाता खोला था, उसके बाद 33.75 करोड़, फिर 26 करोड़, उसके बाद फिर मंडे को थोड़ी सी गिरावट आई और थोड़ी सी क्या ज़्यादा ही कर सकते हैं, 5.87 करोड़, जो कि हम बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं मान सकते क्योंकि ऑलरेडी मूवी लगभग 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली है 4 दिनों में। तो अगर इंडिया के कलेक्शन की बात करें तो 87.62 करोड़ और इंडिया ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो 105.03 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। और क्या चाहिए भाई, आवारापन 2 से इतने की उम्मीद थी इतनी जल्दी? फिलहाल देखते हैं आने वाले टाइम में ये मूवी और क्या करती है। फिलहाल धुरंधर 2 का ये गाना। और हाँ, ध्यान से सुनिएगा, बॉलीवुड ट्रेल चल रहा है, 11:30 बजे आपके लिए सवाल आएगा जिसका जवाब देकर बॉलीवुड सरताज बन सकते हैं आप, और उसके लिए मेरी बातों को आपको ध्यान से सुनना है ना, तभी तो जवाब देंगे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
3: प्रिया ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है, 40 मिनट में बेगमपुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
2: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
6: आकाशवाणी रेनबो पर इमरान हाशमी की बात हो रही थी, आवारापन 2 की बात हो रही थी और जिस तरह से लोगों का दिल जीत रही है ये मूवी, दर्शकों को इंतज़ार हो गया होगा कि आखिर अगला प्रोजेक्ट इनका कौन सा आने वाला होगा, क्या आगे भी ऐसे ही नज़र आने वाले हैं, लगातार नज़र आने वाले हैं या फिर से गायब हो जाएंगे। कई बार ये गायब हो जाते हैं और बहुत लंबे टाइम बाद दिखाई देते हैं, तो आपको बता दूँ बहुत ज़्यादा लंबा टाइम इनके लिए आपको नहीं इंतज़ार करना पड़ेगा। इमरान हाशमी की आने वाली फिल्म की रिलीज डेट भी आ गई है, तो ऐसे में खबर तो बनती है मूवी कौन सी है। गन मास्टर G9, यस गन मास्टर G9 अब बड़े पर्दे पर कब दिखाई देगी ये आपको बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले बता देती हूँ कि इसमें है हीरोइन हमारी जेनेलिया डिसूजा और अपार शक्ति खुराना भी इस मूवी में है। मूवी में क्या है, एक्शन है, रोमांस है, हमेशा की तरह इमरान हाशमी की फिल्म हो, थ्रिलर ना हो, एक्शन ना हो, रोमांस ना हो तो बात नहीं बनती ना, म्यूज़िक के मज़ेदार तड़के ना हो तो भी बात नहीं बनती, ये सब मिलाकर ये मूवी आ रही है। और कब आ रही है, मुद्दे की बात ये कि गन मास्टर G9 दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है 27 नवंबर 2026 को, यानी 27 नवंबर को ये मूवी आ जाएगी। आदित्य दत्त के निर्देशन में बनी इस एक्शन रोमांस फिल्म का अगर आपको इंतज़ार है तो बस नवंबर तक, 27 नवंबर तक इंतज़ार करना है बस। और हाँ, जेनेलिया भी बहुत टाइम बाद दिखेंगी क्या? नहीं, थोड़े दिन पहले अभी उनकी खबरें आ रही थी, मूवी तो बहुत जल्दी अभी आसपास नहीं आई थी, तो उनको भी हम देख लेंगे इस मूवी में क्या।

अब एक और मूवी की बात कर देते हैं। जब धुरंधर मूवी आई, बाहुबली मूवी आई दो पार्ट्स में, तो लोगों को अब प्रेरणा मिलनी शुरू हो गई है फिल्म मेकर्स को कि यस, अगर कहानी बड़ी हो तो दो पार्ट्स में लाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही पार्ट में सब कुछ समेटा जाए और कहानी के साथ जस्टिफिकेशन ना हो या फिर सीरीज बनाई जाए। ऐसा मानना है हम सबका, पता है क्यों? क्योंकि ऐसी मूवीज बनने की अब खबरें आने लगी हैं। और ऐसी एक मूवी आ रही है पुलिस कंपनी, जिसको राम गोपाल वर्मा बना रहे हैं, और उन्होंने भी कुछ ऐसा ही तय किया है कि इस मूवी को दो पार्ट्स में बनाया जाएगा और दोनों की शूटिंग एक साथ की जाएगी। हर्षवर्धन राणे इसमें मुख्य भूमिका में है और शूटिंग शुरू भी हो चुकी है। अगर आपको नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं और हर्षवर्धन राणे किस भूमिका में होंगे आप सब अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे मैं भी अंदाज़ा ही लगा रही हूँ कि पुलिस की भूमिका में होंगे, क्योंकि शो पुलिस कंपनी फिल्म का नाम है। तो इसका दो हिस्सों में शूटिंग की जाएगी इसकी, जैसा मैंने बता दिया मेकर्स ने ये प्लानिंग की है, और 2027 में इसको रिलीज़ कर दिया जाएगा इन दोनों पार्ट्स को कुछ ही महीनों के अंतर में, ऐसा कहा जा रहा है। और धुरंधर में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, हालांकि साल चेंज हो गया था, लेकिन कुछ ही महीनों के अंतर में इसके दोनों पार्ट्स रिलीज कर दिए गए थे। अब देखते हैं कि इस मूवी का क्या उसी तरह से हाल होता है, मतलब परफॉर्मेंस के तौर पर अच्छा वाला हाल होता है जैसे कि धुरंधर की का हुआ था, लेकिन उसके लिए अभी बहुत जल्दी है। फिलहाल तो शूटिंग शुरू हो चुकी है, क्राइम थ्रिलर मूवी है और राम गोपाल वर्मा बना रहे हैं। बाकी की कहानी जो भी और जो अपडेट्स हैं वो, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको बस ऐसे ही सुनते रहना है बीटी विद बीटी या फिर बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ, किसी के भी साथ सुनते रहना है बस आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक। सभी अपडेट्स यहाँ पर, यहीं पर, ओनली ऑन 102.6 मेगाहर्ट्ज़।

देखिए जी, ऐसी बात नहीं है, ये जो गाना है ना, तेरी बस की ना भाई, ऐसी बात नहीं है। कई बार होता है कि हमें लगता है कि ये इनकी बस की बात नहीं है, लेकिन वो बस की बात हो जाती है। जैसे कि इस मूवी की बात कर रही हूँ, 5 साल पहले फिल्म की अनाउंसमेंट हुई, उसके बाद कोई खबर ही नहीं। ऐसा लगा कि तेरे बस की ना भाई, लेकिन फिलहाल इनके बस की है, मतलब जो टीम है उनके बस की है और ये मूवी बन रही है। कौन सी मूवी? कैप्टन इंडिया की बात कर रही हूँ। ठंडे बस्ते में ये मूवी चली गई थी, लेकिन अब ये गरम गरम बस्ते में आ गई है। और आपको बता दूं कि इस मूवी की एकदम से जोर शोर से तैयारियां शुरू हो गई हैं और इसकी सुर्खियां भी तेज हो गई हैं। तो एक सुर्खी आप तक पहुंच जाती है कि इसमें अभिनेत्री कौन सी होंगी। अब अभिनेता अगर आपको याद नहीं है तो आपको बता दूं, कार्तिक आर्यन है इस मूवी में। और अब मूवी की अनाउंसमेंट जब इतने साल पहले हो गई और अब अपडेट नहीं आई थी, तो आनी शुरू हो गई है क्योंकि मूवी बनने की तैयारी है। और अब जो एक समय चल रहा है ना कि दक्षिण भारतीय कलाकार हिंदी फिल्मों में और हिंदी फिल्मों के कलाकार दक्षिण भारतीय फिल्मों में दिखाई दे रहे हैं, तो इसी कड़ी में ये मूवी भी कुछ ऐसा ही इंट्रोडक्शन कर रही है। अभिनेत्री पार्वती थिरुबोथी, जो कि दक्षिण भारतीय कलाकार हैं, एक अभिनेता कार्तिक आर्यन के साथ काम करने जा रही हैं इस फिल्म में। यही है इस मूवी से रिलेटेड अपडेट। और रही बात आपके लिए सवाल लाने की, तो वो मैं लेकर आती हूँ, बस थोड़ी देर में आप एकदम तैयार रहिएगा। बॉलीवुड सरताज बनने का मौका बिल्कुल मत गवाइएगा। अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना है ना, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आपके लिए। बीटी विद बीटी सुनते रहिए ओनली ऑन आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक।

अब आप स्लोली स्लोली चलने की बात कर ही रहे थे तो मैंने सोचा थोड़ा सा रुक जाती हूँ और थोड़ा सा स्लो हो जाती हूँ, फिर आपके लिए सवाल लेकर आती हूँ। चलिए थोड़ा सा लेट सही, लेकिन लेकर आ गई हूँ। अब स्लोली स्लोली चलने में थोड़ा लेट तो हो ही जाता है, एक आध मिनट का चलेगा ना। तो चलिए आपके लिए जो सवाल है वो पूछ डालते हैं और फिर देखते हैं बॉलीवुड सरताज कौन बनता है। और आसान सा सवाल, अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना तो आपको तो पता ही है आंसर। गन मास्टर G9 की बात थी मैंने और इस मूवी में इमरान हाशमी है, ये तो हमने बता दिया था, लेकिन हमने बता दिया था कि इस मूवी में हीरोइन कौन सी है। और अब आपको बताना है कैसे, व्हाट्सएप मैसेज करके, क्योंकि बॉलीवुड सरताज जो बनना है तो गन मास्टर G9 में इमरान हाशमी के अपोजिट हीरोइन कौन है, उनका नाम आपको लिखकर भेजना है। और उससे पहले अपना नाम, अपने शहर का नाम इसलिए लिखकर भेजना है क्योंकि आपका नाम शामिल हो सके। सबसे पहले अपना नाम, अपने शहर का नाम, फिर आंसर। और व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए अगर आपको नंबर चाहिए तो लीजिए, नंबर भी बता देते हैं 9868107070। हमेशा की तरह वही पुराना नंबर, लेकिन काम हमेशा नए नए करता है, आपके नए नए मैसेजेस हम तक पहुंचाता है। हमारा नाम भी वही पुराना है, बबिता त्रिपाठी। बॉलीवुड ट्रेल्स सुन रहे हैं आप, तो कुल मिलाकर हुआ BT with BT। तो एंजॉय करते रहिए ओनली ऑन आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक।

0: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
1: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
2: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सरायकाले खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में।
1: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में। आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
2: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
1: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: आप सुन रहे हैं FM रेनबो। आपके साथ हूं मैं बबीता त्रिपाठी। शो चल रहा है बॉलीवुड ट्रेल्स। बबीता त्रिपाठी के साथ बनकर मिलता है BT with BT। और BT with BT का आनंद लेते हुए आपको बता दूं कि आप सब खुशियां मनाइए, ढोल बजाइए। क्यों? क्योंकि रणवीर शौरी का बर्थडे जो है, दलेर मेहंदी का बर्थडे जो है, जो हम सबको नचाते रहते हैं और खुश करते रहते हैं। कोई भी पार्टी ऐसी नहीं होती है जिसमें दलेर मेहंदी का गाना ना बजे। और आज जब उनका जन्मदिन है तो हम उनका गाना बजाएं ना, ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए गाना बजाते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, इन दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएँ देते हैं। और रणवीर शौरी की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर देते हैं। छोटी सी शुरुआत की थी, एक छोटी सी लव स्टोरी 2002 में इन्होंने, और उसके बाद से क्या क्या बड़े बड़े काम कर डाले इन्होंने, कि नाम कर डाला भाई। लक्ष्य मूवी आई, जिस्म मूवी आई, हनीमून ट्रैवल्स आई, सिंग इज किंग आई, एक था टाइगर आई, अंग्रेजी मीडियम आई, टाइगर 3 आई, घोसला का घोसला आई, ट्रैफिक सिग्नल, भेजा फ्राई, मतलब आप नाम लीजिए मूवीज़ का, एक से बढ़कर एक कल्ट मूवीज़ कह सकते हैं जिसमें इन्होंने काम किया और ज़बरदस्त काम किया। फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का सोनचिरैया के लिए इनको मिला। और ऐसे बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने बहुत दमदार रोल्स किए, जिनकी हम बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि शो अभी बहुत ज़्यादा चीज़ों पर आधारित होता है। लेकिन हाँ, विश ज़रूर करेंगे इनको ढेर सारी शुभकामनाएं इनके जन्मदिन की, रणवीर शौरी को। साथ में दलेर मेहंदी को भाई नाम लेते ही एक अलग सी ऊर्जा आ जाती है, एक अलग सी खुशी आ जाती है। और किसी भी पार्टी में जब इनके गाने बजते हैं तो एक अलग सा जोश, जिसको स्टेप नहीं आता रहता ना, वो भी इनके गाने पर डांस कर ही लेता है। और मैं तो जब बहुत ज़्यादा डांस में, मतलब बहुत सारे स्टेप तो आते नहीं हैं, तो मैं तो इंतज़ार करती हूँ कोई दलेर मेहंदी का गाना बजे तो किसी पार्टी में मैं भी थोड़ा सा ठुमक लूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा मुझे आता नहीं है। दलेर मेहंदी के गाने होते ही ऐसे हैं कि आपका डांस अपने आप ही निकल जाता है। तो उसी तरह का एक गाना बजाऊं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि दलेर मेहंदी जो सिंगर हैं, ये एक तरह से हम सब के दिल में बसते हैं, और सॉन्ग राइटर भी हैं, ऑथर भी हैं, और बहुत कुछ करते हैं। भंगड़ा तो इनके लिए मतलब बाएं हाथ का खेल है, और ये ना सिर्फ करते हैं बल्कि सबको करवा देते हैं अपने गानों से। और एक से बढ़कर एक इनकी जो एल्बम्स आई हैं, चाहे वो तुनक तुनक धुन या फिर मैं डर दी रब रब, मतलब एक से एक बढ़कर एक गाने हैं। और तारा रारा और ना ना ना ना ना रे जैसे गाने हमेशा पार्टीज में बजते हैं। अब क्या ही बात करें, इनके इतने सारे गाने हैं कि उनकी बात नहीं करेंगे। इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे और कहेंगे ऐसे ही हमें एंटरटेन करते रहें, इनका एक गाना सुनेंगे और लौट कर आएंगे, क्योंकि आप सबसे सवाल पूछ लिया है उसका जवाब भी लेना है, और साथ में आपको बॉलीवुड सरताज भी बनाना है, बहुत सारी खबरें भी हैं, क्या क्या करें इस एक घंटे में। दलेर मेहंदी और रणवीर शौरी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। नाचते हैं।

0: झूम रहे हैं, थिरक रहे हैं, नाच रहे हैं बीटी विद बीटी में बॉलीवुड ट्रेल्स बबीता त्रिपाठी के साथ सुन रहे हैं उन्हीं आकाशवाणी रेनबो दिल से दिल तक। और जो कह रहे हैं बबीता सवाल क्या पूछा था मुझे समझ ही नहीं आया, मिसेस धर्म भाटिया के लिए एक बार सवाल दोहरा देती हूँ। गन मास्टर G9 एक मूवी आ रही है जिसमें इमरान हाशमी है, उनकी अपोजिट हीरोइन कौन है, ये है आज का सवाल। और आपको जवाब देना है व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से 9868107070 पर। और आप सबको पता है सबसे पहले अपना नाम अपने शहर का नाम जरूर लिखना है। एक ब्रेक लेती हूँ, लौट कर आती हूँ, आप सबके नाम शामिल करती हूँ जिन्होंने जवाब दिया है।
1: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, न हमसे मिलता है न साथ खाना खाने आता है, तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
2: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे, मुझे HIV है।
1: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
3: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है, हम सब से मिलने से नहीं।
4: इग्नोर नहीं, याद करो।
5: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
6: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: ये है आकाशवाणी और आकाशवाणी पर ये समय है आप सबके मैसेजेस शामिल करने का, क्योंकि अगर हम इससे ज़्यादा लेट करेंगे तो बहुत सारे नाम छूट जाएंगे और आप सबके नाम लेने भी ज़रूरी हैं। तो बॉलीवुड सरताज बनाने से पहले मैं उन सब को थैंक यू कहना चाहूँगी जिन्होंने जवाब दिया। और आप सब का सवाल का जवाब ज़्यादातर लोगों का सही है, बस कई लोगों ने सोचा डिसूजा का इसकी स्पेलिंग क्या होगी, चलिए देशमुख लिख देते हैं, ऐसा मैं समझ गई। और बहुत सारे लोगों ने जेनेलिया ही लिख दिया है, स्मार्ट वर्क, ठीक है ठीक है ठीक

है, आप सबके दिल की बात मैं समझती हूँ, क्योंकि आकाशवाणी रेनबो है दिल से दिल तक। वो रोहित श्रीवास्तव ने वैसे बिल्कुल सही जवाब लिखा है, और साथ में सिर्फ डिसूजा की स्पेलिंग सही लिखी है। मैं तो मतलब पहला ही मैसेज मुझे गलत साबित कर रहा है, और जेनेलिया का कि स्पेलिंग आप खुद पढ़िए, आप खुद हंसेंगे, मुझे लग रहा है ऑटो टाइप हो गया है। और नेक्स्ट मैसेज है तरुण कोहली का सूरज कुंड मेरठ से, इन्होंने जेनेलिया लिखा है सही जवाब के साथ, मतलब जेनेलिया भी कंसीडर किया जाएगा, मेन नाम तो यही है, लेकिन डिसूजा बहुत सारे लोगों ने रिस्क नहीं लिया लिखने का। तरुण कोहली का मैसेज दिख रहा है सही जवाब के साथ। सलीम मलिक का मेरठ से सही जवाब है या नहीं बाद में देखूंगी। नहीं, इन्होंने लिखा है, बस स्पेलिंग गलत लिखी है। कंचन सोनिया विहार दिल्ली से लिख रही हैं, आसिफ सैफी मेरठ से लिख रहे हैं, हरीश कौर मेरठ से लिख रहे हैं, सुखलाल बाला बिहार से लिख रहे हैं, और नहीं वेस्ट बंगाल से लिख रहे हैं ये, और हरीश गौर मेरठ से पढ़ दिया मैंने, निकिता पारिकर पुणे से, पंकज मोहड़ अमरावती महाराष्ट्र से, और सूरज बुराड़ी से लिख रहे हैं, और भटिंडा से राज मेहता लिख रहे हैं, मेहरा लिख रहे हैं, दिनेश नाहर सिंह पोली कॉल सुधीर, आगे क्या है, लंबा सा एड्रेस है और जो मुझे आधा ही दिख रहा है, शिव मेरठ से लिख रहे हैं, दानिश खतौली से लिख रहे हैं, और अनूप साहू का भी मैसेज दिख रहा है मुझे, नाम जगह का नाम नहीं दिख रहा, प्रवीण चौहान मध्य प्रदेश से लिख रहे हैं, कविता उत्तराखंड से लिख रही हैं, बसंत उमर मेरठ से लिख रहे हैं, रंगीता कौर और कहाँ से लिख रहे हैं नहीं दिख रहा, और तनुजा शाह का महाराष्ट्र से, और रोहतक से मिसेज धर्म भाटिया का मैसेज, विनोद सोनी का भटिंडा से, और गाने की फरमाइश बहुत सारी आ जाती हैं, और रवि जोशी का मैसेज आ गया है जो आंसर है तो सही लिखा है इन्होंने, मतलब जो भी प्रोग्राम से रिलेटेड अगर आंसर है वही शामिल किए जाएंगे ना। और नेक्स्ट मैसेज सुनीता मुखी ने अपना, ये सुदर्शन मुखी ने अपना जो है स्पेलिंग गलत लिखा है, कोई बात नहीं, कई बार हो जाता है। अनीता मुखी ये दिल्ली से ही लिखते हैं, और नेक्स्ट मैसेज है भटिंडा से कृष्ण बंसल का, और राजकुमार संतानी महाराष्ट्र से, और अगला मैसेज नाम नहीं शामिल कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि उन्होंने अपना नाम बाद में लिखा है और आंसर पहले लिखा है, मुझे कंप्यूटर शो नहीं कर रहा है। और मुझे एक और बात बतानी है कि वो जो गाना है ना खोसला का घोसला, जब मैं रणवीर शौरी की बात कर रही थी ना तो मुझे ऐसा लगा था कि उस गाने को प्ले करूंगी, लेकिन भाई दलेर मेहंदी के तुनक तुनक तुनक धुन के आगे वो गाना थोड़ा नहीं बच पाया, मतलब उसको आगे कर दिया मैंने। अब ये गाना मेरे मन में था तो मैं सोच रही हूँ बजा देती हूँ, आप भी इंजॉय कीजिए, बड़ा मस्त गाना है और इस पर एक बार झूमना बनता है। और हाँ, बॉलीवुड सरताज बनने के लिए अगर आप तैयार हैं तो नेटवर्क में रहिए, क्या पता शो में आप ही का नाम शामिल हो और बॉलीवुड सरताज के लिए कॉल आप ही को जाए, तो

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
1: ये है आकाशवाणी और ये समय है एफएम रेनबो पर आज के बॉलीवुड सरताज बनाने का, क्योंकि बॉलीवुड ट्रेल्स में बॉलीवुड सरताज से मिलने का मजा ही कुछ और होता है और इसका आप सब, हम सब इंतज़ार करते हैं। फिलहाल रैंडमली हम कोई भी जब कॉल मिलाते हैं और उधर से आवाज़ आती है और हमसे बात हो पाती है तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल आप सबको सुनवाते हैं आज के बॉलीवुड सरताज की जुबानी उनकी कहानी। हेलो,
2: गुड मॉर्निंग मैम।
1: गुड मॉर्निंग, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, आप खुद बताइए।
2: मैं मध्य प्रदेश के खरगोन से प्रवीण चौहान बोल रहा हूँ।
1: वाओ, मुझे बड़ा मजा आता है कि देश के अलग अलग हिस्सों से हमें बात करने का, जुड़ने का मौका मिलता है। तो कैसा लगता है आकाशवाणी रेनबो सुनकर प्रवीण?
2: बहुत बढ़िया लगता है।
1: हमें भी बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। फिलहाल जो सवाल पूछा था बॉलीवुड सरताज के लिए उसका जवाब आपसे ले लेते हैं और उसके बाद कॉन्ग्रेचुलेट कर देते हैं। गनमास्टर G9 में इमरान हाशमी के अपोजिट हीरोइन का नाम क्या है?
2: मैम जेनेलिया देशमुख, जिनका नाम जेनेलिया डिसूजा था पहले।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, जेनेलिया डिसूजा या जेनेलिया देशमुख दोनों बोल सकते हैं। और इसी के साथ आज के बॉलीवुड सरताज बनते हैं प्रवीण चौहान, मध्य प्रदेश वाले। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हेलो।
2: हाँ हेलो,
1: कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रवीण, कहाँ खो गए आप?
2: नहीं, यहीं पे हूँ मैम, थैंक यू।
1: तो मुझे लग रहा है कि आप कुछ खोए खोए से हैं, क्या करते हैं आप, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए प्रवीण।
2: मैम मैंने काफी समय पहले इंजीनियरिंग करी थी, फिर मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था, तो अभी हाल फिलहाल तो अभी मेरे पास कोई जॉब नहीं है, घर पे हूँ अभी मैं, पर मैं करना चाहता हूँ आगे अभी कुछ।
1: चलिए, जो भी प्लान है आप फ्यूचर में बहुत सक्सेसफुल हो ऐसी मेरी कामना है और फटाफट आप कुछ कर डालिए।
2: यस मैम।
1: चलिए, अब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके प्रवीण, खुश रहिए, मस्त रहिए, आकाशवाणी रेनबो के साथ जुड़े रहिए ऐसे ही।
2: ओके मैम।
1: ओके, बाय बाय।
2: बाय।
1: तो ये थे प्रवीण चौहान आज के बॉलीवुड सरताज और मैं हूँ आपके साथ बबीता त्रिपाठी, जो फिलहाल जा रही हूँ और आप सबको छोड़े जा रही हूँ इस गाने के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो, दिल से दिल तक एंजॉय करते रहिए एक एक पल को, क्योंकि ये पल लौट कर आने वाले बिल्कुल नहीं है। उदास होके कुछ भी नहीं मिलने वाला है, जो होना है होने

0: We'll take a short break. Stay with us. There's plenty more music and conversation coming your way on the program Play It Cool on Akashvani Rainbow 102.6 MHz. Don't forget to send in your messages on 9868107070. Because we are asking, what is it that something you once said no to, never to, but have completely changed your mind about today?
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है, ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
3: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
2: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
4: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
5: इग्नोर नहीं, याद करो।
6: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
7: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
8: पता का चाय, गजब का स्वाद।
9: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे
10: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: वेलकम बैक डियर लिसनर्स टू प्ले इट कूल ऑन आकाशवाणी रेनबो 102.6 MHz। गेटिंग बैक टू द कॉन्वर्सेशन, हाउ मेनी ऑफ अस हैव चेंज्ड आवर माइंड्स अबाउट द पर्सन वी थॉट वी हैड टू बी। मे बी वी वंस थॉट वी हैड टू मेक एवरीबडी हैप्पी, मे बी सेइंग यस ऑल द टाइम made us a good person, or maybe we thought we had to have our whole life figured out by a certain age. But then you're allowed to change, you're allowed to discover new things about yourself. That's the next song by Selena Gomez, My Mind and Me.
11: When I hear a part of my story, I tried to hide in the glory and sweep it under the table so you would never know. Sometimes I feel like an accident, people look when they're passing and never check on the passing.

0: So, looking back, is there a decision you once regretted, but today realize it actually taught you something important? Tell us about it on WhatsApp 9868107070. 9868107070. We will take a short break and be right back with more music and more moments on Play It Cool.
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: मम्मी, बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
7: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
6: अरे मम्मी, 1 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
7: हैं? इतनी जल्दी?
6: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय काले खान स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
8: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खान से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुर होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
9: हिमालय की गोद से लेकर
10: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
9: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
10: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
9: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
10: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
9: तो सुनना ना भूलें
10: रेनबो डेस्टिनेशंस
9: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
11: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: वेलकम बैक डियर लिसनर्स टू द प्रोग्राम प्ले इट कूल ऑन आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज विद योर होस्ट ईशा गोयल माथुर। एंड वी आर हाफवे थ्रू अ कॉन्वर्सेशन ऑन आवर थीम थिंग्स आई हैव चेंज्ड माय माइंड अबाउट। People surprise us, and as we grow older, we also learn to see relationships differently. We can care about someone and still choose distance. We can forgive without forgetting. And sometimes letting go is not about anger at all. It's simply recognizing that not every relationship is meant to stay the same forever. Here's Shakira with poem To a Horse.

0: And we all are survivors in our own way. Taking a quick break, we'll be with you soon.
1: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
2: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सराय काली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में।
1: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में। आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
2: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
1: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
6: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
5: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
7: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
8: ठीक है,
7: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो, जो एफआईआर कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
6: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
5: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
9: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
5: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
6: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
5: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
6: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
5: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
6: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
5: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
6: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
2: वेलकम बैक टू द प्रोग्राम प्लेड कूल ऑन आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़। And we are receiving messages. There's one from Akash from Railway Colony, New Delhi. We are moving ahead, never looking back. So it should be better to forget past forever and going forward to a new life, of course. I will try my best to entering a beautiful new life. And we wish you good luck with that, Akash, and more success. Perhaps growing is about knowing what to change and what to hold on to. Here's Forever Yours by Avicii and Sandro Cavazza.

नमस्कार, प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन जारी है। ये सम्मेलन सदस्य देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों के लिए सार्थक चर्चा करने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का एक मंच प्रदान करता है। झारखंड सरकार ने 2024 की JSSC CGL परीक्षा

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2014 से संचालित भर्ती परीक्षा की जांच का भी आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग में कथित प्रश्न पत्र लीक घोटाले से जुड़े मामले में राज्य में कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत गणना का चरण पूरा हो गया है। 24 अगस्त से 23 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने सिक्किम में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए वर्ष 2002 को आधार वर्ष निश्चित करने के निर्वाचन आयोग के निर्णय में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल को का रैंक दिया गया है। काठमांडू में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें ये सम्मान प्रदान किया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उधमपुर, रियासी और कठुआ जिलों में संदिग्ध लोगों की आवाजाही की सूचना मिलने के बाद कई जगहों पर तलाशी अभियान शुरू किया। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। FIH महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेले जा रहे मिक्स्ड डबल्स स्पर्धा में भारत के रोहन कपूर और ऋतुविका शिवानी गड्डे का मुकाबला कनाडा के जोनाथन लाई और क्रिस्टल लाई से होगा। ये थे FM रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

0: तेरी वाणी आकाशवाणी।
1: श्रोताओ, रेनबो हेल्पलाइन का आज का अंक सजीव नहीं है, ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।

0: दोस्तों, स्वस्थ शरीर के लिए जरूरी है कि इसके सारे अंग सही और संतुलित रहें। ऐसा कुछ शरीर के वजन के साथ भी है। अगर आपकी हाइट कम है और वजन बहुत ज्यादा है तो इसे मोटापा कहा जाएगा। अगर आपकी हाइट ज्यादा है और आपका वजन कम है तो आपको अंडरवेट कहा जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि आप अपनी हाइट के हिसाब से अपना वजन संतुलित रखें। पर अक्सर देखा गया है कि खराब जीवन शैली के कारण लोगों का वजन संतुलित नहीं रहता और वो मोटापे का शिकार हो जाते हैं। आज हेल्पलाइन में हमारा जो टॉपिक है ना, यही है। जी हाँ, हाउ टू मेंटेन एन आइडियल बॉडी वेट। और हमारी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर शोभा कौल। नमस्कार शोभा जी।
1: नमस्ते जी,
0: बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है शोभा जी, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, खासकर कि आजकल हम सभी लोग, चाहे बच्चे हो, युवा हो या बूढ़े हो, किसी भी उम्र का कोई भी व्यक्ति हो, सब बहुत ही कॉन्शियस होते हैं, वेट कॉन्शियस होते हैं, बॉडी कॉन्शियस होते हैं। तो ये जो टॉपिक है डॉक्टर शोभा जी, हाउ टू मेंटेन एन आइडियल बॉडी वेट, ये पॉसिबल हो ही नहीं पाता, हम कितनी भी कोशिश करते, क्या कहेंगे आप?
1: नहीं, बिल्कुल पॉसिबल होगा अगर आप लगन से और मेहनत से और डिलिबरेटली इस पे एफर्ट लगाएंगे तो डेफिनेटली आपका वजन भी कम होगा। सो जैसे आपने कहा कि आइडियल वेट, पहले ये तो जान लें कि आइडियल वेट क्या है।
0: क्या है
1: कैसे आपने देखा होगा, दो फ्रेंड्स होती हैं, एक मोटी है, वो भी समझती हैं कि घर का सारा काम कर लेती हैं तो वो भी सही है। सो आइडियल वेट बेसिकली ये होता है कि जैसे आपने सही कहा कि हाइट के अनुसार और आपकी एज के अनुसार और आपका सेक्स के अनुसार वो वेट जो आपकी दिनचर्या में आपको कोई कठिनाई ना उत्पन्न करने दे और जो आपको किसी भी आने वाली बीमारी के में के लिए असुरक्षित ना करे और जो आपकी उम्र को दीर्घायु बनाए, ऐसा वेट होना आपके लिए आइडियल वेट होगा।
0: जी
2: हाँ। नमस्ते मैम।
0: हाँ नमस्ते, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप?
2: डॉक्टर जी को मेरा नमस्ते जी।
1: नमस्ते जी।
0: नमस्ते
1: जी।
2: सर मैं अपने वेट के बारे में बात करना चाहता था जी।
1: हाँ पूछिए, क्या क्या तकलीफ है आपको?
2: सर मेरी उम्र 20 साल है जी, और
1: जी
2: मैं अपना वेट बढ़ाना चाहता था जी।
1: बढ़ाना चाहते हैं?
2: हाँ जी, बहुत कम वेट है जी हमारा।
1: बहुत कम वेट है, तो कितना वेट है अभी आपका? आपको पता है आपका सही वेट कितना होना चाहिए?
2: 50 प्लस है जी।
1: 50?
2: 50।
1: 50 केजी है। वो हाइट कितनी है आपकी? हाइट कितनी है?
2: 5.5 फुट है जी।
1: 5.5 फुट है। और एज कितना है? 20 बताया आपने, 20 साल।
2: 20 जी।
1: तो आप कुछ क्या करते हैं, स्टूडेंट हैं आप?
2: नहीं जी, मैं काम करता हूँ जी।
1: कोई फिजिकल काम करते हैं? मतलब
2: मालिक का काम करता हूँ जी, पार्क का जी।
1: पार्क में मालिक का काम करते हैं?
2: हाँ जी।
1: तो बहुत अच्छी बात है, मतलब वजन कम होना आपके हिसाब से, एक आध किलो ही वजन कम है आपका, तो आप तो अच्छी बात है। मतलब यहाँ तो लोग वजन कम करने के लिए बहुत मशक्कत करते हैं, आप तो वजन मेंटेन करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी आप अच्छी करते हैं, माली का काम करते हैं, आप संतुलित भोजन खाएंगे, अगर दिन में खूब सारा पानी पियेंगे, बिकॉज आप धूप में भी काम करते होंगे, मौसम में भी काम करते हैं, खूब सारा पानी पीजिए और संतुलित आहार खाइए, तो आपको गेन करने की जरूरत ही नहीं है भैया।
2: सर घर के सब कहते हैं ना, जैसे जी घर पे जाते हैं भाई, बहुत कमजोर हो रहा, बहुत कमजोर हो रहा जी।
1: देखिए कई कई लोग होते हैं, वो बॉडी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, क्या आपके घर में बाकी लोग भी ऐसे ही दुबले पतले हैं?

0: नहीं सर, वो तो सब ठीक है जी।
1: सब ठीक है। तो
0: हाँ
1: कोई कोई
0: जी
1: इंसान ऐसा होता है कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर ही होता है एक्टोमॉर्फिक बोलते हैं, जो मतलब मोटा नहीं होता और मासल नहीं होता है। तो ऐसे लोगों का क्या होता है, जितना जो उन जो वो खर्चा करते हैं ना एनर्जी, वो ज्यादा करते हैं खाने से। तो आपको थोड़ा सा खाना अपना कैलोरी वाइज और प्रोटीन वाइज थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, जिससे कि आप जितना खा रहे हो उतना भी, उतना आप स्पेंड भी कर रहे हो तो आपका बराबर रहेगा वेट। और गेन करना होगा तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको प्रोटीन्स खाने पड़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स खाने पड़ेंगे।
0: क्या क्या खा सकते हैं सर?
1: जैसे आप वेजिटेरियन हैं तो आप दालें खाइए, आप अनाज जो खाते हैं दाल और चावल मिला के खाइए, बिकॉज उसमें आपको पौष्टिक आहार मिलता है। आप पनीर खाइए, दूध दूध से बनी हुई चीजें खाइए, फल फ्रूट खा सकते हैं तो वो भी खाइए। तो ये आप आराम से खा सकते हैं, बाकी लोगों से थोड़ा सा ज्यादा खा, दो रोटी ज्यादा खा लीजिएगा
0: सर, फिर भूख कम लगती है ना ज्यादा, पेट भर के रोटी खा ले फिर शाम को, दिक्कत हुई नाश्ता किया जी, शाम को दोपहर को फिर भूख नहीं लगेगी।
1: नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आप जितना एनर्जी स्पेंड करते हो ना, खर्चा करते हो ना, उससे थोड़ा सा ज्यादा खाना पड़ेगा आपको
2: जी। तो मैम ये तो मैं, हम समझते हैं कि बहुत लकी हैं कि ये इन्हें अपने वजन बढ़ने की चिंता नहीं करनी पड़ रही है और खा सकते हैं जो कुछ चाहें।
1: बिल्कुल, आपको कोई भी बीमारियों की परेशानी नहीं आएगी, खाली आप अपना ध्यान रखिए, पानी अच्छा पिए, आप पानी 7-8 ग्लास दिन में पिए, बिकॉज डिहाइड्रेशन का चक्कर रह जाता है।
2: क्योंकि ज्यादातर लोगों को मैम और हमें भी प्रॉब्लम होती है कि वेट बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाता है, चाहे कुछ खाएं चाहे ना खाएं।
1: नहीं ये बात से मैं सहमत नहीं हूँ, चाहे खाएं ना खाएं, खाने से ही बढ़ेगा। बहुत सारे कारण हैं, डिपेंड करता है कि आपका क्या कारण हो सकता है, उसके बारे में आगे बात करेंगे।
2: आगे बात करेंगे मैम, इसके बाद हम एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे। ये लिखा है राजपुर औरंगाबाद से महेंद्र प्रताप सिंह ने, इनकी हाइट है 5'11", वेट है 80 किलो और उम्र है 62
1: जी।
2: तो क्या ये आइडियल वेट है मैम?
1: आप अपनी दिनचर्या ठीक से कर रहे हैं, आपको कोई भी मेडिकल कंडीशन नहीं है, जैसे कोई थायराइड की प्रॉब्लम या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम या डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं है, और आप सांस की प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके लिए 2-3 किलो एक्स्ट्रा है, बाकी आपका वजन जो है वो सही है
2: जी। तो मैम अब एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, और श्रोताओं को मैं बता दूं कि आज हेल्पलाइन में हमारे साथ हैं वेट मैनेजमेंट कंसल्टेंट डॉक्टर शोभा कौल, और हमारी जो चर्चा चल रही है वो है हाउ टू मेंटेन एन आइडियल बॉडी वेट। तो इस गाने के बाद लौटेंगे हेल्पलाइन में।

0: रेनबो दोपहर हेल्पलाइन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है हाउ टू मेंटेन एन आइडियल बॉडी वेट। एक्सपर्ट हैं डॉक्टर शोभा कौल, वेट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। मैम, ज्यादातर लोगों को जो है प्रॉब्लम रहती है, वेट बढ़ता है उनका, ओबेसिटी एक समस्या बन गई। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्हें जो ये पूछते हैं, जैसे हमारे पिछले कॉलर ने पूछा कि वेट बढ़ाना है, लेकिन ज्यादातर मैक्सिमम पीपल को वजन बढ़ने की शिकायत रहती है। मैम, तो ये वजन बढ़ने का रीजन क्या है? मैम,
1: कई रीजन है इसके। हमें ये जैसे आप देखा होगा अभी कोविड के दौरान में बहुत सारे लोगों को अपने रीजंस पता चल गए हैं कि क्यों उनका वेट इन दो सालों में बढ़ा है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी जीरो थी, घर में ही बैठे रहते थे, चलना फिरना कम था, खाने पीने की तो बहुत आयत थी, अलग अलग तरह का खाना खाया जाता था, उसके कारण से कोई मतलब उनकी लाइफस्टाइल इतनी हेक्टिक हो गई थी ना, अंदर बैठ बैठ के मेंटल टेंशन इतना था, स्ट्रेस इतना था, इमोशनल प्रेशर की आसपास के माहौल में इतना कुछ हो रहा है, बीमारियां हो रही हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ऊपर नीचे के फ्लोरों में आपको लॉकडाउन मतलब आपको बंद कर दिया जा रहा है, इस तरह के स्ट्रेस टेंशन। सो खाने पीने की प्रॉब्लम, एक्टिविटी की प्रॉब्लम, फिजिकल एक्टिविटी की प्रॉब्लम, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सोशल जो हमारे को स्ट्रेस रहता है बॉडी में, वो अनदर कारण है। और एक कारण है कि आपका कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, क्या आपके जीन्स में थोड़ा परसेंटेज होता है जो जेनेटिकली आप पे डिस्पोज हो जाते हो वेट गेन करने के लिए, मतलब अगर आपके मदर को, पेरेंट्स को, या नान के में, या दाद के में, या ग्रैंडफादर, तो थोड़े से जीन्स आप में आ जाते हैं, या आपका एनवायरमेंट ऐसा है कि खाते पीते घर से हैं। पुराना जमाना था जब खाते पीते घर के अच्छे वेट वाले लोगों का एक स्टेटस सिंबल हुआ करता था, लेकिन अब की आपके जो पिछले चार दशकों में इतना ज्यादा बढ़ गया है ये वेट की प्रॉब्लम कि ये एक महामारी का रूप ले लिया है इनफैक्ट इसने, और बहुत सारी और प्रॉब्लम्स की, मेडिकल एलिमेंट्स का ये जड़ बन गया है। तो इसको आइडेंटिफाई करना कि आपका रीजन क्या है, ये बहुत जरूरी है। तो किसी का सिंगल रीजन हो सकता है, किसी का मल्टीपल रीजन हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया इतने सारे रीजन ये हो सकते हैं, तो एक आइडेंटिफाई करना ये मुश्किल हो जाएगा। तो मिला के सब में कहीं खाने पीने की प्रॉब्लम है, कहीं फिजिकल एक्टिविटी का कम है, कहीं जेनेटिक्स भी है, थोड़ा सा मेडिकल एलिमेंट है, और सिडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है, तो ये सारे कारण मिला के कुछ एक हो सकते हैं या सारे भी हो सकते हैं।
0: जी, तो ये तो हमने जाना कि ओबेसिटी के कारण क्या क्या है। कुछ कॉलर्स हैं, पहले इनकी बात सुन ले। मैम, हेलो। हाँ जी, बताइए।
2: सुजाता रथ मैडम जी को मेरा नमस्कार।
0: हाँ नमस्कार।
2: शोभा डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
2: मेरा सवाल ये है कि मेल और फीमेल में जब हम मेजरमेंट करते हैं वेट का, तो सेम क्राइटेरिया होता है जैसे एज और हाइट के हिसाब से वो सेम होता है या अलग अलग होता है? नंबर टू, के वेट को रिड्यूस करने के लिए हेल्थ को खराब करना कितना उचित है? कुछ लोग मेडिसिन लेते हैं, फास्ट रखते हैं, लगातार फास्ट रखते हैं। नंबर तीन, तो ये मोटापा जो है वो जेनेटिक भी होता है क्या? डॉक्टर साहब बताएं।
1: जी, सबसे पहले आपने बताया कि एज जो है, एज और सेक्स, इन दोनों में डिफरेंस है। मेल्स जो हैं थोड़े से कम ओबीज होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स, बिकॉज फीमेल्स में फैट परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए, ये बॉडी कंपोजिशन ऐसा है, थोड़ा सा डिफरेंस इसमें रहता है। और दूसरा आपने बताया कि वेट कम करने के लिए आप जो अंधाधुंध फास्टिंग करते हैं वो सही है कि नहीं है? जी, तो सबसे पहले आपको ये जानना है, जैसे मैंने बताया कि आप रीजंस पता करें कि आपका आप वेट गेन क्यों किए हैं। पहले तो आप वेट गेन, आप मतलब मोटापे की प्रॉब्लम आपको है ही कि नहीं है, तो ये वाली आपको पहले रीजंस मतलब ये पता करना है कि क्या आप मोटे हैं भी कि नहीं। तो ये दो तीन चीजें होती हैं, पैरामीटर्स होते हैं, जिसको हम जान के पता करते हैं कि आप उस कैटेगरी में आ रहे हैं कि आपको ड्रास्टिक सॉल्यूशंस लेने हैं। उसमें सबसे पहला है कि अगर आप देखते हैं कि आपके शरीर में कुछ समय से आपकी वेस्ट लाइन जो है वो बढ़ती जा रही है, मतलब जो नाभि के ऊपर नीचे का चार चार इंच का हिस्सा है वो थोड़ा फूलता जा रहा है, मेल्स में जनरली वेस्ट एरिया में ही वेट बढ़ता है, लेकिन फीमेल्स में मेनोपॉज के बाद में स्पेसिफिकली उनका वेट जो है वो ऊपर नाभि की तरफ बढ़ना शुरू कर जाता है। अगर ये आपको लगता है कि आप ये वेट ज्यादा बढ़ रहा है तो मतलब आपका मोटापे की शिकायत का आप शिकार हो रहे हैं। दूसरा चीज है कि अगर आपका बीएमआई, जैसे हम जो मेजर करते हैं बॉडी मास इंडेक्स, उसको मेजर करने का तरीका होता है कि आप अपना वजन जो है किलोग्राम्स को उसमें डिवाइड करते हैं, आप हाइट इन मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर में आप हाइट को डिवाइड करते हैं, तो वो अगर बीएमआई आपका 25 आता है या 25 से कम आता है तो आप हेल्दी हैं, आपको वेट कम करने की जरूरत नहीं है बट वेट मेंटेन करने की जरूरत है। लेकिन अगर ये 25 से 30 के रेंज में आता है तो मतलब आप ओवरवेट, मोटापे की तरफ जा रहे हैं, और अगर ये 30 से पार हो जाए तो मतलब आपको ग्रेड 1 ग्रेड 2 ओबेसिटी शुरू हो गई है और आपको सतर्कता से इसका ध्यान रखना है। 40 के पार चला जाए तो मतलब प्रॉब्लम है और इसका तुरंत सलूशन निकालना है। तो पहले तो अपने आप को आपने ये पता करना है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, और कुछ ब्लड टेस्ट भी कराए जाते हैं जिसके कारण आपको लगता है कि अगर शरीर में हार्मोन्स की प्रॉब्लम, हार्मोन्स की मात्रा कम रहती है, जैसे थायराइड कम रहता है, तो उस कारण से भी आपका वेट गेन होता है, जो कि थोड़ा परसेंटेज है लेकिन लेडीज में ये बहुत बढ़ता जा रहा है आजकल। सो ये कारण आपके पता चल जाते हैं तो उसके बाद फिर एक्शन आता है कि आपको क्या करना है। फास्टिंग इज नॉट अ सोल्यूशन, वो आगे हम बाकी कॉलर्स को भी लेके आप देखते हैं कि क्या सोल्यूशन निकलते हैं। पहले आप अपना ये इनिशियली देखें, तो उसके बाद जो हम बात करेंगे वो करेंगे कैसे सोच हमने अपनी चेंज कर
0: जी
1: करनी है।
2: हेलो, हाँ जी, डॉक्टर साहब, मैं रघुविंदर सिंह बोल रहा हूँ। मैंने एक सवाल और पूछा था कि मेडिसिन लेने में कितना नुकसान है वेट रिड्यूस करने के लिए?
1: मेडिसिन डायरेक्टली नहीं ली जाती है, सबसे पहले आप अपनी लाइफस्टाइल और लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना बहुत जरूरी है। मेडिसिन तब ली जाती है जब आपका बीएमआई 40 के ऊपर चला जाए, जब आपको डॉक्टर सलाह दें तभी ली जाती है। मतलब ये मॉर्बिड ओबेसिटी है, मतलब आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम ऑलरेडी है, लाइक डायबिटीज है, थायराइड है, या कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, तब डॉक्टर्स आपको मेडिसिन देते हैं। उससे पहले आप डाइट पे और अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल पे ही अपने आप को मेंटेन करिएगा।
2: धन्यवाद और आपको मेरा सलाम।
1: थैंक यू जी, थैंक यू।
0: तो रघुविंदर जी की बात हमने सुन ली, मैम मैसेजेस देखेंगे कुछ। हेलो
3: हेलो,
0: हाँ जी
3: हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम।
0: गुड आफ्टरनून,
3: और डॉक्टर साहब को भी गुड आफ्टरनून। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये मोटापा हो जाता है इससे कौन कौन सी बीमारियां होने का खतरा रहता है, और क्या ना खाएं जिससे कि ये मोटापा हो, और अगर मोटापा है और हम एक्टिव हैं तो कोई जरूरत है वेट कम करने की?
1: देखिए, जैसे अगर आप, जैसे आपने बताया कि अगर आप मोटे हैं और आप एक्टिव हैं तो आप सही हैं कि नहीं, जैसे मैंने सबसे पहले बताया था कि अगर आप दिनचर्या कर सकते हैं, लेकिन आप जो हैं जितनी भी बीमारियां आपने नाम मैं बता दूं बीमारियों के, आपको हार्मोन इम्बैलेंस की शिकायत हो सकती है, थायराइड कम हो सकता है आपका, आपका डायबिटीज बढ़ सकता है, आपका कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ तरीके के कैंसर होते हैं जो मोटापे के कारण, अगर अनट्रीटेड मोटापा है उसके कारण आ सकते हैं। लेकिन मोटापा वो ग्रेड, बड़ी ग्रेड वाला, जैसे 40 प्लस वाले बीएमआई वाले होते हैं, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम्स के लिए आप रिस्क पे रहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको हो जाए ये प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप अपने लाइफस्टाइल का या और अपने खान पान का और अपनी दिनचर्या का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको 200% ये हो जाएगा। और अगर आपकी फैमिली में किसी को भी कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है या थायराइड है या कोई भी ऐसी हार्मोनल इम्बैलेंस

0: है तो आपको और भी ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ये जैसे डायबिटीज है वो आगे जनरेशन में ट्रेवल हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपना एनवायरमेंट ठीक करेंगे तो आप इस ट्रैवल, जो जेनेटिक ट्रैवलिंग है, उसको आप अपने लेवल तक रोक सकते हैं।
1: जी,
2: थैंक यू मैम, और सुजाता मैडम आपको भी थैंक यू।
1: वेलकम। तो गुरविंदर जी और रघुविंदर जी दोनों की बातें मैम हमने सुन ली, और इनके सवालों में बहुत सारे जवाब अपने आप शामिल हो गए मैम प्रोग्राम में। अब एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे और उसके बाद लौटेंगे हम हेल्पलाइन में, रेनबो दोपहर हेल्पलाइन।

0: आप सुन रहे हैं रेनबो हेल्पलाइन, जो पूर्व में भी प्रसारित किया जा चुका है।
1: स्वागत है आप सभी का रेनबो दोपहर में। हेल्पलाइन चल रहा है और आज हमारा टॉपिक है हाउ टू मेंटेन एन आइडियल बॉडी वेट। एक्सपर्ट हैं डॉक्टर शोभा कॉल, वेट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। प्रोग्राम में हम आगे चलेंगे और अब जो हमारे लिसनर्स हैं उन्होंने लिखा है कि मेरा वेट इतना है, हाइट इतनी है और उम्र इतना है, तो क्या ये आइडियल वेट है? तो सभी को लेना तो मैम संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। तो हम जैसे कि आपने मैम बताया कि वेट बढ़ने के क्या कारण हैं, बहुत सारे आपने रीजंस बताए, जेनेटिक भी हो सकता है, जीवन शैली है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो मैम तो अब जो हमारा टॉपिक है हाउ टू मेंटेन एन आइडियल वेट, तो इस वेट को मेंटेन करके रखने के लिए मैम हमें क्या करना पड़ेगा?
2: बिल्कुल, ये जेनेरिक हम बताएंगे, सभी श्रोताओं पे ये लागू रहेगा। सबसे पहले जैसे हमने रीजंस पता कर लिए अपने कि हम किस कारण से वेट गेन हो रहा हमारा, प्राइमरली जो मेजर तीन रीजन है या दो रीजन है, तो उसके बाद अब इसको करना क्या है हमने। सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारी जो सोच है ना, हम ये सोचते हैं कि हमने तो कुछ खाया नहीं, हमने तो कुछ पिया नहीं, हमारा वेट बढ़ रहा है, या हमारी हवा से वेट बढ़ रहा है, हम पानी पीने से वेट बढ़ रहा है, तो ये सोच को हमने मतलब एक्सेप्ट नहीं करना है। और जैसे रीजंस आपने बताए, जैसे हमने पहले ही बताया था कोविड में हमें बहुत पता चल गए हैं कि हमारे रीजंस क्या हैं वेट गेन करने के लिए। तो वन बाय वन अगर हम उन रीजंस को लेंगे, फूड की बात करते हैं, अगर फूड के कारण आपका वेट गेन हो रहा है, जैसे सुजाता दीदी ने अभी सिग्नल की बात करी ना, ट्रैफिक सिग्नल की बात करी, तो ट्रैफिक सिग्नल से मुझे ध्यान आया कि ट्रैफिक सिग्नल हमें एक और तरीके की सीख भी देता है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल पे हमारे तीन लाइट्स होती हैं, एक रेड लाइट होती है, येलो होती है और ग्रीन होती है। तो रेड लाइट पे क्या होता है कि हमारा ट्रैफिक रुक जाता है, थम जाता है और लोग अवॉइड करते हैं, ठीक है ना। और येलो पे हम सतर्क हो जाते हैं कि अभी चलना है हमने, वी आर कॉशियस। एंड ग्रीन लाइट होते ही हम लोग दबा के भाग जाते हैं, अंधा कुछ देखा नहीं है। सिमिलरली खाने के मामले में भी हमने ये रेड लाइट का या सिग्नल लाइट्स का ध्यान रखना है। जितने भी खाने रेड कलर के हैं, कुछ को छोड़ के, एक्सेप्शंस हर जगह होती हैं, पके हुए खाने, कच्चे खाने, जैसे मीट है हमारा, रेड मीट है, राजमा की दाल है, कुछ भी ऐसे आप रेड कुछ भी आप सोच सकते हैं, उनको हमने थोड़ा अवॉइड करना है, ठीक है। येलो वाली जो है, जैसे येलो लाइट पे हम सतर्क हो जाते हैं, कॉशियस हो जाते हैं। सिमिलरली येलो में आपका घी आता है, अनाज आता है, मेयोनीज आता है, बटर आता है, बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं, वो हमने विद कॉशन खाने हैं, मतलब सोच समझ के खाने हैं, पोर्शन कंट्रोल होके खाने हैं। और तीसरा, जब ग्रीन लाइट आती है तो हम कुछ भी खा सकते हैं, कैसे भी खा सकते हैं, तो उसमें हमारी कोई रोक टोक नहीं है। एक्सेप्शंस उसमें भी हैं कि कुछ ऐसी ग्रीन चीजें होती हैं जिसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, जैसे पीज होते हैं, वो हमने संतुलित मात्रा में ही खाने हैं। तो ये रेड जो सिग्नल लाइट्स को ध्यान में रखते हुए अगर हम अपना खाना प्लान करेंगे, तो हमारा खाना थाली में कैसा होना चाहिए कि रंग बिरंगा होना चाहिए, सब तरह के रंग उसमें आए, सब तरह की पौष्टिकता हमें मिलेगी। जैसे पहले जमाने में हमारा जो थाली होती थी उसमें छोटी छोटी कटोरियां होती थी, उसमें सारा कुछ होता था, मतलब नमकीन भी, मीठा भी, लस्सी भी, चावल भी, रोटी भी, सब कुछ होता था। अब क्या हो गया है, और वो संतुलित आहार इंडिया में, मतलब इट वाज नोन, जाना जाता था कि पौष्टिक और संतुलित आहार, वो भी लोकल रीजन का, अपने रीजन का, अपने रीजन में पका हुआ, उगा हुआ खाना, उन लोगों को वो रास आता था और पाचन में वो हेल्प करता था। लेकिन अब क्या हो गया है, वही जो पोर्शन है कटोरियों का साइज बड़ा हो गया। हमें इसमें यह ध्यान रखना है कि पोर्शन साइज और जो सर्विंग साइज होता है, जैसे हम बाहर भी जाते हैं तो सर्विंग साइज हमारा इतना बड़ा हो गया है, कटोरी का साइज इतना बड़ा हो गया है, जो दो लोग तीन लोग भी खा सकते हैं। तो सर्विंग साइज और पोर्शन साइज में हमें, जो मतलब खाने वाला साइज है उसमें थोड़ा सा हमें अंतर देना है। आजकल के जमाने में हमें थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके सभी चीज खाएंगे तो हमें पौष्टिकता जरूर मिलेगी, क्योंकि एक्स्ट्रा खाएंगे तो वो जाके हमारे वेस्ट लाइन पे और हमारी पूरी बॉडी में जमा होके फैट बन जाएगा। जरा भी एक्स्ट्रा खाएंगे तो तुरंत से वो फैट बन जाएगा हमारे शरीर में, तो इस चीज का ध्यान रखना है। अगर समय है तो मैं और बताती हूँ आपको। जैसे आप एक्टिविटी की बात है, एक्टिविटी आपको पता है फिजिकल एक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि हम कितना खाएं क्या नहीं खाएं। जैसे एक मजे की बात बताएं, बारिश पड़ रही है, चटपटा खाएं, पकोड़े खाए जाएं, ये सभी ऑल ओवर इंडिया या कहीं भी आप देखो तो आपको ये पहला वाक्य यही सुनने में मिलता है घरों में। लेकिन क्या ये वाक्य हमें मिलता है कि आज चलो बारिश हो गई है, मौसम अच्छा हो गया, पकोड़े भी खा लिए हमने, अब तो बारिश थम गई है तो चलो बाहर आंगन में घूमा जाए या पार्क में चार चक्कर मारा जाए। ये सोच हमने बदलनी है अपनी, इस सोच को हमने इनकॉर्पोरेट करना है कि पकोड़े तो खा लिए, उसको स्पेंड करने के लिए, उसको पचाने के लिए हमें थोड़ा चलना फिरना भी पड़ेगा। तो ऐसी सोच को इनकॉर्पोरेट करेंगे तो हम कभी भी वजन गेन नहीं करेंगे, हमारा जो खाया है वो पच जाएगा और हमारा वो स्पेंड हो जाएगा।
1: तो मैम आपने तो बहुत आसान तरीका हमें बताया कि हम कैसे बैलेंस मेंटेन करें, एक ये ट्रैफिक सिग्नल का उदाहरण देकर, रेड येलो एंड ग्रीन, ये अपने जीवन में उतारे, रेड येलो एंड ग्रीन, और हमेशा जब भी हम खाने को बैठे तो ये हमारे मस्तिष्क में एकदम से स्ट्राइक करे कि रेड नहीं खाना है,
2: अवॉइड कम करना, नहीं तो नहीं खा सकते। हाँ। क्योंकि कोई भी फूड जो है ना वो बुरा नहीं होता,
1: बुरा नहीं होता है।
2: तो वो
1: बॉडी नीड्स एवरीथिंग
2: यस, वो बना इसलिए है कि उसको आप पोर्शन कंट्रोल में खाएंगे तो वो आपको आपको फायदेमंद रहेगा।
1: येलो इट मींस कि
2: कॉशन से खाएं, कम खाएं, पोर्शन कंट्रोल करके।
1: ग्रीन हम खा सकते हैं,
2: ग्रीन हम खा सकते हैं विद सम एक्सेप्शन।
1: चलिए इसी बात पर एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और उसके बाद लौटेंगे।
2: जी

0: कॉशन से खाएं, कम खाएं, पोर्शन कंट्रोल करके
1: ग्रीन हम खा सकते हैं,
0: ग्रीन हम खा सकते हैं विद सम एक्सेप्शन।
1: चलिए इसी बात पर एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और उसके बाद लौटेंगे
0: जी।

0: आप सुन रहे हैं रेनबो हेल्पलाइन, जो पूर्व में भी प्रसारित किया जा चुका है।
1: आप सुन रहे हैं 102.6 एफएम रेनबो। दोपहर का शो चल रहा है रेनबो दोपहर हेल्पलाइन। आज का टॉपिक है हाउ टू मेंटेन एन आइडियल बॉडी वेट। एक्सपर्ट हैं डॉक्टर शोभा कौल, वेट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, और मैं सुजाता रथ। और जैसे कि मैम शोभा मैम ने हमें ट्रैफिक सिग्नल का उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण देकर बताया कि हम कैसे सतर्क रह सकते हैं अपने वेट मैनेजमेंट के प्रति, रेड येलो एंड

0: हाइट जो आप सेंटीमीटर्स में लेंगे, सॉरी मीटर्स में लेंगे, उसको स्क्वायर कर दीजिए, तो ये आपको आपका बीएमआई मिल जाएगा. सो वेट इन केजीज डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर. हाइट को मीटर्स में माप के आप उसका स्क्वायर करिए तो आपको आपका बीएमआई मिल जाएगा.
1: जी मेरिट से अंशी जी को प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और लिखा है कि वेरी नाइस शो. और दिनेश त्याल जी ने भी शो की तारीफ की है और इसी तरह से बहुत से लिसनर्स के व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं. कुछ ने ये जानना चाहा है कि उनका वेट, वो अंडर वेट है और कैसे बढ़ाया जा सकता है. तो मैम अपने शो में सबसे पहला जो एक कॉलर था उनके जवाब में कहा था. एक कॉलर है लाइन पर, मैम देखते हैं कि ये क्या पूछना चाहते हैं. हेलो, ये डिस्कनेक्ट हो गई ये कॉल. तो मैम आपने वेट बैलेंस रखने के तरीके तो बता दिए.
0: जी
1: कई बार ऐसा होता है मैम कि हम जिमिंग के द्वारा या डाइटिंग के द्वारा एज एडवाइज्ड बाय अ डाइटिशियन वेट को कंट्रोल तो कर लेते हैं लेकिन लॉन्ग रन में मैम उसको मेंटेन करके नहीं रख पाते. एक बार जिम जाना छोड़ दिया या अकॉर्डिंग टू डाइटिशियन जो भी उन्होंने बताया है स्ट्रिक्टली खाना छोड़ दिया, उसके बाद फिर वही हालत हो जाती है मैम.
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपका 100% जो है ना वो वेट गेन हो जाएगा. तो जैसे आपने फूड की बात की, फूड में जो प्रिकॉशन लेनी है साथ में हमने फिजिकल एक्टिविटी को भी ध्यान में रखना है. सो फिजिकल एक्टिविटी अगर आप बिल्कुल ही सिडेंट्री लाइफस्टाइल वाले हैं, जैसे मतलब डेस्क जॉब करते हैं आप, या आप थोड़ा सा फिजिकल मतलब जैसे कॉलर का था फोन आया था कि वो लेबरर हैं, गार्डनर हैं, तो तीन तरफ के होते हैं बॉडी टाइप्स होती हैं. जैसे जो सिडेंट्री होते हैं, मीडियम फिजिकल वर्कर होते हैं, या ज्यादा फिजिकल काम करने वाले होते हैं. सो आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से आपको एनर्जी खानी है, मतलब खाना खाना है. तो इसके अलावा जो हम एक्टिविटी कर सकते हैं, स्पेसिफिकली जो सिडेंट्री लोग हैं, कम से कम 15 से 20 मिनट हर दिन आपको कोई ना कोई फिजिकल एक्सरसाइज किसी भी तरीके की आपको अपने शरीर अपने दिनचर्या में लाना जरूरी है. इसमें वॉक हो सकता है, आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं. एंड ये करना जरूरी है कम से कम आपका ये 15-20 मिनट इस तरह से करें कि आपका जो पल्स है वो डबल हो जाए. वही एक्सरसाइज सफल होगी जब आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, आपकी पल्स बढ़ेगी और आपका थोड़ा सा ब्रेथलेसनेस हो जाएगा. उससे कैलोरीज बर्न होंगी, वो सहायक हो जाएंगी आपकी टोटल कैलोरीज एक्सपेंडिचर में. अब आपने बात करी कि हम डाइट करते हैं, फिर जिम जाते हैं, फिर जिम छोड़ देते हैं, तो हम तो होता ये क्या है कि जो वेट मेंटेनेंस होती है ना, वो एक इक्वेशन होती है, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी एंड इनपुट ऑफ एनर्जी, कितना खाते हैं और कितना हम खर्च करते हैं. अगर 2000 कैलोरीज खाते हैं, 2000 हमने खर्च करी, तो हमारा वेट बराबर रहेगा. अब जब आपने जिम के टाइम में जब आपने डाइट पे भी ध्यान दिया, मतलब आपने खाना भी कम खाया और आपने एक्सरसाइज करके अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया भी, लेकिन जब आप जो दोनों में आपका जो है वेट कम होता चला गया, लेकिन जब आपने एक्सरसाइज बंद कर दी, आपने खाना भी नॉर्मल पे आ गए, तो वापस आपका टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया और इनपुट आपका वैसे के वैसे बढ़ता रहा. सो इनपुट और आउटपुट के जो तालमेल है ना, वो सीढ़ी नीचे ढलक गई, तो आप डेफिनेटली वेट गेन करेंगे. सो 2000 के बदले आपने 1500 ही स्पेंड किया और खाया तो 2000. अगर बिल्कुल आप बढ़ाते भी नहीं है खाना, वही खाना खाते हैं, लेकिन एक्सरसाइज कम कर दी तो एक्सपेंडिचर कम हो गया, तो 500 का माइनस हो गया ना, 500 माइनस हो गया, तो वो आप दिन का, तो आप 30 दिन का लगा लेंगे तो करीब ये 900 कैलोरीज आपका, उससे ज्यादा मतलब
1: तो
0: आपका
1: ये बड़ा साइंटिफिक ये है कि
0: बिल्कुल
1: पहले
0: बिल्कुल,
1: से
0: बिल्कुल.
1: भी ज्यादा हम वेट गेन कर लेंगे अगर हमने जिम छोड़ दी और डाइट छोड़ दिया.
0: तो क्या करना है उसमें कि अगर हमने एक्सरसाइज करना छोड़ दिया है तो डाइट भी हमने कम करनी है. उतना ही खाइए जितना आप स्पेंड करते हैं, या आप अपनी लाइफस्टाइल को बढ़ाइए अपनी एक्टिविटी में, कुछ और एक्टिविटी का जरूरी नहीं है जिम जाना, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, आप वॉक के लिए जा सकते हैं, कुछ ना कुछ अपने एक्सरसाइज कर रहेंगे तो वेट आपका मेंटेन में रहेगा.
1: जी मैम एक कॉलर वेट कर रहे हैं. हेलो हेलो हेलो हाँ कनेक्ट नहीं हो पा रही है मैम ये लाइन। हाँ एक सवाल मैम और जो मैं पूछना चाह रही थी वो बच्चों से रिलेटेड है।

0: जी
1: बच्चे आजकल बहुत ज्यादा फास्ट फूड की तरफ हम देखते हैं कि इतना चारों तरफ से इतना प्रलोभन होता है उनके लिए फास्ट फूड का, तो वो शुरू से ही उनका एक ओबिसिटी की तरफ वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए मैम आप पेरेंट्स को या बच्चों को भी क्या एडवाइस करना चाहेंगी?
0: ये आपने बहुत सही बात कही है। स्पेसिफिकली अपना ये जो कोविड के दौरान में चाइल्डहुड ओबेसिटी का इतनी मात्रा बढ़ गई है हमारे इंडिया में भी, कि उसको अभी कंट्रोल करना, यही बच्चे जो अभी गेन किए हैं 2 सालों में, इनको अपने आगे वाले सालों में, लाइफ में, इसको कम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो पेरेंट्स का है, घर के एनवायरमेंट का है। अगर घर वाले भी सतर्क नहीं हैं, वो भी हाँ में हाँ मिला देते हैं बच्चों की, ठीक है खाना कौन बनाए, बाहर से आ जाए, एक आध बार तो खा लिया हमने, लेकिन अगर हम इसको एक रूटीन बना लें तो हमारे लिए वो सही नहीं है। अगर हमने बाहर कभी खाना खा लिया है तो हमारा सेकंड मील है उसको कॉम्पनसेट करें। हमारा पूरे दिन में 4 मील्स होते हैं या 6 मील्स होते हैं, 2 मील बाहर खा लिए, बाकी के 4 मील्स में कॉम्पनसेट करें। उस दिन कॉम्पनसेट नहीं कर सकते हैं तो नेक्स्ट डे करें, एक हफ्ते में करें, एक महीने में करें। कॉम्पनसेट करना बहुत जरूरी है। अगर कॉम्पनसेट भी नहीं कर सकते हैं किसी तरह से भी, तो बच्चों को आपने फिजिकल एक्सरसाइज के लिए, फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी प्रोत्साहित करना है, कि तभी हम आपको बाहर खिलाएंगे पिलाएंगे, जंक फूड खिलाएंगे, अगर आप उतना ही स्पेंड करोगे, एक्सपेंड करोगे, आप अपना खर्चा करोगे, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना खाओ, मतलब कम मात्रा में खाना है, क्योंकि अनहेल्दी फूड है, अल्टीमेटली पौष्टिक होना चाहिए, लेकिन कभी कभी कबार खा लिया तो उतना ही स्पेंड कर लिया या कॉम्पनसेट कर दिया किसी और दिन किसी और मील में। तो ये काम जो है वो हमारे टीचर्स का है, हमारे पेरेंट्स का है, और ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि बच्चे प्रोत्साहित हो जाएं खुद ब खुद अपने फूड को बैलेंस करने के लिए, एक्टिविटी को बैलेंस करने के लिए।
1: और जो मैम जिनमें जेनेटिकली ये ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, वहां पर आप क्या सलाह देंगी कि कैसे वेट मैनेज किया जाए? मैम
0: ऐसे लोगों में बहुत कम परसेंटेज होती है जो ये जीन जेनेटिकली ट्रांसमिट होता है। इसमें ज्यादा रोल जो होता है ना वो एनवायरमेंट का होता है, फैमिली एनवायरमेंट कैसा है। सो जेनेटिक अगर लेट्स से 5% है, फैमिली का एनवायरमेंट अगर सही रहेगा, सो अगर उन जीन्स को एनवायरमेंट सोशली और घर में सही मिलेगा तो वो जीन्स अपने अपना रास्ता बदल सकते हैं। लेकिन अगर उन जीन्स को वही खराब एनवायरमेंट मिलेगा तो वो और फ्लरिश हो जाएंगे और ओबेसिटी तो 100% आनी आनी है। और चाइल्डहुड ओबेसिटी में जो इंसुलिन डिपेंडेंट ओबेसिटी है वो और कॉमन हो गई है, जो कि बहुत घातक सिद्ध होती है आगे के लिए। सो ऐसे जीन्स को अगर आप हेल्दी एनवायरमेंट दें तो ये अपना रास्ता रोक लेंगे।
1: जी, तो ये हेल्दी एनवायरमेंट क्या है मैम, थोड़ा सा इसके बारे में?
0: हेल्दी एनवायरमेंट मतलब जैसे घर का, घर में जिस घर में आप रह रहे हैं, तो वो जो 4 सदस्य घर में रह रहे हैं वो अगर संतुलित खाना खाएं, एक्टिविटी उनकी बराबर रहे, फिजिकल एक्टिविटी बराबर रहे, या जिस स्कूल में आप जाते हैं जो आपका ग्रुप्स है, साइकिल है, या बड़े बड़े लोग भी हैं जैसे कॉर्पोरेट्स में है, उनका भी बहुत ज्यादा ऐसा हेक्टिक लाइफस्टाइल रहता है, नींद नहीं करते हैं पूरी, सो नींद करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, मैं वो बोलने वाली थी आगे। तो अगर नींद भी हमारी कच्ची रही, बच्चे भी आजकल पूरा टाइम मोबाइल्स पर रहते हैं, टीवी पर रहते हैं, नींद कम हो जाती है, बॉडी को रिजुविनेट करने में समय लगता है, नहीं कर पाती है, तो वो नेगेटिव इफेक्ट्स उसमें आते हैं। सो नींद भी उतनी इंपॉर्टेंट है। सो एनवायरमेंट अगर अपना सही करें, वो स्कूल का एनवायरमेंट हो, बच्चों का एनवायरमेंट हो, सोशल एनवायरमेंट हो, उसको सही करना बहुत जरूरी है। और पहल आपने ही करनी है। आपको एनवायरमेंट खराब मिलेगा लेकिन आप उसमें गिव इन नहीं करोगे, आप अपने आप को दृढ़ रखोगे, अपनी सोच को बरकरार रखोगे, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हो।
1: तो ये एक विल पावर की बात है मैम, पहल हमें को करनी पड़ेगी। द इंडिविजुअल हैज टू टेक द इनिशिएटिव और विल पावर हमारा स्ट्रांग होना चाहिए।
0: हाँ।
1: तो ये इसी तरह से हम एक आइडियल बॉडी वेट को मेंटेन,
0: हाँ, और जहां आप जब तक आप खुद कर सकते हैं तो जरूर करिए, अदरवाइज किसी से सलाह लेनी है, बड़ों से सलाह लेनी है, टीचर से सलाह लेनी है, वो भी करके देख लीजिए, और सही समय पे करेंगे तो आगे आपको प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी।
1: थैंक यू सो मच डॉक्टर शोभा कौल, वेट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, हमारी एक्सपर्ट थी। रेनबो दोपहर हेल्पलाइन में टॉपिक था हाउ टू मेंटेन एन आइडियल बॉडी वेट। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
3: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
2: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
4: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
5: इग्नोर नहीं, याद करो।
6: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
7: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
8: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगमपुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
7: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
9: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
10: NCR EPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
11: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो और अब इस घंटे के मुख्य समाचार। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 12वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन जारी है।

प्रवर्तन निदेशालय कर्नाटक लोक सेवा आयोग में कथित प्रश्न पत्र लीक घोटाले से जुड़े मामले में राज्य में कई ठिकानों पर तलाशी अभियान चल रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर विदेशी अंशदान विनियम संशोधन विधेयक को लेकर वोट बैंक की राजनीति के लिए गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत गणना का चरण पूरा हो गया है। 24 अगस्त से 23 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि डेरगांव दीमापुर पाइपलाइन के चालू होने से नागालैंड अब पूर्वोत्तर गैस ग्रिड और राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जुड़ गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने सिक्किम में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए वर्ष 2002 को आधार वर्ष निश्चित करने के निर्वाचन आयोग के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। केरलम में आज से विजिंजम समुद्री बंदरगाह से सीधा निर्यात और आयात शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशान इस सेवा का उद्घाटन करेंगे। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी है। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल का रैंक दिया गया है। काठमांडू में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें ये सम्मान प्रदान किया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने

आज उधमपुर, रियासी और कठुआ जिलों में संदिग्ध लोगों की आवाजाही की सूचना मिलने के बाद कई जगहों पर तलाशी अभियान शुरू किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बढ़ते तनाव के बीच यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने क्षेत्र में पाकिस्तानी बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। मौसम विभाग ने आज झारखंड में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। FHI महिला हॉकी विश्व कप में आज भारतीय टीम पूल डी के अपने दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी। BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं आशियाना वुमेन स्पेशल आकाशवाणी एफएम रेनबो पर और मैं हूं ज्योतिका। देखिए, वुमेन के वोकैबुलरी में एक सेंटेंस बहुत कॉमन है, रहने दो मैं कर लूंगी, ऑफिस का काम मैं कर लूंगी, घर का काम मैं कर लूंगी, प्लानिंग मैं कर लूंगी, प्रॉब्लम वो भी मैं सॉल्व कर लूंगी। लेकिन हर चीज अकेले करना इंडिपेंडेंस नहीं होता है, कभी कभी डेलीगेटिंग इज द स्ट्रेंथ, आस्किंग फॉर हेल्प इज स्ट्रेंथ, शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इज स्ट्रेंथ। और ये सिर्फ घर की बात नहीं है, वर्क प्लेस में भी जरूरी नहीं कि हर टास्क एक्सेप्ट करके कि हम अपनी कैपेबिलिटी को प्रूव करें। आप कैपेबल हैं इसका मतलब ये नहीं कि हर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली आपकी है ना भाई। और मुझे लगता है कि वुमेन को ये सेंटेंस थोड़ा और कंफर्टेबली बोलना सीखना चाहिए, आई नीड सम हेल्प। इसमें वीकनेस कुछ भी नहीं है, स्ट्रांग होने का मतलब दुनिया का वेट अपने कंधों पर रखना नहीं होता मैडम, स्ट्रांग होने का मतलब ये भी है कि आप अपने लिए काफी हैं। ये जानना बड़ा जरूरी है कि हर काम आपका नहीं है, हर वक्त हाँ बोलना मैं कर दूंगी कहना भी जरूरी नहीं है। सोचिए जरा इस बारे में, एंड आई एम श्योर यू एग्री विद मी।

0: रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, न हमसे मिलता है न साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
1: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
0: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
2: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
3: इग्नोर नहीं, याद करो।
4: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
6: पता का चाय, गजब का स्वाद।
7: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
8: आकाशवाणी FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं आशियाना और आज वुमेन स्पेशल में बात हो रही है द न्यू स्ट्रॉन्ग वुमेन की। देखिए, हम बात करेंगे दुनिया के सबसे छोटी छोटी चीज़ों की, लेकिन कभी हम बड़े मुद्दों पर बात नहीं करते। कभी कभी हमें डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में भी नो कहना आना चाहिए, क्योंकि नो कहना ही हमारी ताकत है, स्पेशली खासकर हम महिलाओं के लिए। मना करूंगी तो बुरा लगेगा, क्या सोचेंगे, चलो एडजस्ट ही कर लेती हूँ। हम हर बार ये कह देते हैं और फिर एक सिंपल नो की जगह हम पूरा पैराग्राफ एक्सप्लेन करने में लग जाते हैं, है ना? लेकिन बाउंड्रीज बनाना रूड नहीं होता है। आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, आपका कंफर्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी मेंटल स्पेस इंपॉर्टेंट है। हर इनविटेशन एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं, हर फेवर के लिए अवेलेबल रहना जरूरी नहीं, हर आर्ग्यूमेंट में पार्टिसिपेट करना जरूरी नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट, हर नो के साथ एक्सप्लेनेशन देना भी जरूरी नहीं है। समटाइम्स बस इतना ही कह देना, नो दैट डजंट वर्क फॉर मी, एक कंप्लीट आंसर है। इसके आगे क्यों, क्या नहीं हुआ, कैसे कर सकते थे, मैंने मना क्यों किया, एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जिस दिन एक महिला बिना गिल्ट के, बिना नो कह, मतलब बिना किसी गिल्ट के नो कहना सीख जाती है ना, उस दिन वो एक्चुअली अपने यस की वैल्यू

क्यों, क्या नहीं हुआ, कैसे कर सकते थे, मैंने मना क्यों किया, एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जिस दिन एक महिला बिना गिल्ट के, बिना नो कह, मतलब बिना किसी गिल्ट के नो कहना सीख जाती है ना, उस दिन वो एक्चुअली अपने यस की वैल्यू भी समझने लगती है। अब अगर आप मेरी इस बात पे थोड़ा सा गौर फरमाएंगे तो आप ज़रूर अग्री करेंगी कि हाँ यार, कई बार

वेलकम बैक टू आशियाना वुमन स्पेशल. मैं हूं ज्योतिका. एक चेंज जो मुझे पर्सनली बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, वुमन का फिटनेस. जी हाँ, वो जो होता है ना, बस क्या ही कहें, वो सबसे ज्यादा अच्छा होता है. एक बात आपसे जरूर यहां शेयर करना चाहूंगी. एक वक्त था जब फिटनेस कॉन्वर्सेशंस काफी हद तक एक नंबर के अराउंड होती थी. अगर आपको याद हो कि आपका वेट कितना है, आज कॉन्वर्सेशन ग्रेजुअली शिफ्ट हो रही है कि आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, एनर्जी कैसी है, स्टैमिना कैसा है. वुमेन वेट लिफ्ट कर रही हैं, रनिंग कर रही हैं, योगा, पिलाटेस, साइकिलिंग, स्विमिंग, ट्रैकिंग, स्पोर्ट्स, वट एवर मेक्स देम फील गुड एंड हैप्पी. और मुझे ये शिफ्ट बहुत ही ब्यूटिफुल लगता है. देखो, वर्कआउट ना पनिशमेंट नहीं है. बिकॉज यू एट समथिंग yesterday और उसको फिर वर्कआउट करके आप बर्न करें, अच्छी बात है, लेकिन एक प्रेशर की तरह लेंगे तो नहीं हो पाएगा. वर्कआउट कैन बी अ सेलिब्रेशन ऑफ वॉट योर बॉडी इज केपेबल ऑफ डूइंग. स्ट्रॉन्ग लेग्स जो आपको दुनिया एक्सप्लोर करवा सकें, स्ट्रॉन्ग आर्म्स जो वेट उठा सकें, बेटर स्टैमिना, बेटर एनर्जी, और वो फीलिंग जब आप कल से आज थोड़ा ज्यादा कर पाते हैं तो, और शीशे के सामने खड़े होकर बस अपने आप से बस ये पूछते हैं कि कैसी लग रही हूं मैं आज. कभी ये भी पूछ कर देखिए कि मैं कैसा महसूस कर रही हूं, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इज अ ब्यूटिफुल फीलिंग.

और एक बार फिर से वेलकम बैक है आपका। एक इनविजिबल ऑडियंस है जो हम में से बहुत लोगों की लाइफ में डिसीजंस में हमेशा प्रेजेंट रहती हैं। एनी गेसेस कौन है वो इनविजिबल ऑडियंस? उन्हें कहते हैं लोग। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोगों को अच्छा लगेगा कैसा। लेकिन एक स्टेज के बाद परहैप्स एक सवाल और पूछना चाहिए, मुझे क्या लगता है हर चॉइस को पब्लिक अप्रूवल की जरूरत नहीं है। आपको कैसे कपड़े पहनने हैं, करियर में क्या चूज करना है, वीकेंड कैसे स्पेंड करना है, किस फ्रेंडशिप को कंटिन्यू करना है, हर डिसीजन पर दुनिया से वोटिंग करवाना जरूरी नहीं होता। और इंटरेस्टिंगली, जिस लोग क्या कहेंगे को हम इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं ना, वो लोग, हाँ जी वही लोग, यूजुअली दो दिन के बाद ना किसी और टॉपिक पर चर्चा कर रहे होते हैं। तो आपके लिए वो गई बात वाली बात होती है ना, बस। सो इतना स्ट्रेस मत लीजिए, बस आपको अपनी लाइफ का

दोस्तों, बातों और गानों के साथ पता ही नहीं चला कि आज के आशियाना वुमेन स्पेशल से विदा लेने का वक्त आ गया है। आज हमने स्ट्रेंथ की बात की, लेकिन जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट थॉट आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि स्ट्रांग वुमेन होने का मतलब हार्ड वुमेन होना नहीं होता है। याद रखिएगा, आप स्ट्रांग हैं तो आपके इमोशंस हाइड करने की आपको जरूरत नहीं। आप इंडिपेंडेंट हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप एम्बिशियस हो सकती हैं और डीपली इमोशनल भी हो सकती हैं। मैं हूं ज्योतिका, आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। अपना ख्याल रखिए, अपनी आवाज को इम्पोर्टेंस दीजिए और सुनते रहिए आकाशवाणी एफएम रेनबो, क्योंकि अब वक्त हो चला है हमारे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम का। और मैं आपसे एक बार फिर से मिलूंगी शाम 4 बजे अल्फा जन में। इस धुन के उस पार आप सुनेंगे हमारा स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम।

0: पतंग। CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में।
3: नमस्कार श्रोताओं, और मैं हूं अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है।
2: लिखते हैं, शुद्ध विचार, शुद्ध आचरण और शुद्ध मन ही सच्चे सुख का आधार है। मन की शुद्धता ही जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है भाटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू।
2: संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।
3: और धमधा ग्राम सुखरी कला छत्तीसगढ़ से

0: अमित जंघेल, शगुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल,
1: एनआर प्रसाद, अखिला प्रसाद, राजाजी नगर बेंगलोर से,
0: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
1: सभी श्रोताओं को हमारा आभार संदेश भेजने के लिए।
0: तो श्रोताओं, एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
1: जी
0: श्रोताओं, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक विषय पर। तो विमलेश जी, जरा आज का विषय तो बताइए।
1: अजीत जी, आज हम बात करेंगे हमारी भाषा हिंदी के बारे में और जानेंगे कि इसका प्रकाश कैसे जगह जगह फैल रहा है और दुनिया की दूसरी भाषाओं पर किस तरह इसका प्रभाव पड़ रहा है।
0: जी हाँ श्रोताओं, आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह दुनिया की दूसरी भाषाओं में पहुंचे हमारी प्यारी हिंदी भाषा के शब्द।
1: जी,
0: यानी किस तरह दूसरी भाषाओं ने हमारी भाषा के कुछ शब्दों को अपना लिया। तो विमलेश जी, आपसे करें शुरुआत।
1: जी जरूर। तो अजीत जी, पहला शब्द है जंगल। देखिए, जब हम जंगल शब्द सुनते हैं तो हमारी आंखों के सामने घने पेड़, जंगली जानवर और प्रकृति का विशाल संसार नजर आता है, आता है ना?
0: जी।
1: लेकिन क्या आप जानते हैं, अंग्रेजी भाषा में इस्तेमाल होने वाला जंगल शब्द भारत की ही देन है।
0: श्रोताओं, आपको बता दें कि यह शब्द संस्कृत के जंगल से विकसित होकर हिंदी में आया। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसका प्रयोग वन प्रदेश या निर्जन भूभाग के लिए मिलता है।
1: जी।
0: हुआ ये कि जब 17वीं और 18वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने यहाँ के विशाल वनों के लिए स्थानीय लोगों से यही शब्द सुना।
1: जी।
0: और इसे अंग्रेजी में जंगल के रूप में अपना लिया, है ना मजेदार बात?
1: हाँ बिल्कुल, वही जंगल, JUNGLE।
0: जी।
1: तो अजीत जी, आज दुनिया के किसी भी देश में यदि अमेज़न के वर्षा वनों, अफ्रीका के घने जंगलों या एशिया के

0: विकसित होकर हिंदी में आया। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसका प्रयोग वन प्रदेश या निर्जन भूभाग के लिए मिलता है।
1: जी।
0: हुआ ये कि जब 17वीं और 18वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने यहाँ के विशाल वनों के लिए स्थानीय लोगों से यही शब्द सुना
1: जी,
0: और इसे अंग्रेजी में जंगल के रूप में अपना लिया। है ना मजेदार बात?
1: हाँ बिल्कुल, वही जंगल, JUNGLE।
0: जी
1: तो अजीत जी, आज दुनिया के किसी भी देश में यदि अमेज़न के वर्षा वनों, अफ्रीका के घने जंगलों या एशिया के वन क्षेत्रों की बात होती है या विशेषकर बच्चों की कहानियों की बात होती है, अजीत जी एक और बात, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे शब्दकोश भी जंगल शब्द की भारतीय उत्पत्ति को स्वीकार करते हैं।
0: तो विमलेश जी, अब जानते हैं एक और शब्द के बारे में।
1: जी।
0: वो शब्द है शैम्पू। आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो शैम्पू शब्द से परिचित ना हो, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस शब्द की जड़ें भी भारत में है।
1: वाह, ये तो बड़ी नई और रोचक बात है।
0: जी विमलेश जी, ये शब्द उर्दू के चांपो या बोलचाल वाली हिंदी भाषा के चंपी शब्द से निकला है। चांपो का अर्थ है सर दबाना या मालिश करना। भारत में सिर पर तेल लगाकर मालिश करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है।
1: जी बिल्कुल, अंग्रेजी भाषा ने बड़ी खुशी से अपनाया है, वो शब्द है पायजामा। ये शब्द भी भारत की ही देन है। ये हिंदी उर्दू के उपयोग में लाए जाने वाला शब्द पायजामा से आया है। ये शब्द निर्माण की बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पाय अर्थात पैर और जामा अर्थात वस्त्र, यानी पैरों में पहनने वाला वस्त्र।
0: जी श्रोताओ, ब्रिटिश अधिकारी भारत में रहते समय इस ढीले और आरामदायक पहनावे से बहुत प्रभावित हुए।
1: जी।
0: वे इतने प्रभावित हुए कि वे इसे इंग्लैंड ले गए और अंग्रेजी में इसका उच्चारण पजामाज हो गया। आज दुनिया के लगभग हर देश में रात के आरामदायक वस्त्र के लिए यही शब्द प्रयोग में लाया जाता है।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी कुछ प्रसिद्ध शब्दों के बारे में जो हिंदी, उर्दू या संस्कृत के हैं, लेकिन अब अंग्रेजी के साथ साथ और भी कई विदेशी भाषाओं में घुल मिल गए हैं। अब सुनिए आज का प्रश्न।
0: तो श्रोताओ, आज का प्रश्न है कि किसी दक्षिण भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित है।
1: जी।
0: इसका हिंट है विमलेश जी, जरा इसका हिंट दे दें।
1: इसका संबंध खानपान से है।
0: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: किसी दक्षिणी भारतीय भाषा का शब्द बताइए जो आज हिंदी और कई भारतीय भाषाओं में बहुत प्रचलित है। इसका हिंट है,
0: इसका संबंध खानपान से है। श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और विचार भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो जरूर करें। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप करें NCERT बुक PDF। इस वेबसाइट से आप पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
0: अश्रोताओं, इन्हीं पुस्तकों को अगर आप ऑडियो बुक प्रारूप में भी सुनना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर। आप इस चैनल पर जाकर हमारे कार्यक्रमों को या हमारे ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम पंडित बिरजू महाराज।
1: कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में कथक नृत्य सम्राट बिरजू महाराज के जीवन और भारतीय शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के बारे में उनके ही साक्षात्कार द्वारा बताया गया है।
0: पंडित

0: भारत विविधताओं का देश है। यहाँ की भिन्न भिन्न संस्कृति, भाषा, धर्म, कला और रोचक परंपराएं इसे अनूठा और अद्वितीय देश बनाती हैं। जहां तक नृत्य कलाओं की बात है, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा देश है जहां इतनी नृत्य कलाएं हैं।
1: भारत के शास्त्रीय नृत्यों में भरतनाट्यम, कथक, कथकली, ओडिशी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम और सत्रिया नृत्य मुख्य रूप से जाने जाते हैं।
0: आज हम बात करेंगे महान कथक नृत्य सम्राट बिरजू महाराज की। वर्ष था सन 1958, स्थान कलकत्ता का नाट्य रंगमंच। मात्र 20 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपनी विलक्षण नृत्य प्रतिभा का प्रदर्शन कर सबको मानो सम्मोहित सा कर दिया था। बिरजू महाराज का वास्तविक नाम बृजमोहन नाथ मिश्रा था। यही बृजमोहन नाम आगे चलकर बिरजू के जनप्रिय नाम से जाना जाने लगा। 4 फरवरी सन 1938 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में उनका जन्म हुआ था।
2: सरिया खेलते हैं किसन रामा, दूसरे पिसन रामा, तीसरे।
0: उनके जन्म के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात कही जाती है।
1: कहते हैं कि जिस दिन उनका जन्म हुआ था, उस दिन अस्पताल में उन्हें छोड़कर सारी कन्याओं का जन्म हुआ था। इसी वजह से उनका नाम बृजमोहन रखा गया था। उनके पिता का नाम जगन्नाथ महाराज था, उन्हें अच्छन महाराज भी कहा जाता था। वो रायगढ़ रजवाड़े में दरबारी नर्तक हुआ करते थे।
0: राज दरबार में नर्तक होने के कारण

0: परिवार में किसी बात की कमी ना थी। बचपन से ही उन्हें कला, संगीत और नृत्य का वातावरण मिला। 5 वर्ष की आयु में ही उन्होंने तबला और हारमोनियम बजाना सीख लिया था। वो घर और दरबार के नृत्य को देख देख कर 7 वर्ष की आयु में नृत्य करना भी सीख गए थे।
1: एक दिन जब बिरजू नृत्य का अभ्यास कर रहे थे तो उनके पिताजी कमरे में आए। प्रणाम पिताजी।
2: जीते रहो बेटा बिरजू। बेटा तुमने नृत्य का बहुत अच्छा अभ्यास कर लिया है। आज तुमने बहुत अच्छा नृत्य किया। लेकिन
1: क्या पिताजी?
2: बेटा कहते हैं ना, कोई भी कला तब तक अधूरी ही रहती है जब तक गुरु का आशीर्वाद और ताल

0: अपनी कला को संपूर्ण कब करोगे, यानी तालीम कब लोगे?
1: जब आप कहें आपसे दीक्षा ग्रहण करना तो मेरा परम सौभाग्य होगा।
0: लेकिन भेंट लिए बिना गंडा नहीं बांधूंगा।
1: जी, जैसी आपकी आज्ञा।
0: जीते रहो बेटा, सदा सुखी रहो, सदा सुखी रहो।
1: जी पिताजी।
2: कथक नृत्य की प्राचीन परंपरा रही है कि तालीम शुरू करने से पहले गुरु शिष्यों को गंडा बांधते थे और शिष्य गुरु को दक्षिणा या भेंट देते थे। वही परंपरा आज भी चली आ रही है। गंडा गुरु और शिष्य के बीच एक पवित्र रिश्ता होता है। गुरु के बांधे हुए गंडे को शिष्य अक्सर आजीवन धारण करते हैं।
3: तब उन्होंने अपने शिष्य बिरजू को गंडा बांधा। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद घर पर गरीबी छा गई। एक साक्षात्कार में उन्होंने अपने जीवन के कुछ अनुभव साझा किए थे, आइए सुनते हैं।
4: पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कृष्ण से जुड़ा नृत्य है कथक, जिसमें आप पारंगत भी हैं और कई दशकों से आप इस नृत्य की खिदमत कर रहे हैं। विरासत में मिला आपको ये नृत्य। अगर हम आपके शुरुआती दिनों की तरफ चलें, बहुत कम लोग आपके उन दिनों के बारे में जानते हैं और ख़ासकर आपके घराने के बारे में। कैसे शुरुआत हुई?
5: हमारे पर बाबा दुर्गा प्रसाद जी, ठाकुर प्रसाद जी, उससे पहले भी नृत्य रहा है और हम लोग हड़िया से निकले हुए लोग, 989 घर थे वहाँ पर। नवाब वाहिद अली शाह ने जब बुला लिया हम लोगों को वहाँ लखनऊ में, तो राज दरबार में पूरी इज्जत, पालकी भेजना, सिपाही भेजना, बाबा को सवार करके ले जाना, तो ये सब कहानियाँ अम्मा बताती थी। जैसे हमारे अच्छन महाराज मेरे पिताजी रहे, मैं छोटा था तो बहुत खील बताशा जेब में पड़ा और

0: बाबा पिताजी सबका नाम इतना रहा, तो मैं भी कोशिश करूंगा उस तरह से बढ़ने की कोशिश करूंगा।
1: अगर आपके उन संघर्ष के दिनों की हम बात करें, उस संघर्ष के दिन कैसे थे आपके?
0: मेरे ख्याल से एक समय तो हमारे घर में चार चार घोड़े, बग्घी, टमटम सबके नाम से, चाचा जी के नाम से बाबू, पर धीरे धीरे वो क्षीण होते होते, कहते ना एक दफ़ा तो आदमी उरूज नाम पकड़ता है, अभी धीरे धीरे सब चीज़ ख़त्म होने लगती है। और यहाँ तक हुआ कि कर्जदार हो गए हम लोग घर में। मैंने कहा अम्मा जो भी दाल रोटियों की खाऊंगा पर मैं रियाज करूंगा। पर अम्मा का आशीर्वाद और पिताजी का आशीर्वाद, तो बचपन में ही उन्होंने एक अम्मा को एक लफ्ज़ कहा था, अम्मा कहती थी बेटे को साथ ले जाओ थोड़ा देखेगा समझेगा, तो कह अम्मा ये परेशान करता है, कभी वो गुब्बारे मांगता है कभी वो चॉकलेट मांगता है, तो बेहतर होगा कि मैं सिखा दूँ घर की विद्या है। तो मैं 7.5 साल की उम्र में मैं उनसे गंडा बंधवाया, और वो भी मैंने 500 इकट्ठा किए थे 25 रुपये 50 रुपये करके इनाम पाके। तो मैंने कहा बाबू, मैं अम्मा ने कहा भाई आज शागिरद कर लो, अम्मा कह लेगा मुझे मालूम तुम्हारा लड़का अमीर हो गया है, 501 रुपये दे दिए, और एक पैसा ना मुझे दिया ना अम्मा को दिया ही नहीं, दिया ही नहीं। तो क्या करें, करें अब इसमें से नहीं दूंगा, ये मेरा नजराना है। मैं बड़ा भाग्यवान हूँ कि मेरे बाबू ने मुझे गंडा बांधा, उनका आशीर्वाद। और मेरे दिमाग में हरदम जैसे ही मैं खड़ा होता हूँ, मेकअप किया, कॉस्ट्यूम पहना, उस वक्त चाचा और बाबू हमारे सामने होते एकदम, और ईश्वर की कृपा होती है, मैं कहता हूँ प्रभु मैं तैयार हो गया हूँ, दुल्हन बन गया हूँ, तुम अब नाचो आके मेरे बदन में तुम्हारे, क्योंकि तुमने मेरे बदन को पसंद किया है, तुम नाचो हम देखेंगे। ये मेरा
1: बहुत सुंदर बात। आपके बारे में हम सभी जानते हैं कि आप शास्त्रीय गीत संगीत में माहिर हैं, वाद्य यंत्रों पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, और एक खास बात जो ये कि आप छोटे बच्चों को भी आप सिखाते हैं, वो जो बिल्कुल अभी 4 साल 5 साल की उम्र के हैं, उन्हें कैसे समझा पाते हैं इन सब चीज़ों को?
0: अरे उनको बड़े मज़े में समझाता हूँ। तो एक मैंने अपने भतीजी को एक तिहाई बताई, तरथे ही ताते ऐसे करके, तो कल इसमें तो बहुत सा तरथे ही है, कैसे याद करूँ? तो मैंने कहा बेटा सब्जी खाते हो? कहना हाँ खाते हैं। पूड़ी खाते हो? हाँ खाते हैं। तो
2: सब्जी पूड़ी, वाह वाह, तो सब्जी 3 मात्रा, पूड़ी 2 मात्रा, सब्जी पूड़ी और कचौड़ी, फिर आखिर में तो मीठा चाहिए, हलवा ला दे, हलवा ला दे।

0: हेलो वाह ला दे दे वाह वाह वाह वाह वाह सब्जी पूरी और कचौड़ी हलवा ला दे हलवा ला दे हलवा ला दे दे
1: बहुत सुंदर महाराज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया नमस्कार।
2: साथियों बिरजू महाराज ने कथक नृत्य में कई योगदान दिए। उन्होंने लखनऊ घराने की परंपरा को आगे बढ़ाया, नृत्य में नए आयाम जोड़े और देश विदेश में अपने शानदार नृत्य प्रदर्शन के द्वारा भारतीय कला विरासत के प्रति विश्व भर में सम्मान का भाव उत्पन्न किया।
3: बिरजू महाराज को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए कई सम्मानों और पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान, फिल्म फेयर पुरस्कार और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शामिल हैं।
2: जनवरी 2022 को नई दिल्ली में इस महान कलाकार का देहावसान हो गया। उनकी आयु 83 वर्ष थी। उनके निधन से भारत के कला जगत को एक बड़ी क्षति हुई है, लेकिन उनकी महान विरासत हमेशा जीवित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी।
4: पंडित बिरजू महाराज, कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मोहम्मद फैजान खान, कलाकार परवेज गौहर, शिमाइला परवेज, बाबला कोचर, अरशद अहमद खान और सुनील लोहिया, नाट्य आलेख अजीत होरो, संपादन जगबंधु जाना, निर्माण विमलेश चौधरी, विशेष आभार राज्यसभा टीवी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम बिरजू महाराज।
5: अभी कुछ दिन पहले मेरे मिनी टेम्पो की हेडलाइट बंद हो गई। मैकेनिक बोला, भाई रात को मत चलाना। हमने सोचा यार इतना तो चलता है, रोज का रास्ता है, मैं जानता हूँ।
6: आगे एग्जिट नहीं दिखा और बाइक वाले ने इंडिकेटर भी नहीं दिया।
5: चलता है बोलने से किसी की जिंदगी।

0: वाहन चलाने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि हेडलाइट ठीक से काम कर रही हो। सही रोशनी से रास्ता भी साफ दिखाई देता है और आसपास चल रहे वाहन भी दिखाई देते हैं।
1: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम भगत सिंह।
2: इस कार्यक्रम में महान स्वतंत्रता सेनानी और अमर शहीद भगत सिंह के जीवन और देश की बलिवेदी पर उनकी शहादत के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है।
1: भगत सिंह
3: अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुछ नारे बहुत प्रचलित हुए, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी का वंदे मातरम का नारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जय हिंद का नारा, लोकमान्य तिलक की ललकार कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और महात्मा गांधी की पुकार अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये सब उन दिनों बच्चे बच्चे की जुबान पर थी। इन सब महान लोगों के दिए हुए इन महामंत्रों के बीच एक 20-22 साल के नौजवान की निडर आवाज भी गूंजी थी।
4: बहरे कानों को सुनाने के लिए जोरदार धमाके की जरूरत होती है।
3: नई दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में गूंजने वाली ये निर्भीक आवाज थी सरदार भगत सिंह की।
5: भगत सिंह का जन्म 26 सितंबर सन 1907 को

0: जोरदार धमाके की जरूरत होती है।
1: नई दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में गूंजने वाली ये निर्भीक आवाज थी सरदार भगत सिंह की।
2: भगत सिंह का जन्म 26 सितंबर सन 1907 को

0: टाइम के साथ चले भी जाते हैं अगर हल्के निशान होते हैं तो। ये
1: जैसे कि हम रोड साइड एक्सीडेंट्स की भी बात कर रहे थे, तो अगर कई बार एक्सीडेंट्स होता है, किसी को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो बाय द टाइम हम हॉस्पिटल पहुंचे तो और क्या क्या कर सकते हैं हम?
2: सबसे पहले देखिए, जो कोई भी ट्रॉमा में गुजरा है उसको पेन, एक कई बार बहुत सीवियर पेन हो रहा होता है या फिर एंजाइटी बहुत होती है ना, घबराहट भी बहुत हो रही होती है, तो इस

0: कि मसल्स वीकनेस या जो भी है, पर्सन बेहोश होता जा रहा है, उसके हाथ पैर में एकदम वीकनेस ही फील हो रही है, सांस में घबरा, सांस नहीं आ रहा है, या हृदय की धड़कन हमारी कम हो रही है, अगर हम नब्ज़ पकड़ के देखते हैं, इमीडिएटली अस्पताल में लेके जाते हैं उसको। एज़ पर सिम्टोमेटिकली एंटी स्नेक वेनम होता है, वो ट्रीटमेंट का अस्पताल का पार्ट है, वहाँ पर तुरंत उसको दिया जाता है और वो उससे होपफुली रिकवर कर सकता है। ठीक है।
1: एक चीज़ इसमें मैं ऐड करूँगा कि जो स्नेक को ना कई बार क्या लोग ना उसको पकड़ने

ध्वनि है उसमें ब्लड रुक गया, कोई खून का चकत्ता आ गया, तो आगे ब्लड नहीं जा रहा है, उतना एरिया ब्रेन का डैमेज हो गया। तो उसमें क्या होता है, जो वो पेशेंट जब इस कंडीशन में, जिसको इन्फार्क्शन कहते हैं हम, जो स्ट्रोक होता है उसमें क्या होता है कि उस वक्त सूजन नहीं आती है ब्रेन में, एक दो दिन बाद सूजन आती है। तो जब सूजन आएगी ब्रेन में तो फिर बेहोशी की हालत में पेशेंट चला जाता है। लेकिन जब वो फर्स्ट टाइम जाता है, जब उसको वीकनेस है, एक तरफ मुंह टेढ़ा हो गया, एक तरफ

ऐसे कंडीशन में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें पीछे जा कर के उसके पेट में थ्रस्ट देना है, वो आप कहीं भी YouTube पे सर्च कर सकते हैं उसका एक्चुअल पीछे जाके किस तरह से उसको डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट आपका नीचे से ऊपर होना चाहिए है ना, और अंदर की तरफ, तो ये डायरेक्शन होता है जो आपके नाभि होती है उसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर की तरफ आप एक फिस्ट बना करके इस तरह से, और उसको थ्रस्ट पीछे से आप करते हैं ताकि वो जो भी

दर्द जा रहा है, या कभी कभी क्या होता है कि हार्ट अटैक के जो साइन सिम्टम होते हैं कि वो गर्दन में भी पेन होता है, या किसी किसी वेरी रेयर केसेस में एपिगैस्ट्रिक जैसे कहते हैं नाभि के ऊपर, उसमें भी पेन हो सकता है। इन चीज़ों में हमें थोड़ा सस्पेक्ट करके रखना चाहिए कि या उसको स्वेटिंग हो रही है, पसीना आ रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, पेन की जो सीवियरिटी है वो इस तरीके की है, निचोड़ने वाली, छाती को एकदम ऐसा लग रहा है कि हमें निचोड़ जाएगा या बैक साइड की तरफ भी जा रहा है। इमीडिएटली हमें एक किसी छोटे सेंटर अगर पास में जो

0: सबसे पहले तो जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं, इसको अगर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ना आप हेलमेट जरूर पहने, है ना, हेलमेट कई, हाँ, तो बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है।
1: तो दोस्तों, आज की बातचीत से ये सीख मिलती है कि फर्स्ट एड सिर्फ इलाज की शुरुआत नहीं बल्कि जिंदगी बचाने की पहली कोशिश है। आज कार्यक्रम में हमारे साथ रहे डॉक्टर संजय कुमार, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन, लेडी हार्डिंग।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। 4 बज चुके हैं बाय द स्टूडियो क्लॉक। वक्त हो चुका है 4:05 का और मैं हूं ज्योतिका। आप सुन रहे हैं अल्फा जैन, जहां बात होती है करियर की, चॉइसेस की और इस जर्नी की, जिसका मैप शायद हम सब के पास थोड़ा थोड़ा इनकम्प्लीट सा रहता है। आज एक इंटरेस्टिंग सवाल से शुरुआत करते हैं। करियर में सक्सेसफुल होने की करेक्ट एज क्या होती है आखिर? 22 में फर्स्ट जॉब, 25 तक अच्छी सैलरी, या 30 तक कोई अच्छी मैनेजर वाली पोजीशन मिल जाना? और अगर ये सब नहीं हुआ तो क्या हम लेट हैं? पता नहीं किसने ये इमेजिनरी टाइमलाइन बनाई है ना, लेकिन हम में से बहुत लोग उसके अगेंस्ट अपनी प्रोग्रेस मेजर करते रहते हैं। किसी दोस्त का प्रमोशन हो गया, किसी ने स्टार्टअप शुरू कर दिया, कोई अब्रॉड शिफ्ट हो गया, और हम सोचते हैं यार मैं कहां रह गया। लेकिन करियर कोई 100 मीटर की दौड़ तो नहीं है जहां सबकी स्टार्टिंग लाइन और फिनिशिंग लाइन सेम हो, है ना? किसी का रास्ता सीधा है, किसी का थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा, और किसी को अपना एक्चुअल रास्ता मिलता ही थोड़ा लेट है। तो आज अल्फा जैन में बात इसी की कि करियर में कोई परफेक्ट टाइमलाइन क्यों नहीं होती है। और शुरुआत एक ऐसे गाने के साथ जो एक पूरी जनरेशन को अपनी जर्नी याद दिलाता है। स्टे ट्यून्ड विद मी राइट हियर।

जो भी हो बस टेंशन मत लेना आप, है ना। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं अल्फा जैन आकाशवाणी एफएम रेनबो पर और मैं हूं ज्योतिका। स्कूल में ना एक सवाल कितनी कॉन्फिडेंस से पूछा जाता है आज जाके रियलाइज होता है। बड़े होकर आप क्या बनोगे? जैसे 16-17 की एज में हमें पूरी लाइफ का आंसर पता होना चाहिए। देखो रियलिटी ये है कि बहुत से एडल्ट्स को भी अपनी करियर डायरेक्शन समझने में वक्त लगता है। आपने ग्रेजुएशन किसी सब्जेक्ट में की और फर्स्ट जॉब कुछ और मिल गई। काम करते हुए रियलाइज हुआ कि इंटरेस्ट तो मेरा तीसरी चीज में है, एंड दैट्स कंप्लीटली ओके। फर्स्ट करियर चॉइस कोई लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। बात बनी तो बनी, नहीं बनी तो कोई गल नहीं। कभी कभी आपको ये डिस्कवर करने के लिए कि आपको क्या करना है, पहले ये डिस्कवर करना पड़ता है कि आपको क्या नहीं करना है। सो अगर डायरेक्शन अभी क्रिस्टल क्लियर नहीं है, एक्सपेरिमेंट कीजिए, इंटर्नशिप्स कीजिए, लोगों से बात कीजिए, डिफरेंट रोल्स एक्सप्लोर कीजिए। देखो क्लैरिटी अक्सर चेयर पर बैठकर सोचते रहने से तो नहीं आती है, चलते चलते आती है।

0: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
1: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सराय काले खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में।
0: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में। आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
1: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
0: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।

वेलकम बैक आफ्टर दिस स्मॉल एड ब्रेक. आप सुन रहे हैं अल्फा जन विद मी ज्योतिका. चलिए थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक होते हैं, हो जाए क्या? अपनी फर्स्ट जॉब को याद करिए, पहला आईडी कार्ड, पहली ऑफिशियल ईमेल आईडी, ऑफिस में पहला दिन और वो कंफ्यूजन कि हाय अब करना क्या है. और फिर आती है अपनी फर्स्ट सैलरी.

अमाउंट चाहे जो भी रहा हो, बैंक अकाउंट में जब वो पहली सैलरी क्रेडिट होने की फीलिंग होती है ना, वो सबसे अलग होती है। मे बी आपने मम्मी पापा के लिए कुछ लिया हो, फ्रेंड्स को ट्रीट दी हो, या बिना किसी रीजन के अकाउंट को बार बार चेक किया हो। फर्स्ट जॉब परफेक्ट तो बहुत रेयरली होती है। सैलरी कम हो सकती है या फिर आपके बॉस बड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं, रोल भी शायद ड्रीम वाला रोल ना हो, लेकिन वो हमें एक चीज जरूर सिखाता है, प्रोफेशनल दुनिया एक्चुअली चलती कैसे है। आप जी हजूरी वाले हैं या अपनी बात कहने वालों में से हैं, टाइम पर कब आते हैं या बस वो 5 मिनट की नींद के चक्कर में हर बार लेट हो जाते हैं, पंक्चुअलिटी सीखते हैं, रिस्पेक्ट कमाते हैं या नहीं, ये सब कुछ आपको आपकी फर्स्ट जॉब सिखाती है। सो अगर आप अपनी अभी फर्स्ट जॉब में हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, याद रखिएगा ये आपकी पूरी करियर स्टोरी थोड़ी है, बस अभी तो ये पहला चैप्टर है जनाब।

वेलकम बैक टू अल्फा जेन। और हम आज बात कर रहे हैं करियर की। जी हाँ, इंडियन करियर कॉन्वर्सेशंस में एक जो ये वर्ड होता है ना, बड़ा पावरफुल होता है। उस वर्ड का नाम है पैकेज। समझ गए ना अब आप? उसका पैकेज कितना है, ये सवाल जब भी कानों में आता है तो आपको कैसा महसूस होता है? अरे प्रॉब्लम सैलरी डिस्कस करना नहीं है, फाइनेंशियल ग्रोथ को एब्सोल्युटली, मतलब जो फाइनेंशियल ग्रोथ होती है ना, एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन हम कभी कभार ना दूसरों से रेस में लग जाते हैं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब किसी और की सैलरी हमारी सेल्फ वर्थ का मेजरमेंट बन जाती है। आप और आपका कॉलेज फ्रेंड सेम बैच में थे, आज वो आपसे डबल अर्न करता है, लेकिन क्या आप दोनों सेम इंडस्ट्री में हैं? कभी सोचा ये बात? सेम शहर में हैं? या सेम वर्किंग आवर्स हैं? सेम प्रायोरिटीज हैं क्या? या सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज? प्रॉबेबली नॉट। सैलरी करियर का ना इंपॉर्टेंट मेट्रिक तो है, लेकिन ओनली मेट्रिक नहीं है। लर्निंग, ग्रोथ, वर्क एनवायरमेंट, हेल्थ, टाइम, पर्पस, ये सब भी पैकेज का पार्ट है। बस सैलरी स्लिप पर प्रिंट जो होती है वो अच्छी भी लगती है, लेकिन उसके पीछे बहुत कुछ होता है। सो कंपैरिजन कीजिए, लेकिन कल वाले अपने वर्जन से कीजिएगा। और हर बार ये सोचना कि क्या मैं फेल हो गया हूं, नहीं, थोड़ा स्लो चलना फेलियर नहीं है, लेकिन अगर आप रुक गए हैं तो शायद वो फेलियर जरूर हो सकता है। तो रुकना नहीं है।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर ये है अल्फा जैन और मैं हूँ ज्योतिका। करियर ग्राफ ना हम यूजुअली एक अपवर्ड एरो की तरह इमेजिन करते हैं, है ना? जॉब, उसके बाद प्रमोशन, उसके बाद फिर से एक बेटर जॉब और फिर एक और प्रमोशन। बट कभी आपने सोचा है, रियल करियर्स रेयरली लुक दैट नीट। इतना आसान नहीं होता ना। कभी हायर स्टडीज के लिए ब्रेक, कभी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कभी रीलोकेशन, कभी हेल्थ, कभी सिंपली बस ये रियलाइज करना कि यार बहुत हो गया, आई नीड अ ब्रेक। और ब्रेक के बाद सबसे ज्यादा जो कॉमन फियर, कॉमन थॉट सबके दिमाग में आता है वो ये है कि यार अब वापस कैसे शुरू करेंगे। बहुत आसान है, स्टार्ट स्मॉल, स्किल रिफ्रेश कीजिए, ओल्ड कॉन्टैक्ट से रिकनेक्ट करिए, इंडस्ट्री में क्या चेंज हुआ है उसको समझिए। कॉन्फिडेंस को एक दिन में वापस आने की डेडलाइन तो बिल्कुल भी मत देना आप। आपका करियर पॉज हुआ था, आपकी कैपेबिलिटी डिलीट नहीं हुई है कि अगर आप ये सोचे कि यार अब मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। जहां ये थॉट आ गया ना, वहीं गड़बड़ हो जाएगी। तो अपने करियर में थोड़ा सा कुछ नया ऐड करिए, सीवी में कोई स्किल ऐड करिए, एआई सीखिए। एआई इज द न्यू ट्रेंड हियर। समटाइम्स अ पॉज इजंट द एंड ऑफ द जर्नी, इट इज वेयर यू डिसाइड वेयर यू एक्चुअली वांट टू गो नेक्स्ट। समझे? देखो, सरल भाषा में यही बात है कि हर सक्सेसफुल पर्सन की जर्नी में एक ऐसा फेज आता है जब उन्हें लगता है कि कुछ भी उनके फेवर में नहीं जा रहा है। पर वो जो फेज होता है ना, इट्स नॉट द एंड ऑफ योर स्टोरी। बस इतना समझ लीजिए, ये एक नया चैप्टर है और अभी बहुत दूर जाना है आपने।

वेलकम बैक। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने मंडे मॉर्निंग अलार्म तो लगाया, फिर वो बजा भी, लेकिन दिल से एक आवाज आई कि बस मुझसे नहीं हो पा रहा। और अरे ऑब्वियसली हर बैड मंडे का सोल्यूशन रेजिग्नेशन लेटर तो नहीं हो सकता, लेकिन कभी कभी डिस्कम्फर्ट टेम्प्ररी भी नहीं होता। आप रियलाइज करते हैं कि जिस प्रोफेशन को चूज किया था वो अब आपको एक्साइट नहीं करता। करियर स्विच स्कैरी होता है बिकॉज आप जीरो से नहीं लेकिन एक बिगिनर बनकर दोबारा स्टार्ट करते हैं। सैलरी टेम्प्ररीली कम हो सकती है, लोग पूछेंगे कि इतना एक्सपीरियंस छोड़ दिया तुमने, लेकिन एक्सपीरियंस माय डियर कभी वेस्ट नहीं होता, याद रखिएगा। कम्युनिकेशन, डिसिप्लिन, लीडरशिप, डीलिंग विद पीपल, बहुत कुछ आप अपने नए करियर में साथ लेकर जाते हैं, ये हमेशा याद रखना। स्टार्टिंग अगेन डजंट ऑलवेज मीन स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, समटाइम्स इट मीन्स स्टार्टिंग अगेन लेकिन विद गुड एक्सपीरियंस। देखो, आपकी जर्नी किसी और की जर्नी जैसी तो बिल्कुल नहीं हो सकती। किसी का सक्सेस 25 में आता है, किसी का 35 में, तो किसी का 45 में। देयर इज नो फिक्स्ड टाइमलाइन फॉर सक्सेस, सो अपने आप को कंपेयर करना तो प्लीज छोड़ दीजिए। बस चलते रहिए और अपने ऊपर काम करना मत छोड़िए। बस

0: बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
1: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
0: अरे मम्मी, एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
1: हैं? इतनी जल्दी?
0: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़कर बस मिनटों में मेरठ।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुर होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

वेलकम बैक आफ्टर द स्मॉल एड ब्रेक. आप सुन रहे हैं अल्फा जेन, और अब अल्फा जेन में बात उस ईमेल की जिसे कोई रिसीव नहीं करना चाहता. समझ गए होंगे आप, है ना, जो शुरुआत ही ऐसे होती है ना उस ईमेल की, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, हाउ एवर, बस आगे पढ़ने का मन ही नहीं करता. इंटरव्यू अच्छा गया था, एक्सपेक्टेशंस बन गई थी, और फिर आता है वो रिजेक्शन वाला ईमेल. करियर में रिजेक्शन पर्सनल फील होता है, बिकॉज हमने सिर्फ सीवी नहीं भेजी होती, एक होप भेजी होती है. लेकिन एक रिजेक्शन का मतलब आई एम नॉट गुड इनफ तो बिल्कुल नहीं होता. मे बी किसी और कैंडिडेट का एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा अच्छा था, मे बी रोल इंटरनली फिल हो गया हो, या मे बी टाइमिंग मैच नहीं हुई. फीडबैक अवेलेबल है तो ले लीजिए, प्रेपरेशन इम्पॉर्टेंट करिए, क्योंकि वहां से अगर आप फीडबैक लेंगे तो उस प्रेपरेशन का इम्पॉर्टेंस समझिए. लेकिन हर क्लोज्ड डोर के बाहर बैठकर ये मत सोचिए कि अंदर जाने लायक ही नहीं था मैं. ना ना ना ना ना, यहीं इसी नेगेटिव थॉट से आपको बचना है. कभी कभी आंसर सिंपल सा होता है, नॉट दिस वन बट कीप मूविंग.

वेलकम बैक टू अल्फा जेन। सोशल मीडिया पर आप हमेशा एक फ्रेज देखते होंगे, सुनते होंगे, याद है आपको? फाइंड अ जॉब यू लव एंड यू विल नेवर फील लाइक यू आर वर्किंग। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इवन योर ड्रीम जॉब कैन हैव बोरिंग मंडेज। यार लेट्स बी प्रैक्टिकल। क्रिएटिव करियर में ईमेल्स भी होंगी, एंटरप्रेन्योरशिप में अकाउंट्स भी होंगे, ड्रीम कंपनी में डेडलाइंस भी होंगी, करियर फुलफिलिंग होना चाहिए जनाब। हर सेकंड एक्साइटिंग अपने आप बन ही जाता है। एक और चीज आपसे कहना चाहूंगी, आपकी जॉब को आपकी पूरी आइडेंटिटी बनने की जरूरत भी नहीं है। आपका डेजिग्नेशन चेंज हो सकता है, कंपनी चेंज हो सकती है, करियर भी चेंज हो सकता है, लेकिन आपके रिलेशनशिप्स, इंटरेस्ट, वैल्यूज और पर्सनैलिटी, वो भी आपकी आइडेंटिटी का पार्ट है, उसे मत बदलने दीजिएगा। सो वर्क को इंपॉर्टेंस दीजिए, पर पूरी जिंदगी को विजिटिंग कार्ड मत बनाइए ना, कि आज नहीं कल, आज नहीं कल, वो कल नहीं आएगा जनाब। आपको वक्त निकालना पड़ेगा अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तों के लिए।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं अल्फा जन। 20s में लगता है 30 तक सब फिगर आउट हो जाना चाहिए। 30 आता है और पता चलता है अच्छा किसी को तो अभी भी फिगर आउट नहीं हुआ है। किसी को फर्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी 23 में मिल जाती है, किसी को 35 में, तो किसी को 40-45 में, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रही थी। कोई रिटायरमेंट के बाद अपना पैशन प्रोफेशन बना लेता है। लेट सक्सेस नाम की चीज तभी एग्जिस्ट करती है जब हम मान लें कि सक्सेस की कोई यूनिवर्सल डेडलाइन नहीं होती। और हाँ, एक और बात, आपको थोड़ा ज्यादा वक्त लगा तो लगा, इट्स ओके। आपकी जर्नी का पर्पस किसी और को बीट करना तो नहीं है। इट इज टू इवेंचुअली रीच अ प्लेस वेयर यू कैन से हाँ, अब जो कर रहा हूं ना उसमें मुझे कुछ अपना सा लग रहा है। आप सुन रहे हैं अल्फा जैन।

और इसी के साथ आज के अल्फा जेंट से विदा लेने का वक्त आ गया है। आज की कॉन्वर्सेशन एंड करते हुए एक इमेज इमेजिन करिए प्लीज। एक हाईवे है, कोई आपसे आगे चल रहा है, कोई पीछे चल रहा है, कोई एग्जिट लेकर बस आपसे थोड़ा सा राइट या लेफ्ट हो गए हैं, तो कोई रास्ते में रुक गए हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम अपनी रोड देखने के बजाय साइड मिरर में किसी और की जर्नी देखते रहते हैं। एज आई ऑलवेज सेड, करियर में 25 के हैं, 35 के या 45 के, अगर आप कुछ नया सीख रहे हैं, अपने डिसीजंस को बेटर समझ रहे हैं और जरूरत पड़ने पर डायरेक्शन चेंज करने की हिम्मत रखते हैं, सो ऑलवेज रिमेंबर, यू आर नॉट लेट। प्रमोशन लेट हो सकता है, सक्सेस लेट फील हो सकती है, क्लैरिटी लेट आ सकती है, लेकिन आप लेट नहीं है। सो अपनी स्पीड पर चलिए, ब्रेक लेना हो तो ले लीजिए, रूट चेंज करना है तो ले लीजिए, बस स्टेयरिंग अपने हाथ में रखिएगा। मैं हूं ज्योतिका, आपसे इजाजत लेती हूं। कीप लर्निंग, कीप मूविंग और अपनी जर्नी को किसी और की टाइमलाइन से मेजर मत कीजिए। सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो, और जाते जाते एक गाना जो शायद करियर और लाइफ दोनों के लिए परफेक्ट है। नमस्कार।

नमस्कार, अब समय है रेनबो मुख्य समाचारों का। 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन का नई दिल्ली में आयोजन संपन्न। पर्यावरण सहयोग मजबूत करने पर विचार विमर्श हुआ। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए। विनोद तावड़े उत्तर प्रदेश और डॉ सतीश पूनिया पंजाब के प्रभारी बने। झारखंड सरकार ने 2024 की जीएसएससी सीजीएल परीक्षा और टीडीपीएल एजेंसी द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द किया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत गणना का चरण पूरा हुआ। 24 अगस्त से 23 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,009 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अभियान में बड़ी उपलब्धि, 2 करोड़ से अधिक बच्चों के आधार बायोमेट्रिक अपडेट किए गए। भारत के सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को नेपाल आर्मी के मानद जनरल रैंक दिया गया। मौसम विभाग ने झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की। और खेलों में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में मिक्स डबल स्पर्धा में भारत के रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे का मुकाबला कनाडा के जोनाथन लाई और क्रिस्टल लाई से होगा। ये थे रेनबो मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: Good evening, namaskar, adab, salam, sat shri akal and of course coffee to all. बड़ा मज़ा आता है बहुत ही समय बाद बड़ा ट्रेडिशनली वेलकम किया हमने, लेकिन देखिए ऐसा है कि शाम सुहानी हो सकती थी, बात बेगानी हो सकती थी, कहना कुछ और था मुझको, क्योंकि कहानी पुरानी हो सकती थी ना। नेवर माइंड, आप जानते हैं जब सिटी लाइफ में आप और मैं मिलते हैं ना, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं अनकही जो आप समझ जाते हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं बताना चाहती हूँ और आप बहुत ही प्यार से सुनते भी हैं। जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स, आपकी अपनी गज़ब की गीतांजलि सोनी के साथ, ओनली ऑन स्टेशन ऑफ द नेशन। और आज नेशन जानना चाहेगा बहुत सारी बातें, सबको आने दीजिए। फिलहाल मौसम का हाल आपको बताऊंगी, लेकिन पहले थोड़ा सा समा बांध देते हैं।

जी बिल्कुल, प्लानिंग तो सबकी यही थी, नाचना चाहते थे ये सोच के कि आज कुछ बारिश होगी, बिकॉज़ क्या होता है ना, प्रेडिक्शंस इतने टाइम से चली रही हैं कि दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट है, बारिश आएगी, लेकिन कुछ तो इंद्र देवता का मूड और ही लग रहा है, मतलब किसी और ही डायरेक्शन में जा रहे हैं मुझे लगता है, क्योंकि देखिए अभी जो मिनिमम टेम्परेचर 28 से 29 डिग्रीज हो सकता है, लेकिन लग क्या रहा है जैसे 34 डिग्री फील्स लाइक, इसलिए कहा जाता है बिकॉज ह्यूमिडिटी होती है, फिर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो अगर आप चेक करेंगे तो आपको लगेगा ओ 28 डिग्रीज, बाहर निकलेंगे मर गए जी, इतनी पर्स्पिरेशन हो रही है, बिकॉज क्या है ना 34 डिग्रीज फील्स लाइक है, 36 डिग्रीज तक भी लग सकता है। तो भाई ये है हमारे टेम्परेचर का हाल, अगर आपके यहाँ कहीं कुछ बारिश, कुछ छींटे फुहारें पड़ रही हैं तो बताना मुझे, बताने की तो आपको पूरी आज़ादी, आप जानते हैं ना, बातें हम चाहें ना चाहें कि सिटी लाइट्स में मैसेजेस पढ़ नहीं सकते, हज़ार बार हमने बताया, मतलब पढ़ नहीं सकते का मतलब है हम लोग कैजुअल हेलो हाय वाले हो, उसके लिए तो मैसेज में साला मिक्स है ना, लेकिन फिर भी आप बहुत सारी बातें मुझे बताते रहते हैं, मैं भी जानना चाहती हूँ। तो अगर आप अभी भी कुछ ऐसे चीज़ें हैं, इवेंट्स हैं जो आपको लगता है मुझसे शेयर करना ज़रूरी है तो कर दीजिए ना 9868107070 पर, और हम पढ़ेंगे, और अगर लगता है कि ये इवेंट्स बताने आज ज़रूरी है तो आगे बढ़ के इवेंट्स बता देंगे। मौसम के बारे में देखिए क्या होता है ना, बड़ा मज़ा आता है, हमारा जो स्टूडियो है ना, मैं जैसे ही पीछे मुड़ के देख, ये देखो आपको लग रहा होगा ना पीछे मुड़ गई मैं, तो हमारी ये बड़ी खूबसूरत सी खिड़की है, उसके बाहर पता लग जाए

जाते हैं, तो कोई आसार यहाँ तो कनॉट प्लेस के अराउंड पटेल चौक के आसपास तो नहीं लग रहे हैं। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है, आपको पता है एक रोड में बारिश हो रही होती है, दूसरे में नहीं हो रही होती है। बिलीव यू मी, मेरे साथ हुआ है। रोड की बात कर रही हूँ मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक कि दिल्ली या गुड़गांव में ऐसा हो रहा था, फरीदाबाद में बारिश हो रही थी तो दिल्ली में नहीं हो रही थी, मैं एक रोड की बात बता रही हूँ आपको। इट डज हैपन। तो इसलिए अगर आप बाहर जा रहे हैं, घूमना फिरना चाहते हैं शाम को, और आप चाहते हैं कि कुछ तो इन्जॉय करें, बारिश की टेंशन ना लें, अगर होगी भी तो कोई बात नहीं, जस्ट हैव फन, एंजॉय कर लेना बारिश।

चलो चलो चलो सब जमुना पार चलते हैं। आपको पता है मैं जब ऐसे गाने सुनती हूँ तो एक मुझे लगता है बड़ी पार्शियलिटी हो रही है भाई गुड़गांव के साथ। आप देखिए जमुना पार पे गाने हैं, करमपुरा हमारे हनी सिंह पाजी ने हिट कर दिया है, गुड़गांव के लिए कोई ख़ास बस एक कभी गुड़गांव में ऐसे करके नाम आ जाता है किसी हरियाणवी गाने में या फिर हरियाणे कोई गुड़गांव में ले लेते हैं। कोई कोई टिपिकल गाना बनाओ भाई गुड़गांव के लिए भी, एटलीस्ट यू नो समथिंग विच इज़ जस्टिफाइंग गुड़गांव ग्रेस। मुझे ऐसा लगता है भाई कुछ तो बनाओ, मज़ा आएगा। फिलहाल देखिए अब क्या है, 15 अगस्त अभी गई है, जब 15 अगस्त आने वाला था तो बहुत सी ऐसी चीज़ें थी प्रिकॉशनरी जो हमने आपको बताई। अब क्योंकि 15 अगस्त बहुत ही सक्सेसफुली हमने बहुत ही प्राउड से सेलिब्रेट कर लिया, अब एक चीज़ है जो बड़ा कंसर्न है, 15 अगस्त में सब काइट्स बहुत उड़ाते हैं ना, हम सभी जानते हैं, और कितनी बार हम लोग बोलते हैं कि जब आप पतंगे उड़ाते हैं तो उसमें जो मांझा होता है ना, मांझा जो चरखी में ऐसे पकड़ के लिपटा होता है मांझा, वो चाइनीज़ वाला इस्तेमाल ना करें क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा जो उनके पाउडर होते हैं ना उसके थ्रेड के, वो ग्लास पाउडर होता है, उसमें मेटल कोटेड होती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है उनसे। कई बार लोगों की सीवियर कट्स आए हैं हाथों पे, नाक पे, मुंह पे, एक का तो गला ही कट गया था इफ़ यू रिमेम्बर, बहुत वो जो केस है वो वायरल हुआ था। लेकिन इस बार फिर आप देखिए अभी 15 अगस्त हो गया है क्योंकि पतंगे उड़ाई हैं, वो मांझे कहीं कहीं लटक रहे होंगे, तो ऐसे एक बाइक वाला जा रहा था वो फंस गया मांझे में, उसको काफ़ी सीवियर कट आए हैं, थैंकफुली उसकी जान बच गई है, हॉस्पिटल टाइम पे चला गया तो ब्लीडिंग रोक ली गई। लेकिन मुझे लगा कि आज भी फिर मुझे आपको ये बताना ज़रूरी हो जाता है कि प्लीज़ भाई, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए ये वाले जो मांझे हैं ये बैन है, दिल्ली में भी बैन है, बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जिनमें बैन है। लेकिन क्या होता है जो पतंग उड़ाते हैं उनको पता है कि ये जो मांझे हैं बहुत ही स्विफ्ट होते हैं यूज़ करने में, इनके हाथ भी कट जाते हैं कई बार लोगों के, बट स्टिल दे यूज़ इट। तो अगर आपके पास बच्चे हुए हैं जो कि आई एम श्योर बच्चे होंगे, चड़खियाँ भरी होती कहाँ जाएंगी, प्लीज़ डू नॉट यूज़ इट। मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, एक तो अपने आप

की सेफ्टी, और जो लोग आसपास चलते हैं, साइकिल से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, प्लीज़ उनकी सेफ्टी के लिए भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। पतंगे उड़ाइए, यूज़ थ्रेड्स जो कि परमिसेबल हैं, और किसी को नुकसान न दें, प्लीज़ प्लीज़। हाँ, डू इट।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: ऑलराइट आ जाओ जी, बिल्कुल सही जगह है आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स, आपकी अपनी गजब की गीतांजलि सोनी के साथ, ओनली ऑन स्टेशन ऑफ द नेशन। ढेरों प्यार हमेशा मिलता है जैसी शो शुरुआत होती है, और मुझे इतना ज़्यादा टचिंग लगता है जब आप मेंशन करते हैं ना कि सुबह पता चल गया था हमें, क्योंकि समरी बताई जाती है ना मॉर्निंग में शोज़ की, कि आज आपका शो है तो हम लोग सुबह से वेट कर रहे हैं। मैंने हाथ से ना वो हार्ट का शेप बनाया हुआ है, आई जस्ट विश कि आप देख सकते, बट थैंक यू सो मच इसी प्यार के लिए। तो जब भी स्टूडियो आना होता है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सा खजाना मिलने वाला है जब हम स्टूडियो आते हैं। मुझे तो यही लगता है कि पता नहीं आज इट्स सच अ ग्रेट बिग ब्यूटिफुल डे, सो थैंक यू। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वी आर शेयरिंग द सेम फीलिंग। अच्छा, एक और जो फीलिंग है जो बहुत बहुत एक्साइटिंग है मेरे लिए, मैं शेयर करना चाहती हूँ, बिकॉज बहुत सारे ऐसे बुक लवर्स हैं जो किताबें पढ़ना चाहते हैं, ख़रीदते हैं, तो उनको लगता है कि ओ एक ही किताब ख़रीदूँ, क्योंकि जितने स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास पैसे की किल्लत रहती है भाई, नो मैटर व्हाट। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं और आप जाना चाहते हैं द बुक टेल में, अब ये बुक टेल क्या है, ये बुक फेयर है विच इज़ कॉल्ड स्टोरी बॉक्स बुक फेयर। इसको स्टोरी बॉक्स बुक फेयर क्यों क्या कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ एक बॉक्स ख़रीदना होता है, और इस बुक फेयर में इतनी ज़्यादा आपको बुक्स मिलेंगी, लेटेस्ट ब्यूटीफुल ओरिजिनल बुक्स। और खाली बुक्स नहीं है वहाँ पे, अभी तो इस बार बहुत सारे मर्चेंडाइज भी डाल दिए गए हैं, बहुत सारे ऐसी फैसिलिटीज़ दी गई हैं लोगों को जो पढ़ना चाहते हैं किताबें, ख़ासकर जिनके बुक क्लब्स हैं या फिर लोग हैं जिनकी शॉप्स हैं, वो आएँ वहाँ पर। और आपको सिर्फ एक बॉक्स ख़रीदना है, और उस बॉक्स में जितनी भी बुक्स आप भर सकते हैं, और कुछ ऐसा नहीं कि कोई ऑर्डर है आपको वर्टिकल रखनी है हॉरिजॉन्टल, नहीं, जैसे आप जितनी भी बुक्स भर सकते हैं वो आप भर लीजिए, एंड यू कैन टेक दैट, जस्ट बाय अ बॉक्स एंड यू हैव गॉट लाइक अ हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स टू डू देयर। तो आप कर सकते हैं, और आप जानते हैं कि जब भी ऐसे बुक फेयर लगते हैं ना, मुझे बहुत ही खुशी होती है। उसका रीज़न सिंपल है, क्योंकि मैं वाकई पक चुकी हूँ देख देख के कि सब लोग मोबाइल पे लगे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये जो नज़ारा होता है ना बुक फेयर्स का, कि बच्चे एक्सप्लोर कर रहे हैं, आजकल तो इंटरैक्टिव बुक्स भी हैं, तो वहाँ जाकर बुक्स खोल के देखते हैं, उनके पेरेंट्स फ्रेंड्स एक ग्रुप बना के जाते हैं। इट इज़ सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और मैं जितनी भी लेडीज़ हैं उनको कहना चाहती हूँ ना, आपको कुकिंग का शौक है ना, यू जस्ट प्लीज़ गो देयर, एटलीस्ट एक आउटिंग होगी आपकी, वहाँ पे आपको कुकरी बुक्स भी मिलेंगी, सो यू कैन डू लॉट मैनी थिंग्स, सो डू इट। और जाना आपको वहीं है अपना नमो भारत स्टेशन इन आनंद विहार दिल्ली, और 14 तारीख को स्टार्ट हुआ है, 23 अगस्त तक चलेगा। सो गो एंड मेक योर डे एंड लाइफ ब्यूटिफुल विद बुक्स, और अपने बच्चों को भी एनकरेज कीजिए, और जितने भी आंटियाँ हैं ना, मैं कहना चाहती हूँ प्लीज़ गो, बच्चों को लेके जाइएगा।

वो देखिए जी, अगर ये गाना आंटी जी को नहीं डांस करवा सकता ना, तो मुझे नहीं पता फिर क्या गाना डांस करवा सकता है। बिकॉज अगर आपने कभी इस गाने की वर्डिंग सुनी है ना, जिसने गाना लिखा है उसने आंटीज पे तो बिल्कुल रिसर्च करी है भैया, डीप, जैसे एक होती है ना PhD की रिसर्च, वो करी है। बट इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सॉन्ग। अगर देखिए क्या होता है ना, कई बार जो मजाक होता है ना, फन होता है, उसको फन की वे में लेंगे ना, देन इट्स ओके। अगर आप उस पर सीरियस होकर उसको बिल्कुल एनालिसिस करने लग जाते हो ना कई बार, कि ओ माई गॉड ऐसा क्यों बोला, ये क्यों बोला, तो चीज़ का मजा ख़राब हो जाता है कई बार। यू नो, टेक इट विद लिटिल बिट ऑफ अ यू नो पिंच ऑफ अ सॉल्ट, इट्स ओके, एवरीथिंग इज़ गुड। और देखिए, अभी मैंने बताया ना आपको कि कैसे वो जो मांझा पतंगों का होता है नुकसान दे रहे हैं, मुझे इमीडिएटली मैसेज आ गए राजेश शर्मा जी का। वो ये लिख रहे हैं कि भाई एक बार मैं बाइक चलाते वक्त मतलब उनके गले में मांझा फंस गया था, और बस उनकी कह रहे हैं स्पीड कम थी इस वजह से बच गया। तो देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो भी सुन रहे होंगे ना, उनको भी लग रहा होगा इमीडिएटली हम भी मैसेज करें कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा। सो जस्ट प्लीज़ बी केयरफुल, बस यही मैं कहना चाहती हूँ। और अभी जो मैं नेक्स्ट बात करना चाहती हूँ, हेलो माय ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप जी? मैं स्पेशली आज 9th क्लास के बच्चों से बात करने वाली हूँ, क्योंकि ना ये मुझे जब भी मैं कोई एडुकेशनल डिटेल देती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसका कारण ये है, बिकॉज व्हेन वी वर ग्रोइंग अप ना, तो बहुत सारी चीज़ें हमें पता भी नहीं थी और क्लैरिटी नहीं थी इतनी, क्योंकि सोशल मीडिया इतना प्रेवलेंट नहीं था, हाथ में मोबाइल नहीं होते थे, तो क्या होता था ना, देखा देखी चलती थी कि भाई हाँ, उनका बच्चा इंजीनियरिंग करके अच्छी सैलरी मिल गई, तो पेरेंट्स को लगता था कि चलिए इंजीनियरिंग ही बेस्ट है, डॉक्टरी बेस्ट है। तो उसके अलावा जितने भी एक्स फैक्टर वाले काम होते थे ना, जिसको हम कहते थे कि वोकेशनल कोर्सेज या फिर कुछ ऐसे कोर्सेज जो आपकी स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं, उसके ऊपर पेरेंट्स या किसी का भी ज़्यादा ध्यान नहीं होता था। तो अभी तो आप देख ही रहे हैं कि जितनी भी चीज़ें वो सोशल मीडिया पर ओपन हो गई हैं, तो सभी चाहते हैं कि कुछ ऐसी एक्स फैक्टर वाली बातें या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके स्किल सेट को बढ़ाएं, पढ़ाई के साथ होनी चाहिए। एंड दिस इज़ सच अ प्राउड थिंग कि हमारा जो एडुकेशनल सिस्टम है, वो ये बात अच्छे से समझ रहा है। तो भाई जितने भी बच्चे हैं वो 9th क्लास के हैं, उनके लिए मैंडेटरी कर दिया गया है 26-27 में कि एक, पहले तो उनके पास एक थर्ड लैंग्वेज होनी चाहिए, है ना, एक तो लैंग्वेज 1, 2 और कोई भी थर्ड लैंग्वेज आपको पढ़नी ज़रूरी है, और उसकी भी मार्किंग होगी। एंड देन स्किल डेवलपमेंट मैंडेटरी हो गया है, मतलब कोई भी ऐसा जो स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज होते हैं आपके पास, आपके कॉलेजेस में ऑप्शन होंगे, उसको आप कीजिए। और बिलीव यू मी, क्योंकि 10th से क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। 10th से आपके पास एक प्रोफाउंड सिस्टम आ जाता है कि आपको आगे लाइफ में क्या करना है, बट 9th तक आप फिर भी सोच सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो फिर इसका मतलब है, जिसमें एक तो लैंग्वेज 1 हो गई, लैंग्वेज 2 हो गई, फिर मैथ्स हो गया, साइंस हो गई, सोशल स्टडीज़ हो गई, फिर कौशल विकास यानी कि स्किल डेवलपमेंट, तो ये आपके जो कोर्सेज होंगे ये होंगे। एंड देन जब आपकी 10th में आप आगे जाएंगे, आपको प्रमोट किया जाएगा 10th में, तो इसका भी ध्यान रखा जाएगा। सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल न्यूज़, मुझे तो बहुत मज़ा आया है, बिकॉज आई रियली वॉन्ट, पता है जब स्कूल में ऐसे कुछ होता है ना, एडिशनल स्किल डेवलपमेंट के कोर्स कुछ ऐसा, तो बहुत मज़ा आता है। सो आई जस्ट विश एवरीबडी हु इज़ इन 9th, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ डिसाइड वाइजली। ये नहीं करना मेरा फ्रेंड ये ले रहा था तो मैंने भी ले लिया, और ऐसे करना है और वैसे करना है, जस्ट देखा था कि कुछ नहीं, अपने आप को देखो दैट व्हाट एग्जैक्टली यू आर केपेबल ऑफ, आप क्या करना चाहते हैं। फिलहाल मैं ये चाहती हूँ कि मैं आपको अमेजिंग से गाने भी सुनाऊँ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी अच्छी अच्छी देती रहूँ, और आपके जितने प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं वो मैं पढ़ रही हूँ। और मुझे पता है इट्स अबाउट टाइम, बिकॉज 5:30 होने वाले हैं, और आप चाह रहे हैं कि कितनी देर से बोल रहे हैं बर्थडे है, एनिवर्सरी है, कब बोलेंगी। आपको पता है आई एम योर ऑफिशियल असिस्टेंट, बहुत सारी चीज़ें और मुझे बतानी पड़ेंगी आपको, लेकिन साथ साथ कुछ फन भी तो करवाना है। लिसन टू दिस वन, अमेजिंग है ये, अमेजिंग है ये, इंजॉय करते हैं आप। ये गाना हर एक को पसंद है, मैंने देखा है।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: जी संदेश टू सोल्जर्स तो हम सभी बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आपके जो संदेश आते हैं ना पूछिए मत, वो बिल्कुल ही मेरे दिल को टच कर जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। सो फॉर दोज हु हैव जॉइंड इन लेट, ओह माय गॉश, वेलकम होम। आप सुन रहे हैं सिटी लाइट्स और मैं वही हूँ आपकी अपनी बिल्कुल गजब की गीतांजलि सोनी। बहुत सारी बातें कर चुके हैं, बट नेवरदलेस जो बाकी की बातें करने वाले हैं वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ना, घूमना फिरना हर एक को पसंद है, क्या इवेंट्स चल रहे हैं बताइए, क्या सब होने वाला है। लेकिन अभी इनिशियली मैं ये बता दूं, क्योंकि हाफ वे थ्रू आ गए हैं हम, तो भाई आज की जो तारीख है बड़ी खूबसूरत है, यानी कि 18th ऑफ अगस्त 2026। तो क्या क्या है आज 18 तारीख को, और मंगलवार है, इट्स ट्यूसडे माय फ्रेंड। देखिए इसमें किसी का कोई दोष नहीं होता कि ओ हमें पता नहीं रहता, नहीं बिल्कुल आजकल का टाइम ऐसा है, डेट और डेज दोनों मिस हो जाते हैं। सो नेवर माइंड, जस्ट गो विद द फ्लो। अभी भी दिन बाकी है, कुछ मिस हो गया है, बर्थडे मिस हो गई है, एनिवर्सरीज मिस हो गई हैं, कोई स्पेशल आजकल तो बहुत होता है ना, हमारे फर्स्ट मीटिंग डे था आज, हमारा रोका हुआ था आज, हमारा ये हुआ था, माय गॉड, अनबिलीवेबल तरीके से चीज़ें सेलिब्रेट होती हैं आजकल। तो अगर आपकी भी कुछ ऐसी सेलिब्रेशन है, यानी कि पहली बार नज़रें मिली थी, या पहली बार आप हमारे घर में आई थी, आए थे, या पहली बार मैंने खाना बनाया था, सो कुछ कुछ कुछ कुछ, सो अगर आप लोगों के लिए वो स्पेशल है देन ट्राई एंड सेलिब्रेट दैट। कोई फीस आपकी पे करने वाली बची हुई है, कोई बिल देना है, अपना स्कूल की कोई फीस जमा करानी है, मोबाइल का बिल देना है, या फिर कुछ अपग्रेड कराना है ऑन दिस डेट। कहने का बात मेरा तात्पर्य यह है कि कोई भी चीज़ जो इस डेट से रिलेटेड है, जो आपकी डेली फंक्शनैलिटी को थोड़ा सा हैम्पर कर सकती है, सो प्लीज़ डू रिमेंबर। बाकी कलेक्टिवली बर्थडे एनिवर्सरी की विशेष तो हम बाय द एंड ऑफ द शो दे देंगे, लेकिन अभी के लिए एक चीज़ और बताऊँ आपको मैं, बिकॉज आप प्लान कर सकते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं ना कि कुछ कुछ ऐसे इवेंट मिल जाएँ, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएँ जहाँ हम जा सकें, पैसे भी ना लगें और मज़ा भी आ जाए। तो देखिए एक इवेंट जो मैं चाहती हूँ, पर्सनली मैं चाहती हूँ कि आप ज़रूर ज़रूर जाएँ, बच्चों को लेके जाएं, यंग बच्चों को खासकर लेके जाएं, बिकॉज क्या होता है ना, ये जो पर्टिकुलर मैं आपको नाम बताने वाली हूँ आप समझ जाएंगे, अमृत उद्यान इवेंट, ये बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि एक तो आपको राष्ट्रपति भवन के एक प्रांगण में जाने का मौका मिलता है, प्रांगण मतलब ये वहीं पे है ना, और दिस इज़ ओपन फॉर पब्लिक, बिकॉज ये बहुत खूबसूरत डिफरेंट वैरायटी के फ्लावर्स आपको यहाँ देखने को

चलते जाओगे तो आपको पता चलेगा, माइंड ब्लोइंग होता है अमृत उद्यान। तो ये 16 तारीख से 15 सितंबर तक चलेगा, सितंबर तक चलेगा। तो टाइमिंग रहता है 10 से 6 बजे तक। और अगर आप जाने की सोचें यहाँ पर, तो आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि यहाँ पे एंट्री फ्री है, लेकिन आपको ऑनलाइन फ्री बुकिंग कराना मैंडेटरी है, वो कराना पड़ेगा आपको। उनके आप राष्ट्रपति भवन विजिटर पोर्टल पे जाएं और वहाँ पे अपनी एंट्री कराएं, और बस एक बार एंट्री हो जाएगी तो एंट्री गेट है 35 नंबर, बस वहाँ से अंदर चले जाओ, फिर तो मज़े ही मज़े हैं। और लास्ट एंट्री होती है 5 बजे, तो आराम से अगर 5 बजे भी गुजरे तो 6 बजे तक आराम से एक घंटा यू कैन एन्जॉय द फ्लावर्स। और फिर वो जो कंप्लीट एक मैं बता नहीं सकती आपको, जो वहाँ की फील होती है ना, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। सो आई जस्ट वॉन्ट कि आप उसको इन्जॉय करें, एंड देन आके मुझे भी कभी बता दिया करो भाई, इतनी जगह मैं भेजती हूँ कि हम गए थे गीतांजलि, बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, हमारे बच्चों ने इन्जॉय किया, और हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसी चीज़ें भी बहुत बहुत ज़्यादा फन हो सकती हैं। जैसे कि शादी के कुछ पुराने गाने होते हैं, आज की डेट में अगर वो हम नॉर्मली गाएं तो बच्चों को समझ नहीं आते, लेकिन थोड़ा सा रिवैम्प करके अगर उनको गाना शुरू कर दें तो बच्चे बड़ा इन्जॉय करते हैं, एवरीबडी नोज। सो दिस इज़ द सेम सॉन्ग एंड आई एम गिविंग द सेम वाइब, सो इन्जॉय दिस सॉन्ग एंड इन्जॉय द वाइब।

0: ऑल राइट जी, बिल्कुल। देखिए ये गाने ना, ये आपकी प्लेलिस्ट में होने चाहिए। आपने मैसेजेस लिखा है कि गीतांजलि आप जो गाने ऐसे प्ले करती हैं ना, तो हम उसको अपनी प्लेलिस्ट में लिख लेते हैं, ताकि कोई शादी हो, फंक्शंस हो, उसमें हम अच्छे से इसका एक प्रोग्राम बना के और हम उसको प्रेजेंट कर सकें। सो वेल, आई एम रियली फ्लैटर्ड, थैंक यू सो मच। आपको एक तो आकाशवाणी से प्यार है, फिर आकाशवाणी के प्रेजेंटर से बहुत प्यार है, फिर जितनी भी चीज़ें हम आपको बोलते हैं आप उसको सीरियसली सुनते हैं ना, वो मुझे बहुत मज़ा आता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मानती हूँ मैं, गर्मी बहुत है, बिल्कुल। लिख रहे हैं लोग कि गर्मी ने अत चक्की हुई है, पंजाबी में बोलो बोल दिया, गर्मी ने अत चक्की हुई जी, और की सुनना चाहते हो दसो तुसी। मैं तो आई वुड लव टू डू द इंटायर शो इन पंजाबी, लेकिन आपको पता है ना, हम लोग दुनिया के कोने कोने में सुने जा रहे हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग हमें सुनते हैं। तो जो दो बहुत ही प्रिडोमिनेंट लैंग्वेजेस हैं ना, जो हिंदी मोस्टली सबको समझ आती है, अंग्रेज़ी भी आ जाती है, तो हम सारा उसको देखते हुए पूरी लैंग्वेजेस को उसी हिसाब से हम बात करते हैं ना। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर आप कर्पूरी ग्राम में रहते हैं और वहाँ से आने जाने में दिक्कत होती है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए, ख़ासकर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे बहुत कुछ करती है। तो नई दिल्ली से दरभंगा के बीच भी चलने वाली जो बिहार संपर्क क्रांति है ना, तो उसके एक्सप्रेस को वो कर्पूरी ग्राम में 2 मिनट का ठहराव देगी, मतलब 2 मिनट के लिए वहाँ रुकेगी। सोच के अजीब लगता है, कैसे लोग उतरेंगे, कैसे चढ़ेंगे, है ना। तो ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि ना रुकने से तो अच्छा है कि 2 मिनट ही रुक जाए। एक रे ऑफ लाइट तो है कि आप लोग फटाफट उसमें चढ़ सकते हैं, है ना। तो 7:33 यानी 7:33 पर कर्पूरी ग्राम स्टेशन पहुँचेगी, टाइम दिया हुआ है, और वहाँ से 7:35 पर रवाना भी हो जाएगी भाई। तो अगर आपको ये अरेंजमेंट अच्छा लगता है और आपको आने जाने में सुविधा लगती है अगर आप वहाँ रहते हैं, सो दिस इज़ अ गुड पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर यू। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये सुनकर। और जो अभी हमने गाना चलाया था ना, यमुना पार, तो मुझे याद आया, मैं कैसे ना बताऊँ भाई। देखिए, यमुना जी तो वैसे ही बहुत बहुत ही ज़्यादा पवित्र हैं और सबके दिलों के पास हैं। और दिल्ली में ना, यमुना के किनारे को जैसे साबरमती फ्रंट है ना, उसकी तरह विकसित किया जाए, इसकी प्लानिंग चल रही है। तो अगर किसी ने देखा हुआ है साबरमती फ्रंट अहमदाबाद में, तो उनको पता चलेगा कि कितना ब्यूटिफुल है वो। तो देखना है, अभी तो उसकी पूरी वो चल रही है, सर्वे चल रहा है कि कैसे बनाए जा सकते हैं, क्योंकि कालिंदी कुंज के पास है ना जी यमुना जी, उसके ये भी सोच रहे हैं कि उनके पास एक छठ का बहुत बड़ा घाट भी बनाया जाए, और नदी के किनारे सुंदर पार्क होने चाहिए, साइकिल ट्रैक होने चाहिए, खेलने के लिए मैदान होने चाहिए, मतलब एक बेसिकली अच्छा फैमिली सोशल प्लेस बन जाए। और आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी गुड स्टेप। अगर हो जाता है, कितना मज़ा आएगा ना, फैमिलीज़ बैठी हैं, पिकनिक मना रही हैं, बट प्लीज़ पिकनिक तो मना रही हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबली मना रही हैं, खाने के वहीं चिप्स के पैकेट वहाँ, पानी की बोतलें वहाँ, ये सब नहीं, अच्छे से। जब भी कोई डेवलपमेंट होती है ना, मेरे को ये सोच के डर लग जाता है कि कभी ऐसा ना हो इसमें कुछ गड़बड़ कर दें, मतलब गंदगी मचा दें, ख़राब कर दें। तो मतलब अगर हम पर्सनली बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली इन चीज़ों को करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा हमें देखने सुनने में। सो दीज आर ब्यूटिफुल इन्फॉर्मेशन, और मुझे लगा कि ये सुन के आपको भी खुशी होगी, और सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है आपकी अपने गज़ब की गीतांजलि सोनी को, क्योंकि आप हैं ऑन द स्टेशन ऑफ द नेशन 102.6 पर।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है, तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

Of course, let's talk about love, baby. And this love is for our nation. प्यार खाली ये नहीं होता कि माँ बाप से, गर्लफ्रेंड से, पति पत्नी से, बच्चों से. सबसे जो बहुत ही प्रोफाउंड और ऊंचा प्यार है ना, मुझे जो पर्सनली फील होता है, और ये कोई एग्जेजरेशन नहीं है, ये आपके देश के लिए है, फॉर योर नेशन. होता है ना, आप कुछ भी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई आपके देश के बारे में कुछ बोले, उसकी ब्यूटिफिकेशन के बारे में, उसकी सफाई के बारे में, या फिर कुछ भी बोले, चाहे आपको लगता है कि हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप जस्टिफाई करते हैं कि भाई हमारा जो देश है, इतनी करोड़ों की आबादी किस देश में, आप बताइए. उसके बाद इतने सारे लोग इकट्ठे मिल के रहते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, उनके मैनरिज़म्स की, उनके धर्म की, उनके फेस्टिविटीज़ की, और उस पर अगर थोड़ी बहुत हम मान सकते हैं कि कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं है कि कूड़ा कहाँ फेंकना है, कैसे करना है, तो उनको लगातार एजुकेट किया जाता है, डेफिनेटली एजुकेट किया जाता है. तो मुझे लगा कि एक बार फिर आपको बता देती हूँ, कुछ खास हो ही रहा है तो. क्योंकि देखिए, दिल्ली को स्वच्छ और कूड़ा मुक्त बनाने के लिए एक जन अभियान चलाया जा रहा है. अभी ये मंडे को हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा जी हैं, उन्होंने इसका अभियान शुरू किया, जिसका नाम है दिल्ली को कूड़े से आज़ादी, स्वच्छता अभियान 2026. इसमें पता क्या होगा ना, सबसे अच्छी बात है कि पहले तो सबको अवेयरनेस बार बार दिलाई जा रही है ना कि कैसे स्वच्छ रखना है, हम भी कितनी बार बताते रहते हैं आपको. अब इसमें क्या होगा कि 23 और 30 अगस्त और 6 और 13 सितंबर को ना, झुग्गी झोपड़ी और जो आसपास के ऐसे स्लम एरियाज़ हैं, उनका एक कलेक्टिवली सफाई करी जाएगी वहाँ पर. ये अभियान हमेशा, मतलब ये दे विल मेक श्योर कि अच्छे से वहाँ की सफाई हो. फिर हर शनिवार और रविवार

को जो सार्वजनिक शौचालय हैं उनकी सफाई होगी, और फिर 1 से 10 सितंबर तक जो पार्क में पत्ते वत्ते गिर जाते हैं ना सब, उनका ग्रीन वेस्ट वो हटेगा, और जितने भी वहाँ मतलब पार्क सराउंडिंग्स में हैं लोग नॉर्मली वहाँ पे बैठते तो हैं, बट ऑब्वियसली मैंने अभी बोला ना कि इतनी अवेयरनेस नहीं है कि चाहे वो हमारा इंडिविजुअल पार्क नहीं है लेकिन एटलीस्ट उसमें गंदगी ना फैलाएं, ये तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। खा के चीज़ें ना छोड़ें, सिगरेट ना पिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। और ऐसे ही जो 17 सितंबर को अस्पताल में अभियान चलेगा, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मेरा स्कूल सबसे सुंदर ये प्रतियोगिता होगी जिसमें बच्चों को सफाई के प्रति जागरूक कराया जाएगा, बताया जाएगा। और पता है जब भी स्कूल्स में ऐसी प्रतियोगिताएं होती हैं ना, बताते हैं बच्चों को कि स्कूल में आज इंस्पेक्शन, याद है अपने टाइम हमारे स्कूल में इंस्पेक्शन होती थी, हम लोग कितने सुंदर सुंदर चार्ट बनाते थे अपनी क्लास को, वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग क्लास अपने स्कूल को, बेस्ट लुकिंग स्कूल, और इसी बहाने बहुत सारी सफाई हो जाती थी, अच्छा लगता था बैठने में। और आपको पता है मज़े की बात क्या होती है ना कि जब आपके घर में मेहमान आते हैं ना तो एक एक्स्ट्रा आप कोशिश करते हैं ना कि घर चमके, खूबसूरत लगे, बस वो ही किया जा रहा है कि हमारे हमें एक मौका दिया जा रहा है कि ठीक है कुछ ऐसे डेज होते हैं जिसमें कुछ एक्स्ट्रा पुश हमें करना है, सो प्लीज़ गिव दैट एक्स्ट्रा पुश। मैं यही चाहती हूँ कि बड़ा मज़ा आए हम सबको, और देश को साफ रखना और देखना बिना कूड़े के, बिना गंदगी के, सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे ना, तो ये नहीं कहना पड़ेगा कि बाहर जाते हैं ना तो बड़ी सफाई है, अपने देश में रखोगे तो होगी ना।

हौली हौली नचनी तू, हौली हौली नचनी। देखिए नचना जरूरी है, हौली हौली नचो तुसी, जोर ला के नचो तुसी, नचना जरूरी है। चाहे वो एक्सरसाइज के तरीके से नाच लो, चाहे कैसे नाच लो, लेकिन दिस इज व्हाट इट इज। हम स्टूडियो में बैठे बैठे नाचते हैं जब ऐसे गाने प्ले होते हैं, एंड आपको पीछे से हंसी की आवाज़ आ रही हो कि जी ये बिल्कुल ये वो ही हैं जो कभी नहीं हारती, बिल्कुल आपकी भारती। ये आपके सारे मैसेजेस पढ़ने के लिए स्टूडियो में आ गई, और जब ये आई थी ना, इन्होंने बोला गर्मी से बुरा हाल है गीतांजलि, तो मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल, पता नहीं ये इंद्र देवता कहाँ बरस रहे हैं, सुनने में आता रहता है बरस रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अभी आप अपने जो मैसेजेस

बरसात है वो कर सकते हैं, वो आपके पूरे जो बारिश है ना उनको झेल लेंगी, पूरी रेनकोट पहन के आई हैं स्टूडियो में। फिलहाल से जिनके बर्थडेज हैं, एनिवर्सरीज हैं, अब वो टाइम आ गया कलेक्टिवली हम सबके लिए विशेस दे दें। सो जिनके बर्थडेज हैं उनको हैप्पी

तो रेनबो फैमिली इतनी बड़ी है तो सबके इंडिविजुअल नाम नहीं ले सकते ना आप लोग, दूर दूर से मैसेजेस भेज रहे हैं और जिनके एनिवर्सरीज हैं, ब्रावो ब्रावो ब्रावो, यू हैव मेड इट. ऐसे लगे रहिए, देखिए आपसी प्यार बहुत ज़रूरी है ना. सो खट्टा मीठा ये सब तो चलता रहता है, लेकिन हाउ यू आर डीलिंग विद लाइफ दैट गिव्स अस होप. और हम लोग बहुत ही प्राउड हैं कि हम इस भारत से हैं, वो लेगेसी है जिसमें सब कुछ भी हो जाए अपनी फैमिली को बेस्ट वैल्यूज़ देने की कोशिश करते हैं. फिलहाल आप जो मुझे वैल्यूज़ देते हैं अपने प्यार से, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ. और फिर से कहना चाहती हूँ कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर रखिए. अभी आप सड़कों पे उतरे हुए हैं, कुछ ऑफिस जा रहे हैं, कुछ ऑफिस आ रहे हैं, हाँ ये पकड़ा आपने जा रहे हैं. कितनी बार तो बता चुकी हूँ भाई, लोगों की शिफ्ट में भी जॉब होती है, कॉल सेंटर्स में लोग काम करते हैं, तो कई लोग अभी जा रहे हैं ना भाई. तो इसीलिए आप ट्रैफिक के रूल्स हैं उनको प्लीज़ अच्छे से मॉनिटर करें. बिल्कुल भी मत सोचे कि ये निकल गया बस मैं येलो लाइट से, नहीं रुक जाइए, इसका मतलब थांबा थांबा थांबा, रुकिए स्टॉप. तो ये बेसिक चीज़ें हैं. और मुझे पता है क्या लगता है ना, पेरेंट्स को एक फ़न गेम करना चाहिए बच्चों के साथ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट घर में कि आप नॉट दैट कि आप बॉसी हो के बच्चों को बताएं कि ओ माय गॉड तुम लोग को ये याद करना है कि ट्रैफिक के रूल्स क्या है. मेक इट अ नाइस फन गेम. बच्चों को बताएं कि अच्छा अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, मतलब कुछ ऐसे क्रिएटिव कीजिए, रेड कलर तो मुझे क्या करना है, बच्चे बोलेंगे रुकिए. सो बेसिकली आपको बचपन से ही चीज़ें इम्बाइब करनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो बेसिकली हम लोग सब एक ही तरीके से काम करते हैं कि अगर हम पे कुछ थोपा जाएगा तो मुश्किल है, प्यार से करेंगे तो कर लेंगे. फिलहाल अपनी गजब की गीतांजलि सोनी को आपको देनी होगी इजाज़त, आपसे मुलाकात करेंगे. फिलहाल मुझे जाने दीजिए आप, क्योंकि नेक्स्ट आपके पास मसाला बहुत सारा है, बिकॉज मैसेज मसाला मिक्स में भारती आपके साथ रहेंगी. खुश रहिए, खुश रखिए, अपना ध्यान रखिए और सबसे ऊपर अपने देश का ध्यान रखिए. जल्दी मिलते हैं.

नमस्ते इंडिया, आगे बढ़ने से पहले एक नज़र अब तक के मुख्य समाचार। 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन का नई दिल्ली में आयोजन संपन्न। पर्यावरण सहयोग मजबूत करने का विचार विमर्श हुआ। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े उत्तर प्रदेश और डॉ सतीश पूनिया पंजाब के प्रभारी बने। दिल्ली सरकार ने राजधानी में स्वच्छ और सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए कई नई पहल शुरू करने की घोषणा की है। सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग योजना के अंतर्गत लगभग 7,900 करोड़ रूपये के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अभियान में नई उपलब्धि, 2 करोड़ से अधिक बच्चों के आधार बायोमेट्रिक अपडेट किए गए। झारखंड के डुमरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जनमुक्ति परिषद के सब जोनल कमांडर रामदेव लोहरा समेत 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय सम्मेलन का 4वां दौर बृहस्पतिवार को सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। मौसम विभाग ने झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। और अंत में खेलों में, बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में उन्नति हुडा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंची हैं। उन्नति ने म्यांमा की थेत हतार थुजार को हराया है। तो ये थे अब तक के हमारे मुख्य समाचार, बने रहिए हमारे साथ।

ऑल राइट लिसनर्स, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ. और मैं कौन हूँ? जी हाँ, मैं हूँ आपकी वही आरजे भारती जो कभी नहीं हारती और चाहती है कि आप भी जिंदगी से कभी ना हारे. सब कॉज फेस लाइफ विद फुल पावर, और वो तो आपको हमेशा ही जिंदगी में करना है, क्योंकि आपका मेरा वादा है. इसी वादे के साथ बस यही इरादा रहता है हमेशा ही कि जितना हो सके हम आपको एंटरटेन कर सकें, जितना हो सके आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आ सकें, और जितना हो सके आपको नई नई बातों से, नई नई इन्फॉर्मेशन से भी अवगत करा सकें. तो इन्हीं सब का मिला जुला स्वरूप है, इन्हीं सब का मिला जुला एक मिक्स है हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स जो अलग अलग हमारे जो सुनने वाले हैं, हमारे श्रोता हैं, उनको पसंद आते हैं और उसमें आकर हमारे साथ जुड़ते हैं. लेकिन ये हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें सभी लोग बिना किसी स्पेशल यू नो इंटरेस्ट के जुड़ते ही जुड़ते हैं, क्योंकि उनके दिल की बातें हम सुनने की कोशिश करते हैं. और ये है हमारा वन एंड ओनली मैसेज मसाला मिक्स, और मैसेज मसाला मिक्स में आप सभी का दिल से वेलकम कर रही है आरजे भारती. काफ़ी टाइम से मैसेज मसाला मिक्स को हमने कुछ एक ऐसा फॉर्मेट दिया है जिसमें हम आपसे कोई ना कोई एक सवाल पूछते हैं, और सवाल से जुड़कर आपकी ज़िंदगी को हम कहीं ना कहीं टच करते हैं, और वहां से कुछ बहुत अच्छे आंसर्स जो हैं आपके मैसेजेस के रूप में निकलते हैं. और इसी तरीके से हम इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं. सो आज मैं बात करना चाहती हूँ डेफिनेटली प्रकृति के बारे में, जो एक तरीके से मेरा फेवरेट टॉपिक भी है. और प्रकृति ने, अगर हम सोचें ना, हमें कितना कुछ दिया है, और उसका एक बहुत ही स्पेशल पार्ट है जो हमारे अंदर भी है, और वो है 5 एलिमेंट्स. हम धरती की बात कर लें, हम पानी की बात कर लें, हम आग की बात करें, हवा की बात करें, या ऊपर एक बड़ा आसमान जो है उसकी बात करें, इन 5 एलिमेंट्स के बारे में आपने सोचा होगा और सुना भी होगा. लेकिन इन सब की थोड़ी थोड़ी झलक हमारे अंदर भी है, ये भी हम में से काफ़ी लोग, क्या मुझे लगता है सभी लोग जानते हैं. तो आप जब अपने आप को देखते हैं या अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, तो डेफिनेटली लगता होगा अरे इसमें तो बिल्कुल धरती जैसा ठहराव है, यू नो, बहुत कामनेस है, बहुत कूलनेस है, बहुत सहन शक्ति है. कोई पानी की तरह बस बहता ही जाता है, एक जगह पर टिकता नहीं है. कोई बिल्कुल आग की तरह जोशीला होता है और बहुत गुस्से वाला भी होता है. तो कहीं पर हवा की तरह कोई बिल्कुल लिबरल और आज़ाद रहना पसंद करता है, और कुछ लोग हैं पूरे आकाश की तरह ना रहस्यमयी जो होते हैं ना कलर्स जो होते हैं, मिस्टीफ कलर्स जो होते हैं, वो लेकर अपनी ज़िंदगी में रहते हैं. तो आज मैसेज मसाला मिक्स में आपके लिए यही सवाल है कि अगर आप एक एलिमेंट होते, यू नो, तो कौन से होते और क्यों, या आपको क्यों ऐसा लगता है कि आप इस एलिमेंट से बिल्कुल से मैच करते हैं. तो बस इसी क्वेश्चन के साथ बिल्कुल से आज की हमारी सीरीज़ को हम शुरू करते हैं. तो चलिए आज मैसेज मसाला मिक्स में इन्हीं एलिमेंट्स को हम थोड़ा सा तलाशते हैं, थोड़ा प्रकृति से जुड़ते हैं और थोड़ा खुद से जुड़ते हैं. और ये ट्रैक आप सबके लिए, और इस ट्रैक के उस पार बिल्कुल से आपके मैसेजेस को मैं साझा करूँगी, शेयर करूँगी आप ही के साथ. ठीक है.

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
3: पता का चाय, गजब का स्वाद।
4: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
5: ऑल राइट लिसनर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप हमारे साथ व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से इस नंबर से जुड़ सकते हैं 9868107070 9868107070। और आपको बता दें कि आज हम मैसेज मसाला मिक्स में बस हम आपकी प्रकृति जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं जिससे कहीं ना कहीं मिलकर हम लोग बने हैं ऐसा कहा जाता है, और ये 5 एलिमेंट से ही पूरी नेचर बनी है। तो आपका नेचर जो है वो किस एक एलिमेंट को इंडिकेट करता है या किस एक एलिमेंट से जुड़कर आप बने हैं। तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहला मैसेज आया है नरिंदर सोनी का देवीगढ़ पटियाला से। और नरिंदर सोनी देवीगढ़ का पटियाला से लिखा है कि गुड इवनिंग भारती, मैं तो बिल्कुल पानी की तरह हूँ और पानी के जैसा ही स्वभाव रखता हूँ। मैं कहीं एक जगह रुककर नहीं बैठता हूँ, चलने में ही मैं विश्वास रखता हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात है, एंड आई जस्ट होप कि आप अपने बारे में आपका जो रियल नेचर है ना उसको आज निकाल के मेरे सामने लेकर आएंगे।

सो यहाँ पे मैसेज प्रकाश गोगिया का है जागृति एनक्लेव से, कड़कड़डूमा दिल्ली से, हमारे रेगुलर लिसनर्स में से है, लिखा है कि मैं उन पांच तत्वों में से एक एलिमेंट हूँ, बाकी वो जो एलिमेंट है वो ऐसा है कि उसके बगैर बाकी एलिमेंट्स का कोई मतलब नहीं रह जाता, और ऐसा वो सोचते हैं, मैं नहीं सोचती हूँ। और उन्होंने लिखा कि वो एलिमेंट है हवा, जिसके बगैर हम एक क्षण भी जी नहीं सकते हैं। तो क्या प्रकाश जी आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास के लोग जो है वो आपके बिना बिल्कुल नहीं जी सकते हैं? अगर ऐसा है तो ज़रूर बताइएगा, और ये बहुत अच्छी बात है। ओके, सो अगला मैसेज जो है वो प्रवीण चौहान का है, खरगोन मध्य प्रदेश से, लिखा है कि मेरी जो प्रकृति है वो तो धरती के जैसी है, मैं बिल्कुल सहनशील हूँ, मजबूत हूँ और धरती से जुड़ा हुआ हूँ। और साथ ही लिखा है कि मेरी, उन्होंने अपनी कुछ राशि वगैरह के बारे में बात करी है, जिसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, बिकॉज हम किसी भी उस पे नहीं जा रहे हैं, हम बस ये जानना चाहते हैं कि आप अपने आप को किस तरीके से देखते हैं, बहुत गुस्सैल हैं, बहुत शांत हैं, हवा की तरह बहते हैं, लिबरल रहना चाहते हैं, किस तरीके से। सो अगला जो मैसेज मेरे पास आया है, किसी भी एक आधार से प्रगति जो है वो नहीं चलती है, इसमें सभी कुछ होता है, और अच्छा भी होता है, सही भी होता है और गलत भी होता है। बट सोनू जी, दिस वोंट बी द आंसर, बस आप मुझे ये बताइए कि आप अपने आप को किस एलिमेंट से जोड़कर देखते हैं। सो अगला जो मैसेज है वो भी कुछ ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा बात की गई है कि हमारा शरीर इन सब चीज़ों से मिलकर बना है, लेकिन मुझे बस ये जानना है कि आप किस चीज़ से मिलकर बने हैं। और ये हमारा पूरा वंजानी परिवार है, किशन जी, नीलम जी, स्वाति, किशोर, रेलवे कॉलोनी, आनंद विहार से। इसी के साथ अगले मैसेज की तरफ हम बढ़ें, तो ये जोया का मैसेज है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से, लिखा है कि मुझे आसमान बहुत पसंद है, मुझे बहुत खूबसूरत लगता है, मुझे भी आसमान बहुत खूबसूरत लगता है, दिन में कई रंग है और मैं बिल्कुल आसमान की तरह हूँ। लेकिन आपको क्यों लगता है कि आप आसमान की तरफ है, ये आपने नहीं लिखा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। वेल लिसनर्स, अगला जो मैसेज है मेरे पास, अर्जुन कौशिक एक नाम है मेरे बेटे का, ये लिखा है, ये लाइन मेरे बेटे की तरफ से है जो 13 साल का है, और उसने ये मैसेज किया है, मैंने बस लिखा है। सो ये जो मैसेज है रजनी शर्मा ने किया है अपने बेटे अर्जुन कौशिक के बिहाव पर बागपत से, और लिखा है कि जो जो प्रकृति ने हमें दिया है, जैसे पेड़ पौधे हैं या सुंदर वातावरण है या कोई भी चीज़ है, वो जो है हमें प्रकृति को हमें वापस ज़रूर लौटाना चाहिए और हमें वापस प्रकृति को देना चाहिए। वेल दैट इज़ फाइन रजनी जी, लेकिन आपका बेटा इतना छोटा है, 13 साल का, आपको क्या लगता है कि कौन सा एलिमेंट जो है उसमें सबसे ज़्यादा है या किस एलिमेंट से रिलेट करता है? वेल लिसनर्स, आपकी बातें जो है वो मेरे साथ इसी तरह से चलती रहेंगी, आपके मैसेजेस जो है वो इसी तरह से आते रहेंगे, लेकिन ये टाइम है कि जब हम एक म्यूजिकल ब्रेक तो ज़रूर लेते हैं। तो एक बहुत ही सुंदर ट्रैक है, आप सभी से सुनिए और मैं वापस आऊँगी आपके मैसेजेस के साथ। टेक इट अवे।

ऑलराइट लिसनर्स, सो आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मिसेज मसाला मिक्स में एलिमेंट्स के बारे में. वो पांच एलिमेंट्स जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन के लिए, हमारी प्रकृति के लिए बहुत ज़रूरी है. उन्हीं से मिलकर प्रकृति बनी है और उन्हीं से मिलकर कहीं ना कहीं हम भी बने हैं और उन्हीं से मिलकर हम सबका जो नेचर है ना वो बना है. तो आज उसी नेचर को जानने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके अंदर है. तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि ये एलिमेंट कैसा होता है, वो एलिमेंट कैसा होता है. हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको अगर एक एलिमेंट का नाम दिया जाए तो आप कौन से एलिमेंट हैं, यू नो. तो बस ऐसा ही कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं. एंड ट्रस्ट मी, बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास ऑलरेडी आ चुके हैं. सो यहाँ पे मैसेज है कि मैं खुद को अग्नि जितना गर्म जो है वो मानता हूँ. मुझे गुस्सा बहुत आता है और मुझे लगता है कि ये जो अग्नि वाला एलिमेंट है ना, ये सबसे ज़्यादा है हम सब लोगों के अंदर और इससे मेरा बहुत नुकसान भी होता है. इसीलिए मैं कोशिश ये करना चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन को धरती से, पानी से, यू नो, हवा की गति से और फिर आसमान, मतलब मैं इन सब एलिमेंट्स की तरफ जाना चाहता हूँ और ये जो एलिमेंट है ना अग्नि का, इसको मैं थोड़ा सा बैलेंस करना चाहता हूँ. तो अगर ये पांचों एलिमेंट्स हमारे अंदर बैलेंस हो जाते हैं, वैसे भी हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है. तो ये मैसेज हमारे पास आया विपुल गौड़ का और ये मैसेज इन्होंने शक्ति नगर दिल्ली से किया है जो कहीं ना कहीं मेरे घर के बहुत पास है. सो थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग मैसेज. और अगला मैसेज जो है वो हीरामणि वर्मा जी का है. ये भी हमारे रेगुलर लिसनर हैं दत्तरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से. लिखा है कि अगर मैं अपने आप को एक एलिमेंट में सोचूं कि मैं कौन सा एलिमेंट हूं, तो डेफिनेटली मैं जो हूं वो आसमान हूं, यानी कि गगन हूं, क्योंकि मेरा जो हृदय है वो बहुत विशाल है. आसमानी इंद्रधनुष और पक्षियों का उड़ान जो है जब मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत प्रेरित करता है. सो आई जस्ट होप लोग भी आपके बारे में ऐसा ही सोचते होंगे कि आपका जो हृदय है वो बहुत विशाल है और आप विशाल हृदय से अपने आसपास के लोगों को पूरी तरह से मदद करते होंगे. सो अगला जो मैसेज है वो मेरे पास है अंशी शर्मा का, हस्तिनापुर मेरठ से, हमारी बहुत ही प्यारी रेगुलर

लिसनर हैं और इन्होंने लिखा है कि कैसी हैं आप। थैंक यू सो मच, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और लिखा है कि आज के टॉपिक पर यही कहना चाहूँगी कि अगर मैं कोई एलिमेंट हूँ तो मैं छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाली हूँ, इसलिए मैं अग्नि एलिमेंट ही हूँ, मैं फायर ही हूँ। और मुझे इतना गुस्सा आता है कि मुझसे जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं होता है, मुझे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, लेकिन अपने अपनी आदत को काफ़ी हद तक सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं। और मुझे लगता है कि अग्नि एलिमेंट होना भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जहाँ पर उसमें गुस्सा है तो वहीं पर उसमें बहुत ज़्यादा पावर भी है, पावर कुछ कर गुजरने की, पावर आगे बढ़ जाने की। भाई रामलाल चंद्रवर्षी का मैसेज है आकली दीवान मध्य प्रदेश से, लिखा कि अगर मुझे मैं अपने आप को देखूं तो मैं जल हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि जल जो है, वाटर एलिमेंट जो है, वो कभी किसी से कुछ मांगता नहीं है, उल्टा सबकी प्यास बुझाने की कोशिश करता है और जीवन में हरियाली लेकर आता है। वेल आई जस्ट होप आप बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि यहाँ पर हम बिल्कुल ऐसे आंसर्स को तलाश रहे हैं जो आपके बारे में बिल्कुल सही सही बताते हैं। और जब हम अपने बारे में बताते हैं तो वो बताइए जो बाकी लोग भी आपके बारे में सोचते हैं। सो यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा मैसेज मेरे पास आया है, फातिम जी लिखा है, नमस्कार फातिम जी। और फातिम जी तो नहीं, लेकिन भारती जी ज़रूर यहाँ पर हैं। और ये मैसेज भेरूलाल वक्तरिया धाकड़ जी का है, जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से, ये भी हमारे साथ काफ़ी समय से जुड़े हैं। बहुत ही प्यारी बात इन्होंने लिखी है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। तो ये जो हमारा शरीर है ये 5 एलिमेंट से बना है, ऐसा हम मानते हैं। बट मुझे लगता है कि इसको मानने के पीछे बस यही है कि हमारी जो प्रकृति है वो भी 5 एलिमेंट्स से बनी है। सो लिखा है कि मैं तो बस जल की तरह ही रहने में विश्वास रखता हूँ, सबको तृप्त करो और सभी के जीवन में खुशहाली लेकर आओ। और साथ में लिखा है कि ये लोग सब, काफ़ी सारे लोग जो हैं, लगभग विभिन्न राज्यों के करीब 50 रेडियो श्रोता एक ही गाड़ी में इस समय बैठे हैं, क्या बात है। और सभी जो रेनबो को है वो रेनबो दिल्ली को सुन रहे हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए आप इसी तरह से हमें सुनते रहिए, और आपके मैसेजेस की पूरी बाढ़ आ रखी है यहाँ पर। आई जस्ट होप थोड़ी सी बारिश भी हो जाए दिल्ली में, वी आर जस्ट वेटिंग इसी बात पर। एक गाना जरूर हम सुनेंगे यहाँ पर, और उसके बाद डेफिनेटली आपके कुछ और मैसेजेस आप ही के साथ शेयर करेंगे। सो टेक इट अवे।

बागों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

ऑलराइट लिसनर्स, तो यहाँ पे सीधा बढ़ रहे हैं हम आपके मैसेजेस की तरफ, आपके संदेशों की तरफ, जो कि बहुत बहुत बहुत सारे हैं. और मुझे लगता है कि कोई ना कोई एलिमेंट डेफिनेटली हम सब में जो है वो सबसे ज़्यादा हाई लेवल पे होता है, हाई रेट पे होता है. सो एक मैसेज मेरे पास आया है राजस्थान जयपुर से, क्या बात है कन्हैया बंदा का. एंड साथ में एक और नाम लिखा है जावेद आलम मोहम्मद.

और रुखसार का नाम भी लिखा है और इतने सारे नाम आपने लिख दिए हैं, बट ये बात एक्चुअल में किसके लिए है? सो इन्होंने लिखा है कि मैं बहुत गुस्सैल हूँ और मैं मतलब बादलों की तरह गरजता हूँ। सो बादलों का एलिमेंट है मुझ में, नहीं बादलों का कोई एलिमेंट नहीं होता है लेकिन हाँ जब हमें गुस्सा आता है तो डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे हैं जो बादलों की तरह गरज पड़ते हैं, और बट वो इतने प्यारे होते हैं कि बस गरजते हैं, बरसते नहीं हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। बहुत अच्छा आपका मैसेज था, थैंक यू सो मच। एटलीस्ट आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमें जवाब दिया इस बात का, मुझे बहुत अच्छा लगा। पूजा का मैसेज है कर्नाटका से, लिखा है कि मैं बिल्कुल पानी की जैसी हूँ, वाटर एलिमेंट है, शांत रहती हूँ, बस अपना काम करती रहती हूँ, और कभी कभी होता है कि मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ तो एक उफान, मुझे लगता है कि एक उफान आ गया है और बस मुझे आगे बढ़ते जाना है। हाँ लेकिन मुझे पानी से वैसे डर भी लगता है, तो कभी तो मेरा शांत रूप होता है, कभी मेरा उग्र रूप होता है, लेकिन मैं चलती चली जाती हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मैं पानी जैसी हूँ। मुझे लगता है कि सबसे अच्छा अब तक का मैसेज ये था, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे से समझा, अपने आप को बहुत अच्छे से जाना और अपने अंदर का जो एक एलिमेंट है, एक भाव है, एक तत्व है, वो लेकर हमारे सामने आए। तो थैंक यू सो मच। अगला मैसेज राजेश कुमार मेहरा का है, बकानी खुर्द जिला झालावाड़ राजस्थान, क्या बात है। एंड इन्होंने पंचतत्व के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेकिन वो किस एलिमेंट से जुड़े हुए अपने आप को देखते हैं वो उन्होंने नहीं लिखा है। सो ये मैसेज मैं नहीं पढ़ने वाली हूँ, लेकिन मैंने पढ़ लिया है, आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। अगला मैसेज रंजीत कुमार का है, मंडल सिकटी अररिया बिहार से, मेरी प्रकृति जो है वो बिल्कुल आसमान के जैसी, आकाश के जैसी है, उसी से मेल खाती है। मुझ में सुनने और सहने का एक बड़ा विशाल हृदय है और मैं कोई भी बात को अपने दिल में दबाकर नहीं रखता हूँ, क्योंकि मौन जो है वो मुझे परेशान करता है। वेल, रंजीत कुमार जी, पता नहीं आप हमें अभी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, लेकिन मुझे आपकी ये जो बातें हैं ना बिल्कुल रिलेट करती हैं कि मैं भी कोई बात अपने दिल में दबाकर नहीं रख सकती, मौन जो है वो मुझे भी कहीं ना कहीं परेशान करता है, और इतना परेशान करता है कि मुझे कुछ ना कुछ करके ना अपने दिल की बात बाहर किसी न किसी के सामने बोलनी ही होती है। अगर कोई नहीं मिलता है तो मैं अपने मंदिर में जाकर बोल देती हूँ, बट आई हैव टू स्पीक इट आउट। सो मुझे लगता है कि इस मामले में आप और मैं बिल्कुल एक जैसे हैं। अगला मैसेज भुवनेश का है, अशोक विहार से, दिल्ली से, लगातार जुड़े रहते हैं हमारे साथ, स्पेशली मेरे प्रोग्राम में हमेशा उनका मैसेज आता है, कि लिखा है कि धरती जैसी पर्सनैलिटी है मेरी, लेकिन साथ ही मेरी जो थिंकिंग है वो काफ़ी लिबरल है, लेकिन मैं ईमानदारी से बताऊं तो मुझे मुश्किल होता है ये रिलेट करने में इस समय कि मैं कौन से एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता हूँ। वेल, कोई बात नहीं भुवनेश जी, ऐसा होता है क्योंकि हमारे अंदर एलिमेंट्स तो सारे ही हैं, अब कौन से एलिमेंट को हम ज़्यादा समझे कम समझे हम इसको पूरी तरीके से नहीं बयां कर सकते। बट दैट्स ओके, आपने मैसेज किया, रियली लाइक दैट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और इसी के साथ राजेश भल्ला जी, ये भी हमारे रेगुलर लिसनर हैं और इन्होंने बस एलिमेंट्स के बारे में लिखा है, लेकिन आप राजेश जी कौन से एलिमेंट से जुड़े हुए हैं ये तो आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। अगला जो मैसेज है ये भी हमारे रेगुलर लिसनर हैं, लिखा है कि हमारा जो स्वभाव है वो शीतल जल की तरह है, बिल्कुल शांत है, अपना रास्ता हम बनाते चले जाते हैं और दूसरे का रास्ता जो है वो कभी भी नहीं रोकते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उन्हीं रास्तों में से अपना रास्ता निकाल लें, क्या बात है। और ये मैसेज है हमारे मुखी परिवार का जो शांति नगर सोनीपत में रहते हैं। सो अगला मैसेज जो है, भारती जी आपने जो गीत सुनाया उसमें एक बहुत ही प्यारी लाइन है, पश्मीना धागों के संग, जो जम्मू कश्मीर का राजकीय प्रतीक चिन्ह है, तो बिल्कुल से है, और ये छोटी सी जानकारी गाना सुनने के बाद मुझे याद आ गई क्या बात है, चले कोई बात नहीं। सो अगला मैसेज जो है, हेलो मैडम जी, मैं शांत स्वभाव का व्यक्ति हूँ, खिलखिलाता रहता हूँ, और आप ही बता दो कि कौन सा एलिमेंट जो है वो मेरे साथ सूट करेगा। जर्मनी से मैसेज है सनी कपूर का अच्छा ये अब मुझे बताना पड़ेगा, आप शांत स्वभाव के हैं, शीतल जल की तरह हो सकते हैं जो आराम से बस बहता रहता है और अपना काम करता रहता है, बट आई एम श्योर कुछ और एलिमेंट्स तो आपके पास होंगे, और आपका काफ़ी मिसचीफ जैसे होते हैं ना, बहुत रहस्यमय लोग होते हैं, वैसे भी आप मुझे लग रहे हैं, क्योंकि आपने ये जो क्वेश्चन है ये सीधा मेरे ऊपर ही रखा है कि चलिए आप ही बता दीजिए। वेल, बातें जो है वो और होती रहेंगी, मैसेजेस जो हैं वो इसी तरीके से आपके साथ मैं शेयर करती रहूँगी। फिलहाल एक म्यूज़िकल ब्रेक आप सबके साथ, ये बहुत ही प्यारा ट्रैक मैं साझा कर रही हूँ, टेक इट अवे।

0: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी।

0: रेनबो पर।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,

ऑल राइट लिसनर्स, और यहाँ पे मेरे पास मैसेज आया है देहरादून से आलोक पवार और मिनी का, और लिखा है कि अच्छा ये जो आपने लिखा है कि मैं पानी की तरह हूँ शायद, क्योंकि हर बात पर भावुक हो जाता हूँ, ये आलोक के लिए है या मिनी के लिए है? प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर आपको लगे आप बता सकते हैं. सो पानी जो एक एलिमेंट है, वाटर जो एलिमेंट है, वो एक्चुअल में भावुक होता है. ये बहुत कम लोगों को शायद मालूम होगा. सो हर एलिमेंट का भी अपना एक स्वभाव होता है, उसका अपना एक रुख होता है, उसके अपनी स्पेसिफिकेशन होते हैं, उसके अपनी स्पेशलिटीज होती हैं. तो यस, डेफिनेटली पानी जो होता है वो भावुक होता है. सो देहरादून से मैसेज आलोक पवार का था, थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग दी मैसेज. अगला मैसेज जो है वो लिखा है कि आप कैसी हैं, नमस्कार मैडम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू. काम के सिलसिले में वक्त ही नहीं मिलता है, बिल्कुल सही बात है. और लिखा है कि अभी आपको सुन रहे हैं, और घर में रहने का समय मिलता है कभी कभी थोड़ा बहुत, और ऐसे करके उन्होंने बहुत सारी अपनी दिल की बातें लिखी हैं कि अपने काम से मुझे बाहर आना पड़ा, परदेश आना पड़ा, और अब मैं असम में नहीं बेंगलुरु में रहता हूँ काम के लिए. और मेरा जो मन है वो एकदम साफ है, मेरा दिल जो है वो एकदम साफ है. लखन गगई का मैसेज है असम से, क्या बात है, आई मीन दिस इज सो स्वीट. इतनी सारी बातें आपने मेरे साथ करी, मुझे बहुत अच्छा लगा. आई जस्ट होप कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपने हमारा टॉपिक नहीं सुना होगा. सो आज हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लखन गगई को अगर हम एक एलिमेंट की तरह देखें तो कौन सा एलिमेंट उनको लगता है उनके अंदर सबसे ज़्यादा है, वो पानी की तरह है या हवा की तरह है, ऐसा कुछ भी अगर आप में ऐसा शेयर करना चाहें तो ज़रूर ज़रूर ज़रूर कर सकते हैं. बट अच्छा लगा आपका मैसेज पढ़ के. अगला जो मैसेज है वो नागौर से है, राजस्थान से, और लिखा है कि मेरा जो एलिमेंट है ओके परिस्थिति में गाड़ी में सोकर की तरह, अच्छा गाड़ी में शॉकर्स की तरह जो हर परिस्थिति में अपने आप को ढालना जो है वो जानता है, और हर एक शॉक को एब्जॉर्ब करना जानता है, और मैं सबके साथ अच्छा बर्ताव करता हूँ, सबके साथ उठना बैठना अच्छा लगता है, लेकिन एलिमेंट कौन सा है वो आपने नहीं बताया. बट चलिए कोई बात नहीं, आपकी बात जो है ना गाड़ी में शॉकर्स की तरह हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा. अगला जो मैसेज है वो हमारे पास प्रदीप सलूजा का है, जनकपुरी नई दिल्ली से हमारे रेगुलर लिसनर है. लिखा है थैंक्स आचे भारती, थैंक्स टू यू टू. वैसे तो मैं पानी जैसा शांत रहता हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे को परेशान करे, इन्होंने वर्ड लिखा है पंगा, मेरे को परेशान करे तो मैं अग्नि का रूप ले लेता हूँ क्या बात है, मुझे लगता है कि ये बहुत लोग रिलेट करते होंगे कि चलो हमें शांति से अपना काम करने दो, लेकिन अगर नहीं करने दोगे तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी. तो आई थिंक ही इज़ लाइक दैट ओनली. और अगला जो मैसेज है वो बहुत बहुत बहुत बड़ा मैसेज आया है, बापरे, एंड बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मैं बहुत हंसमुख स्वभाव का हूँ, मुझे गुस्सा जो है वो बहुत कम आता है, यानी कि अग्नि का एलिमेंट मेरे अंदर बहुत कम है, और जब मुझसे शीत सहन नहीं होता है तब मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं. नियमित श्रोता हैं ये हर्ष, जिला पन्ना मध्य प्रदेश से. अच्छा आप इतने नियमित श्रोता हैं फिर भी आपने इतना लंबा मैसेज लिखा है, थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखते तो मुझे लगता है कि मैं इस मैसेज को पूरा जो है वो आप सबके साथ शेयर कर पाती. अगला जो हमारे पास मैसेज है, ये मैसेज प्लीज प्लीज प्लीज लिखा है, बट प्लीज प्लीज क्यों लिखा है, वीरेंद्र का मैसेज है अकोला महाराष्ट्र से, और लिखा है कि मुझे गुस्सा जो है वो बहुत ज्यादा आता है, और साथ में उन्होंने बहुत सारी फोटोग्राफ्स शेयर कर दी हैं, क्योंकि वो इस समय अपने खेतों में हैं, अपने खलिहानों में हैं, और बहुत सारी अपने बारे में बातें लिखी हैं कि मुझे अकेला रहना पसंद है, और साथ में गाने बहुत खूबसूरत आप प्ले कर रही हैं, और मेरा मैसेज जो है वो ज़रूर शामिल कीजिएगा, कर दिया जी कर दिया, और साथ में एक बहुत ही प्यारे पेड़ की पिक्चर भेजी है कि सीताफल का पेड़ है. बट आपको बता दें कि हम सिर्फ मैसेजेस को एंटरटेन करते हैं, फोटोग्राफ्स वगैरह को हम बिल्कुल एंटरटेन नहीं करते हैं, लेकिन आपने इतने प्यार से प्रकृति की पिक्चर्स जो हैं वो मुझे भेजी हैं, खेत की पिक्चर, सीताफल के पेड़ की पिक्चर, और हम प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप प्रकृति के साथ जो है वो बहुत करीब से जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ भी जुड़े, उसके लिए थैंक यू सो मच. वेल वेल वेल वेल, यहाँ पे मैसेजेस ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, और मुझे बहुत बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपके मैसेजेस को आपके साथ शेयर करना, लेकिन एक गाना तो यहाँ पे बनता है, तो एक ट्रैक आप सबके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, इसको सुनते हैं, और कुछ और मैसेजेस डेफिनेटली जितना टाइम बचेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी.

ऑल राइट लिसनर, सो बहुत ही थोड़ा सा समय इस समय मेरे पास बचा है, देखती हूँ कितने मैसेजेस मैं शेयर कर सकती हूँ। एक और बात है, कुछ लोग फिर से नाराज़ हो गए हैं, लेकिन मैं उनको बता दूँ कि जो क्वेश्चन, जो टॉपिक आज का है, अगर उसके बारे में आप बात नहीं करेंगे, उसके बारे में आप नहीं लिख पाएंगे, तो डेफिनेटली मैं उसको नहीं पढ़ पाऊँगी। इसके लिए रियली रियली रियली सॉरी, लेकिन नाराज़ मत होइए प्लीज़। दानिश का मैसेज है यहाँ पर, और बहुत प्यारी प्यारी उन्होंने बातें यहाँ पर लिखी हैं। सॉन्ग्स के बारे में लिखा है, आवाज़ के बारे में लिखा है, हमारे चैनल के बारे में लिखा है, और बहुत कुछ उन्होंने लिखा है। और जिस तरीके से उन्होंने लिखा है, कभी कभी जो हम लिखते हैं ना, उसमें भी एक भाव होता है, एक फीलिंग होती है, और वो पढ़ने में मुझे बहुत मज़ा आता है। सो थैंक यू सो मच दानिश, आप इस तरह से हमारे साथ जुड़े हैं। और गुड्डू धाकर जो है उज्जैन से लिख रहे हैं, उनका भी हमारे पास मैसेज आया है। उन्होंने जिस एलिमेंट की बात करी है, वो जल है, वो वाटर है, और साथ में लिखा है कि कभी कभी मुझे शांत रहना पसंद है, लेकिन कभी कभी मुझे अगर ज़रूरत पड़े तो मैं बहुत ज़्यादा रौद्र रूप भी जो है वो धारण कर लेता हूँ। सो चलिए कोई बात नहीं, दोनों एलिमेंट्स की आपने यहाँ पर बात करी है, पानी की बात भी करी है, और अग्नि की बात यानी कि हमारे जो फायर एलिमेंट्स है उसके बारे में भी बात करी है। शैलजा का मैसेज है, बहुत ही प्यारा सिंपल सा मैसेज है, निमराना से लिखा है कि आई लाइक एयर एलिमेंट, और मुझे लगता है कि ये जो एलिमेंट है ये सबसे ब्यूटीफुल एलिमेंट है।

वेल लिसनर्स, एक और लास्ट मैसेज मैं यहाँ पर लेती हूँ आपके साथ, और ये जो मैसेज है थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन उन्होंने सारे एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पर बात करी है और अपने लाइफ के बारे में भी बहुत सारी बात करी है, सो जिसको मैं पूरा नहीं पढ़ पाऊँगी, बट आपको बता देती हूँ कि सनी बिमला पोहाल का यहाँ पर, संध्या देवी का यहाँ पर मैसेज है अम्बाला कैंट से। सो थैंक यू सो मच एवरी वन आज हमारे साथ मैसेज मसाला मिक्स की हमारी आज की सीरीज़ में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें और इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहें, और आपको बता दें इस एक घंटे के बाद यानी कि 7 से 8 के बाद 8 बजे मैं वापस आपके पास लौटूंगी, आप ही के साथ इसी तरह से जुड़ूंगी एक और प्रोग्राम में। सो स्टे ट्यून, कीप लिसनिंग एंड कीप मैसेजिंग।

0: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
1: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगम पुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
0: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
3: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
4: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

नमस्ते इंडिया। आगे बढ़ने से पहले एक नजर अब तक के मुख्य समाचार। 12वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों के सम्मेलन का नई दिल्ली में आयोजन संपन्न। पर्यावरण सहयोग मजबूत करने का विचार विमर्श हुआ। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। विनोद तावड़े उत्तर प्रदेश और डॉ सतीश पुनिया पंजाब के प्रभारी बने। दिल्ली सरकार ने राजधानी में स्वच्छ और सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए कई नई पहल शुरू करने की घोषणा की है। सरकार ने राष्ट्रीय परमिट प्रणाली के अंतर्गत आने वाले बैटरी चालित, हाइड्रोजन ईंधन आधारित और प्राकृतिक गैस चालित वाणिज्यिक वाहनों की अनुमत आय में 5 वर्ष के विस्तार का प्रस्ताव किया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अभियान में बड़ी उपलब्धि, 2 करोड़ से अधिक बच्चों के आधार बायोमेट्रिक अपडेट किए गए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRB ने पिछले 1 साल के दौरान ऋण वितरण में काफी बढ़ोतरी दर्ज की है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि वर्ष 2025-26 के दौरान कुल बकाया ऋण में 10.3% की वृद्धि हुई है। झारखंड के डुमरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन

जन मुक्ति परिषद के सब जोनल कमांडर रामदेव लोहरा समेत 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय सम्मेलन का 4th दौर बृहस्पतिवार को सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। मौसम विभाग ने झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। और अंत में खेलों में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में उन्नति हुडा महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में पहुंची। उन्नति ने म्यांमा के थेत हतार थुजार को हराया है। तो ये थे अब तक के हमारे मुख्य समाचार, बने रहिए हमारे साथ।

ऑलराइट लिसनर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती है. जी हाँ, आपकी वही आरजे भारती जो कभी नहीं हारती और चाहती है कि आप भी जिंदगी से कभी ना हारें. यस ऑफ कोर्स, फेस लाइफ विद फुल पावर, और वो तो हमेशा हमें जिंदगी में करना ही पड़ेगा. और ये जो एक वादा है ना, जो मैंने आपसे लिया है, इस वादे के साथ बस मैं यही कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके हम आपको एंटरटेन कर सकें. मैं क्या, हमारा पूरा चैनल कोशिश करता है जितना हो सके हम आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आ सकें, और इन्हीं मुस्कुराहटों में बढ़ोतरी करता है हमारा ये वाला शो जिसका नाम है जी म्यूजिक मस्ती. या म्यूजिक मस्ती इसलिए है क्योंकि बैक टू बैक बहुत सारे ऐसे ट्रैक्स मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ, या हम इस शो में प्ले करते हैं, जिसमें बस आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकें, बहुत ज़्यादा फन कर सकें, और बहुत ज़्यादा फुट टैपिंग नंबर्स जो हैं वो हम आपके लिए प्ले कर सकें. समथिंग जिसमें बहुत सारी बीट्स हैं, बहुत सारे रिदम्स हैं, बहुत सारा म्यूजिक है, बहुत सारे ऐसे ऐसे लिरिक्स हैं कि आपके अंदर एक अलग लेवल की एनर्जी जो है वो लेकर आते हैं. एंड वाई दिस टाइम एनर्जी, बिकॉज इसी टाइम हमारी एनर्जी सबसे ज़्यादा ड्रेन हो जाती है और हमें लगता है कि नहीं, हमें थोड़ी और एनर्जी की ज़रूरत है. सो स्टे ट्यून, कीप लिसनिंग, आप हमें सुनते रहिए. जी हाँ, म्यूजिक मस्ती का सबसे पहला ट्रैक आप सबके लिए ये रहा.

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: भंगड़ा
1: shaking your boat.

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, 9 बज चुके हैं। आकाशवाणी रेनबो पर पेश हैं अभी तक के मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। भारत ने कहा, पर्यावरण संबंधी कार्रवाई विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हो। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए। विनोद तावड़े उत्तर प्रदेश और डॉ सतीश पुनिया पंजाब के प्रभारी बने। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS और नवोदय विद्यालय समिति NVS के लिए द्वितीय चरण के भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय परमिट प्रणाली के अंतर्गत आने वाले बैटरी चालित हाइड्रोजन ईंधन आधारित और प्राकृतिक गैस चालित वाणिज्यिक वाहनों की अनुमत आयु में 5 वर्ष के विस्तार का प्रस्ताव किया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अभियान में बड़ी उपलब्धि, 2 करोड़ से अधिक बच्चों के आधार बायोमेट्रिक अपडेट किए गए। भारत ने इंडोनेशिया में आए भीषण भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस कठिन घड़ी में भारत इंडोनेशिया के साथ एकजुटता से खड़ा है। ईरान ने दोहराया होमुर जल डमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। और खेलों में भारत की महिला डबल जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। 102.6 पर ये थे अभी तक के मुख्य समाचार।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपकी याद आती रही। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे दोस्त मुक्ति सैनी। कभी कभी जिंदगी में हमें बहुत आगे ले जाती है, नए लोग मिलते हैं, नई जगहें मिलती हैं, नई जिम्मेदारियां आती हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में कुछ पुराने पल हमेशा वैसे ही रह जाते हैं। कुछ चेहरे, कुछ आवाजें, कुछ बातें और कुछ रिश्ते जिन्हें हम चाहकर भी भूल नहीं पाते, और फिर अचानक किसी गाने की धुन सुनाई देती है, कोई पुरानी तस्वीर सामने आ जाती है, और फिर ऐसा लगता है कि किसी जान पहचान की बातों में कहीं दिल फिर से खो जाना चाहता है। और ये गुजरते हुए कुछ लम्हे हमें एहसास दिलाते हैं कि फिर से आपकी याद आती रही।

सामने तो वो ज़रूर आ जाएगी, कोशिश कीजिए। और अगर कोशिश की है ना, तो फिर जब यादों में वो है तो तस्वीर फिर ज़्यादा दूर नहीं है सामने आने से। मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे दोस्त मुक्ति सैनी। प्रोग्राम आपकी याद आती रही, 9 बजे से ये प्रोग्राम रहेगा ठीक 10 बजे तक आपके लिए। तो फिर कहीं और क्यों जाना है, हमारे साथ बने रहना है, जुड़े रहना है। आज का हमारा कार्यक्रम उन्हीं खूबसूरत यादों के नाम है, उन लोगों के नाम है जो आज हमारे पास हैं या हमसे दूर हैं, लेकिन हमारी यादों में हमेशा हमारे साथ हैं। तो आज आप भी हमें बताइए, किसकी याद आपको सबसे ज़्यादा आती है? क्या कोई पुराना दोस्त है, कोई ऐसा अपना जिसे बहुत समय से आपकी बात नहीं हुई है, कोई बचपन का साथी, या फिर कोई ऐसा रिश्ता जो वक्त के साथ दूर तो हो गया है लेकिन दिल से अभी तक दूर नहीं हुआ है? आज आप हमें कुछ ऐसी यादों के बारे में ज़रूर बताइएगा, और कुछ मैं भी ऐसी यादों के बारे में आपसे कहीं ना कहीं वो जुड़ी बातें करूंगी जिनकी याद आज भी दिल में ताज़ा है, आज भी जहन में लगता है कि बस आवाज़ दीजिए और वो सामने आ जाएंगे।

क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है? चलिए हम और आप मिलकर इस कारवा को आगे बढ़ाएंगे बहुत ही सुंदर गीतों के साथ में, और आपकी हमारी बातें यूं ही होती रहेंगी रात के इस पहर में। और रात का ये जो पहर है ना, ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत और बेहद ख़ास होता है, क्योंकि इस समय या तो हम अपने आप में रहना चाहते हैं या फिर सभी आवाज़ों सभी शोर से दूर होकर सिर्फ कुछ ऐसा सुनना चाहते हैं जो शायद कई बार हमारा दिल कहता है लेकिन हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आइए हम और आप मिलकर सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

0: देखिए अभी कहीं भी आपको खोना नहीं है, क्योंकि यादों में जो हम कैद हो चुके हैं और ये सुनहरी यादें ही हैं जो हमारे जीवन का कहीं ना कहीं साथी बन जाती हैं, उस अकेलेपन का साथी बन जाती हैं जब हमें लगता है कि बहुत सारे लोग तो हैं लेकिन वो नहीं जिसे हम चाहते हैं। तब वो ये यादें हैं जो हमें साथ देती हैं और हमेशा हमारे साथ रहने के लिए हर पल हमसे कुछ नहीं मांगती, सिर्फ एक कोना मांगती हैं और कुछ पल की खामोशी मांगती हैं। तो चलिए उसी खामोशी के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर वो खामोशी थोड़ी सी और लंबी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के साथ जल्द हाजिर होंगे आपके पास लेकर प्रोग्राम आपकी याद आती रही।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी

0: आया है बबई। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: राहुल अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
3: अरे सर फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
2: इम्पॉसिबल
3: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, एक घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
5: कोयल सी तेरी बोली,
6: आए हाय,
5: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
6: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
5: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
6: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
7: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
8: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल,
9: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

मसला ही इस दिल का है, और ये जो यादें हैं ना, इन्हें कैद कर लीजिए इन सुनहरे गानों को, इन प्यारे प्यारे गानों को जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ना, ख़ास चुनकर, वो बेहद आपके दिल के करीब होने वाले हैं 102.6। और साथ ही न्यूज़ ऑन AIR ऐप के ज़रिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे दोस्त मुक्ति सैनी, प्रोग्राम आपकी याद आती रही। कितना अजीब है ना, कभी कभी कोई गीत सिर्फ गीत नहीं रहता, वो हमारे जीवन का कोई पन्ना बन जाता है। उसे सुनते ही हमें याद आते हैं वो जगह, वो शाम, वो बारिश, वो दोस्त, या फिर किसी अपने के साथ बिताया हुआ वो छोटा सा पल। और शायद इसी को कहते हैं यादों की खूबसूरती। बस वही यादों की बात कर रही हूँ मैं। ये यादें कैद कर लीजिए, इन यादों को समेट के रख लीजिए, और अभी आप इन्हें याद करना चाहेंगे ना, याद नहीं आएंगी, लेकिन जब इन पलों की आपको याद करने की आप अकेलापन महसूस करेंगे, तब आपके सामने एकाएक सामने आ जाएंगी। कुछ रिश्ते वक्त के साथ ख़त्म नहीं होते, बस उनसे मुलाकातें कम हो जाती हैं, लेकिन यादें हमेशा साथ चलती हैं, साथ रहती हैं। कुछ लोगों को शौक भी होता है ना डायरीज लिखने का, किताबें लिखने का, और उसके अंदर वो अपने सारे जितने भी अच्छे पल हैं, या फिर जिन पलों से उन्होंने कुछ सीखा है, कोई साथ रहा या छोड़ के चला गया, वो सब उसमें लिखना चाहते हैं। तो बस हमारी भी एक किताब चल रही है, और उस पर हम लिखते चले जा रहे हैं उन पलों को। भले ही आप पलटना नहीं चाहते, लेकिन जब आप याद करेंगे ना, तो वो सब एक हकीकत बनकर आपके सामने आ खड़े होंगे, और वो ही एहसास होगा जो भले ही सच ना हो, लेकिन आप उसे जी जरूर लेंगे।

मैं हूं आपके साथ आपके आर्जी दोस्त मुक्ति सैनी। प्रोग्राम आपकी याद आती रही और कहीं ना कहीं कुछ यादें तो वाकई में आपके सामने भी एक तस्वीर बनकर आ चुकी होंगी और कहीं ना कहीं आप उसमें गुम हो जाना चाहते हैं, लेकिन ये गीत जो हैं वो झकझोर के आपको ले आते हैं सामने। तो बिल्कुल आपको हमारे साथ अभी बने रहना है क्योंकि बेहद खूबसूरत नगमे अभी मेरे पास हैं जो मुझे आपके हवाले करके जाने, और फिर आप ये ना कहें कि भाई मुक्ति प्रोग्राम में कुछ अधूरापन सा था। बिल्कुल अधूरापन यहाँ नहीं रहेगा क्योंकि मैं जितने भी गाने, जितने भी गीत, जितनी भी बातें आपसे कहना चाहता है ना ये दिल, आज वो सब आपसे कहकर जाऊंगी। कहते हैं ना, इंसान दूर हो सकता है, रास्ते अलग हो सकते हैं, बातें कम हो सकती हैं, लेकिन अगर रिश्ता सच्चा हो तो यादें कभी कम नहीं होती। कभी किसी की हंसी याद आती है, कभी किसी की कही कोई बात, कभी साथ बैठकर चाय पीना, और कभी बस यूं ही बिना किसी वजह के उसके साथ होना, मुस्कुरा देना। शायद ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत चीज़ यही है। हमारे पास कुछ ऐसे पल होते हैं जिन्हें हम दोबारा जी नहीं सकते,

लेकिन उन यादों पर मुस्कुरा सकते हैं, उदास हो सकते हैं और उन खूबसूरत लम्हों को फिर से अपने जहन में जी सकते हैं और आंखें बंद करके उन्हें खूब खूब खूब निहार सकते हैं। तो बस यही तो चाहिए ज़िंदगी में, जब कुछ भी लगे कि कोई भी आस बाकी ना हो, लेकिन वो एक इशारा, वो एक ख्वाब, वो एक याद सच बनकर जब हमारे सामने आ जाती है तो लगता है कि बस यही तो चाहिए था। उस खुदा से शायद कुछ और भी मांगते उस समय तो वो मिल जाता, लेकिन सुनहरी यादों से बढ़कर शायद ही इस जीवन में कुछ और हो सकता है। इसीलिए आपकी याद आती रही, आती रहेगी।

तो चलिए अब एक एक्सरसाइज करते हैं, कुछ थोड़ा सा काम किया जाए। जी हाँ, इतने प्यारे प्यारे गीत सुन रहे हैं, बातें कर रहे हैं और कहीं ना कहीं यादों में घूम रहे हैं, खो रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, अपने किसी भी खास इंसान को, किसी भी खास व्यक्ति को याद करना है और अपनी आंखें बंद कीजिए और एक खूबसूरत सा गीत मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ और कहीं ना कहीं इस गाने के ज़रिए आप उन्हें देखेंगे, उनकी यादों को देखेंगे, उनके साथ बिताए हुए उन लम्हों को देखेंगे जो आपने उनके साथ जिए हैं या फिर उनके साथ जीना चाहते हैं।

आ गए ना कहीं ना कहीं आपकी आंखों के सामने वो यादें, वो पल, वो शख्स, बिल्कुल आना ही था मैंने जो कहा था आपसे। जी हाँ, यादों का कारवा ही ऐसा है, जितना आप याद करते जाएंगे वो शख्स की तस्वीर, वो साक्षात कह सकते हैं कि सामने कहीं ऐसे लगता है कि आ ही जाते हैं। तो ज़िंदगी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है, लेकिन कभी कभी पीछे मुड़ कर देख लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि पीछे कुछ ऐसे खूबसूरत लोग और पल छूट जाते हैं जिन्हें हमारी ज़िंदगी की खूबसूरत यादों को बनाया है, संजोया है, और आज एक खूबसूरत याद बनकर हमारे सामने हैं। तो आप अपना ख्याल रखिए, लेकिन मैं आपसे मिलूंगी जल्द ही, ठीक 11 बजे प्रोग्राम रंगे महफिल में। तब तक लिए खूबसूरत सा गीत आपके लिए, मेरा बहुत फेवरेट है, चलिए हम और आप मिलकर साथ में सुनते हैं।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, 11 बज चुके हैं। आकाशवाणी रेनबो पर पेश हैं अभी तक के मुख्य समाचार। 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों को सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई गई। भारत ने कहा, पर्यावरण संबंधी कार्रवाई में विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के लिए नए प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए। विनोद तावड़े उत्तर प्रदेश और डॉ सतीश पुनिया पंजाब के प्रभारी बने। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिस कर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने परीक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया। एजेंसी ने करीब 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल करने का फैसला किया है। निर्वाचन आयोग ने आज देश की चुनाव व्यवस्था पर एक तथ्य पत्र जारी किया है। आयोग ने बताया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं व विधान परिषदों के चुनाव स्वतंत्र संवैधानिक संस्था भारत निर्वाचन आयोग की देखरेख में होते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अभियान में बड़ी उपलब्धि, 2 करोड़ से अधिक बच्चों के आधार बायोमेट्रिक अपडेट किए गए। सरकार ने देश में घरेलू पाइप नेचुरल गैस यानी PNG कनेक्शन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। ये योजना अगले महीने की पहली तारीख से लागू होगी। वित्त मंत्रालय के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB ने ऋण वितरण में मजबूत वृद्धि दर्ज की है। RRB की कुल बकाया ऋण 10.3% बढ़कर करीब 5,78,000 करोड़ रुपए हो गया। ईरान ने फिर दोहराया है कि अमेरिका के साथ सभी शर्तें पूरी होने तक होमुर्ज जल डमरू मध्य बंद रहेगा। और पुरुष क्रिकेट में गोल्ड टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ भारत की पकड़ मजबूत। 372 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका ने चौथे दिन 4 विकेट पे 84 रन बनाए। आकाशवाणी रेनबो पर ये थे अभी तक के मुख्य समाचार।
0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

नमस्कार दोस्तों, रात की इस खूबसूरत पहर में आपका स्वागत है आकाशवाणी रेनबो के खास कार्यक्रम रंगे महफिल में। रात के 11 बज चुके हैं और शहर की रफ्तार अब कुछ धीमी पड़ने लगी है। दिन भर की

भागदौड़ के बाद यही तो वो वक्त है जब इंसान अपने दिल के सबसे करीब होता है। कुछ यादें होती हैं जो दिन के उजाले में कहीं पीछे छूट जाती हैं, मगर रात की खामोशी में फिर से हमारे पास चली आती है। तो आइए आज के इस महफिल में उन्हीं यादों, उन्हीं एहसासों और उन्हीं अनकही जज्बातों को गजल की आवाज़ देते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान मुक्ति और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंगे महफिल आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर, और साथ ही लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए हम पहुँचते रहेंगे सीधा आप तक।

गजल महज चंद अशर का नाम नहीं है। गजल तो दिल की वो आवाज है जिसे हम अक्सर कह नहीं पाते। कभी किसी की याद बनकर, कभी किसी की जुदाई बनकर और कभी किसी की मोहब्बत बनकर गजल हमारे सामने आती है। इसकी खूबसूरती यही है कि ये एक शेर को सुनकर हर इंसान अपनी एक अलग कहानी याद कर सकता है। किसी को पहली मोहब्बत याद आती

दी है, किसी को बिछुड़ चुका कोई अपना और किसी को वो शख्स जो आज भी दिल के किसी कोने में खामोशी से मौजूद है। शायद इसीलिए गजल सुनते ही हमें लगता है कि शायर ने हमारे दिल की बात कह दी है।

कार्यक्रम रंगे महफिल में मैं हूँ आपके साथ आपकी आर्ज दोस्त मुक्ति सैनी। और इस महफिल में आपका साथ बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये महफिल ख़ास हमारे लिए है। रात का अपना ही एक मिजाज होता है। दिन में जो बातें हमें मामूली लगती हैं वही रात में बहुत गहरी महसूस होती हैं। किसी की आवाज़, किसी की मुस्कुराहट, किसी मुलाकात की याद, सब कुछ जैसे फिर से ज़िंदा हो उठता है। और जब इन यादों के साथ कोई खूबसूरत गज़ल सुनाई दे तो दिल कुछ पल के लिए उसी दुनिया में लौट जाता है जहाँ मोहब्बत थी, इंतज़ार था और किसी के आने की उम्मीद थी। तो आज की इस रात को थोड़ा और हसीन बनाते हैं गज़ल के साथ और पढ़ाते हैं रंगे महफिल की इस खूबसूरत सी रात को और आगे, ताकि ये रात आपको सुकून और एक बहुत ही प्यारी सी नींद दे जाए, उन सुनहरी यादों में आपको लपेट के रखे, आपको उस महफिल में सजा के रखे कि आपको लगे बस यही वो पल है जो दिन भर की आपाधापी, दिन भर की भागदौड़ के बाद चाहिए था। यही वो पल है जो आपको मिल रहा है आकाशवाणी रेनबो 102.6 के माध्यम से।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: कुछ रिश्ते मुकम्मल होकर भी याद रहते हैं और कुछ रिश्ते अधूरे रहकर उम्र भर हमारे साथ चलते हैं। मोहब्बत की सबसे खूबसूरत और शायद सबसे दर्दनाक बात यही है कि हर कहानी का अंत मिलन नहीं होता। कभी कोई बहुत करीब होकर भी दूर हो जाता है, कभी कोई दूर रहकर भी दिल के बेहद करीब रहता है। कुछ नाम हम अपनी जुबान से लेना छोड़ देते हैं मगर दिल उन्हें भूल नहीं पाता। ऐसी ही अधूरी मोहब्बत, ऐसे ही खामोश इंतजार और ऐसे ही अनकहे अफसानों को आवाज देती है गजल। इसी एहसास के साथ सुनते हैं हमारी अगली पेशकश, अगली गजल, प्रोग्राम रंगे महफिल में।

दोस्तों, रेडियो की महफिल की खूबसूरती सिर्फ आवाज़ों में नहीं बल्कि उन लोगों में भी होती है जो रात के इस सन्नाटे में हमें सुन रहे होते हैं। हो सकता है इस वक्त कोई अपनी बालकनी में बैठा हो, कोई सफ़र में हो, कोई अपने कमरे की खामोशी में गज़ल सुन रहा हो, और शायद कोई ऐसा भी हो जो किसी खास शख्स को याद करते हुए इस कार्यक्रम से जुड़ा हो। अगर आज की कोई ख़ास गज़ल आपको किसी अपने की याद दिला दे तो उस याद को रोकिएगा मत। कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें भुलाने के बजाय महसूस करना चाहिए, क्योंकि यादें तकलीफ ज़रूर देती हैं मगर कभी कभी यही यादें हमारे दिल को सबसे ज़्यादा खूबसूरत भी बना देती हैं और उस ओर मोड़ देती है जहाँ ये दिल सुकून पाता है, आराम पाता है।

आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर मैं हूँ आपके साथ आपके आरजी दोस्त मुक्ति सैनी। प्रोग्राम रंगे महफिल में, और ये महफिल सजी है खास आपके लिए, क्योंकि दिल से दिल तक हम सीधा पहुँचते हैं आप तक, और म्यूजिकली और दिल से दिल तक हमारा ये कारवां आप तक पहुँचता रहता है। रात के इस पहर में बहुत सी बातें ऐसी हैं, बहुत सी गजलें ऐसी हैं जो आपके दिल तक पहुँच रही होंगी। कुछ आपको एक अलग ही दुनिया में ले जा रही होंगी, कुछ आपके दिल तक छू रही होंगी, और आपको लग रहा होगा बस यही पल है जो हमें जीना है, यही वो लम्हा है जो इस समय हमें चाहिए था। तो इन्हीं यादों में आप बिल्कुल अपने आप को बैठा के रखिए। इसी महफिल, ये महफिल हर रोज़ सस्ती है आपके लिए। आप चाहें तो 102.6 के माध्यम से या फिर लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपना साथ बना कर रख सकते हैं, क्योंकि ख़ास आकाशवाणी रेनबो के ये सभी कार्यक्रम आपके लिए बेहद ख़ास होते हैं। तो अब बात करते हैं आगे। शायरी की दुनिया भी कितनी अजीब है। कुछ शब्द बहुत छोटे होते हैं मगर उनके मायने बहुत गहरे। एक शेर कभी चेहरे पर मुस्कान ले आता है तो कभी आंखों में नमी। कभी वो हमारी पहली मुलाकात याद दिलाता है और कभी किसी आखिरी विदाई की तस्वीर आंखों के सामने ला खड़ी करता है। गजल की यही नफासत है जो सीधे दिल से बात करती है और दिल तक पहुंचती है। तो चलिए शब्दों की इसी खूबसूरत दुनिया में एक और कदम बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक ऐसी गजल जिसमें मोहब्बत भी है, तन्हाई भी है,

और यादों की एक खूबसूरत सी महक भी है। जी हाँ, गज़लें वो कह देती हैं, वो बता देती हैं, वो जज्बात बयां कर देती हैं जिन्हें आप बहुत सारे शब्दों में पिरोना चाहते हैं, बहुत लंबी कहानियों में बताना चाहते हैं और एक लंबा समय आप ले लेते हैं। लेकिन अगर आप किसी को कोई बात कहना चाहते हैं, अपने दिल का हाल बताना चाहते हैं, अपने दिल का राज बताना चाहते हैं, तो ये गज़ल है ना आपके लिए। आप जुड़ जाइए इस प्रोग्राम में और जोड़ लीजिए उन्हें भी इस प्रोग्राम में। फिर देखिए कितनी वो अनकही बातें हैं या कितनी वो कह चुकी बातें हैं जो अब तक उनके दिल तक नहीं पहुंची, लेकिन इस प्रोग्राम के माध्यम से वो उनके दिल तक ज़रूर पहुंचेगी, ज़रूर पहुंचेगी।

रात अब धीरे धीरे अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रही है, लेकिन महफिल का रंग अभी बाकी है। कुछ गजलें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनने के बाद हम कुछ देर तक खामोश रहना चाहते हैं, शायद इसीलिए कि उनके शब्द हमारे भीतर कहीं गहरे उतर जाते हैं। तो अगर आज की इस महफिल ने आपको किसी की याद दिलाई, किसी पुराने एहसास को जगाया या दिल में छुपी कोई बात फिर से महसूस कराई है, तो समझिए हमारी ये रात सफल हुई। क्योंकि रंगे महफिल का मकसद सिर्फ गजल सुनाना नहीं, बल्कि गजल के बहाने आपके दिल तक पहुंचना है, और उम्मीद है कि आपके दिल तक ज़रूर पहुंचे होंगे। जगजीत सिंह की आवाज़ में एक और गजल आपके लिए।

दिल में तो बहुत प्यार है आपके लिए। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की महफिल को इजाज़त देने का वक्त आ गया है। मगर याद रखिएगा, रातें ख़त्म होती हैं, महफिलें ख़त्म होती हैं, मगर अच्छे गीत, खूबसूरत गज़लें और सच्चे एहसास कभी ख़त्म नहीं होते। वो हमारे साथ रहते हैं, कभी किसी धुन में, कभी किसी शेर में, और कभी किसी खामोश याद की तरह। आप जहाँ भी हैं, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार की इज्जत करते रहिए, क्योंकि आपकी हमारी मुलाकातें होती रहेंगी आकाशवाणी रेनबो पर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेडियो चैनल है। आइए अब सुनते हैं मुख्य समाचार। 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। भारत ने कहा, पर्यावरण संबंधी कार्रवाई में विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चुनाव प्रणाली की सराहना की। भारत ने कहा कि देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता वैश्विक स्तर पर स्थापित। अमेरिकी राष्ट्रपति की सराहना के बाद निर्वाचन आयोग ने चुनाव व्यवस्था पर तथ्य पत्र जारी किया है, चुनाव व्यवस्था से जुड़ी विस्तारित जानकारी दी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का बड़ा फैसला, करीब 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। प्रश्न पत्रों की जांच के लिए 4 स्तर की व्यवस्था लागू की जाएगी। सरकार ने देश में घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। ये योजना अगले महीने की 1 तारीख से लागू होगी। वित्त मंत्रालय के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी ने ऋण वितरण में मजबूत वृद्धि दर्ज की है। आरआरबी की कुल बकाया ऋण 10.3% बढ़कर करीब 5,78,000 करोड़ रुपए हुआ है। ईरान ने दोहराया, अमेरिका के साथ सभी शर्तें पूरी होने तक होमुज जल डमरू मध्य बंद रहेगा। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी आई अरुमेनग्याम को खेल मंत्रालय ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की। और पुरुष क्रिकेट में गोल टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ भारत की पकड़ मजबूत, 372 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका ने चौथे दिन 4 विकेट पर 84 रन बनाए। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है और श्रोताओं वक्त है कार्यक्रम जीरो आर शो का। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरती।

के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

शुदा, आप सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम जीरो आर शो। और इस वक्त हमें एक मैसेज मिला है, हमारे नियमित श्रोता हैं जयंत जी, जो कि हमें पटना से सुन रहे हैं। जयंत जी ने अपनी पसंद का एक खूबसूरत गीत सुनने की फरमाइश की है, और ये गीत है फिल्म चांदनी से।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: पता है शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आज के बाद कोई सपना ही नहीं देखूंगी।
1: बस हार गई। अपनी आंखें बंद करो संजना। बंद आंखों से इंसान सिर्फ सपना ही नहीं, कभी कभी उस हकीकत को भी देख लेता है जिसे खुली आंखें कभी नहीं देख पाती। आंखें बंद करो संजना।

मुख्य समाचार। 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। भारत ने कहा, पर्यावरण संबंधी कार्रवाई में विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चुनाव प्रणाली की सराहना की। भारत ने कहा, देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता वैश्विक स्तर पर स्थापित। अमेरिकी राष्ट्रपति की सराहना के बाद निर्वाचन आयोग ने चुनाव व्यवस्था पर तथ्य पत्र जारी किया, चुनाव व्यवस्था से जुड़ी विस्तारित जानकारी दी। गृहमंत्री अमित शाह दक्षिण भारतीय मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज से 2 दिवसीय चेन्नई दौरे पर रहेंगे। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का बड़ा फैसला, करीब 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। प्रश्न पत्रों की जांच के लिए 4 स्तरीय व्यवस्था लागू होगी। सरकार ने देश में पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। योजना अगले महीने की 1 तारीख से लागू होगी। वित्त वर्ष 2025-26 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ऋण वितरण में मजबूत वृद्धि दर्ज की। कुल बकाया ऋण 10.3% बढ़कर करीब 5,78,000 करोड़ रुपए हुआ। ईरान ने दोहराया अमेरिका के सभी शर्तें पूरी होने तक होमरूच जल डमरू मध्य बंद रहेगा। भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी आई अरुण मयंगम को खेल मंत्रालय ने अर्जुन पुरस्कार लाइफटाइम से सम्मानित करने की घोषणा की। नीदरलैंड्स में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी मुकाबले में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। और पुरुष क्रिकेट में गोल्ड टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ भारत की पकड़ मजबूत। 372 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका ने चौथे दिन 4 विकेट पर 84 रन बनाए। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का FM 10 चैनल है और श्रोताओं वक्त है कार्यक्रम सुहानी रात का। और इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरती।

जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले, जब दिल मिले तब गुल खिले, जब गुल खिले तब दिल मिले मिले।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: संजना, संजना।
1: I'm sorry, मैंने आपको पहचाना नहीं।
2: तेरे लबों पे इनकार है, मेरे लबों पे इकरार है। हाँ यही तो है सब निशानियां,

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे सुहानी रात कार्यक्रम, और आइए अब सुनते हैं मुख्य समाचार। 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। भारत ने कहा, पर्यावरण संबंधी कार्रवाई में विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जाँच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चुनाव प्रणाली की सराहना की। भारत ने कहा, देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता वैश्विक स्तर पर स्थापित। अमेरिकी राष्ट्रपति की सराहना के बाद निर्वाचन आयोग ने चुनाव व्यवस्था पर तथ्य पत्र जारी किया, चुनाव व्यवस्था से जुड़ी विस्तारित जानकारी दी। गृहमंत्री अमित शाह दक्षिण भारतीय मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज से 2 दिवसीय चेन्नई दौरे पर रहेंगे। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का बड़ा फैसला, करीब 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। प्रश्न पत्रों की जाँच के लिए 4 स्तरीय व्यवस्था लागू होगी। सरकार ने देश में पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। योजना अगले महीने की 1 तारीख से लागू होगी। वित्त वर्ष 2025-26 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ऋण वितरण में मजबूत वृद्धि दर्ज की। कुल बकाया ऋण 10.3% बढ़कर करीब 5,78,000 करोड़ रुपये हुआ। ईरान ने दोहराया अमेरिका के साथ सभी शर्तें पूरी होने तक होमुर्ज जल डमरू मध्य बंद रहेगा। भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी आई अरुण मेनेगियम को खेल मंत्रालय ने अर्जुन पुरस्कार लाइफटाइम से सम्मानित करने की घोषणा की। पुरुष क्रिकेट में गोल में भारत और श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट मैच के 4थे दिन का खेल आज आगे बढ़ेगा। 372 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका ने 4थे दिन 4 विकेट पर 84 रन बनाए, भारत जीत से 6 विकेट दूर। और नीदरलैंड्स में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी मुकाबले में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, वक्त है हमारे कार्यक्रम भुलाए ना बने, और इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरती।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
1: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

एफएम रेनबो पर प्रस्तुत हैं अभी तक के मुख्य समाचार। 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। भारत ने कहा, पर्यावरण संबंधी कार्रवाई में

विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चुनाव प्रणाली की सराहना की। भारत ने कहा, देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता विश्व स्तर पर स्थापित। अमेरिकी राष्ट्रपति की सराहना के बाद निर्वाचन आयोग ने चुनाव व्यवस्था पर तथ्य पत्र जारी किया है। चुनाव व्यवस्था में जुड़ी विस्तृत जानकारी दी। गृह मंत्री अमित शाह दक्षिण भारतीय मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज से 2 दिवसीय चेन्नई दौरे पर रहेंगे। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का बड़ा फैसला। करीब 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। प्रश्न पत्र की जांच के लिए 4 स्तरीय व्यवस्था लागू होगी। देश ने पुनः सुन लीजिए, सरकार ने देश में पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। योजना अगले महीने की 1 तारीख से लागू होगी। वित्त वर्ष 2025-26 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ऋण वितरण में मजबूत वृद्धि दर्ज की। कुल बकाया ऋण 10.3% बढ़कर करीब 5,78,000 करोड़ रुपए हुआ। ईरान ने दोहराया, अमेरिका के साथ सभी शर्तें पूरी होने तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा। भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी आई अरुमेन्नायगम को खेल मंत्रालय ने अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम से सम्मानित करने की घोषणा की। पुरुष क्रिकेट में गाल में भारत और श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट मैच के 4th दिन का खेल आज आगे बढ़ेगा। 372 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका ने 4th दिन 4 विकेट पर 84 रन बनाए। भारत जीत से 6 विकेट दूर। और नीदरलैंड में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी मुकाबले में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ये थे FM रेनबो इंडिया पर अभी तक के मुख्य समाचार।

आपकी वाणी आकाशवाणी। प्रस्तुत है मिडनाइट मेलोडी नॉनस्टॉप फिल्म संगीत का कार्यक्रम, आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: है बब्बल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: करती हूँ कि तुम्हें मुझसे इश्क है?
1: मुझे शर्म आती है।
0: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
1: I love you.
2: Yeah!

एफएम रेनबो इंडिया पर प्रस्तुत हैं अभी तक के मुख्य समाचार। 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। भारत ने कहा, पर्यावरण संबंधी कार्रवाई में विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चुनाव प्रणाली की सराहना की। भारत ने कहा, देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता वैश्विक स्तर पर स्थापित। अमेरिकी राष्ट्रपति की सराहना के बाद निर्वाचन आयोग ने चुनाव व्यवस्था पर तथ्य पत्र जारी किया है। चुनाव व्यवस्था से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी। गृह मंत्री अमित शाह दक्षिण भारतीय मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज से 2 दिवसीय चेन्नई दौरे पर रहेंगे। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का बड़ा फैसला, करीब 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.8% किया। मई में यह अनुमान 6.7% था। वित्त वर्ष 2025-26 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ऋण वितरण में मजबूत वृद्धि दर्ज की। कुल बकाया ऋण 10.3% से बढ़कर करीब 5,78,000 करोड़ रुपए हुआ। सरकार ने देश में पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। योजना अगले महीने की 1 तारीख से लागू होगी। ईरान ने दोहराया, अमेरिका के साथ सभी शर्तें पूरी होने तक हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद रहेगा। भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी आई अरुमन्यागम को खेल मंत्रालय ने अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम से सम्मानित करने की घोषणा की। पुरुष क्रिकेट में गोल में भारत और श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल आज आगे बढ़ेगा। 372 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका ने चौथे दिन 4 विकेट पर 84 रन बनाए। भारत जीत से 6 विकेट दूर। नीदरलैंड में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी मुकाबले में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। और फुटबॉल में 135वें डूरंड कप के पहले सेमीफाइनल में आज कोलकाता में ईस्ट बंगाल FC का मुकाबला स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली से होगा। ये थे अभी तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम सारेगामा

ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने

0: इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस बार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
1: ये नदिया जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होठों को भिगो लूंगी। समझूंगी तुम्हारे होठों को छू लिया।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे

0: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना 4:00 से 5:00 तक।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

पेश हैं अभी तक के मुख्य समाचार। 12वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न हुआ। भारत ने कहा, पर्यावरण संबंधी कार्रवाई में विकासशील देशों की जरूरतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के विरुद्ध हिंसा के आरोपों की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करेगा। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय चुनाव प्रणाली की सराहना की। भारत ने कहा, देश की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता वैश्विक स्तर पर स्थापित। अमेरिकी राष्ट्रपति की सराहना के बाद निर्वाचन आयोग ने चुनाव व्यवस्था पर तथ्य पत्र जारी किया है। चुनाव व्यवस्था से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी। गृह मंत्री अमित शाह दक्षिण भारतीय मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज से 2 दिवसीय चेन्नई दौरे पर रहेंगे। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का बड़ा फैसला, करीब 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 6.8% किया। मई में यह अनुमान 6.7% था। वित्त वर्ष 2025-26 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने ऋण वितरण में मजबूती वृद्धि दर्ज की। कुल बकाया ऋण 10.3% से बढ़कर करीब 5,78,000 करोड़ रुपए हुआ। सरकार ने देश में पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। योजना अगले महीने की 1 तारीख से लागू होगी। ईरान ने दोहराया अमेरिका के साथ सभी शर्तें पूरी होने तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा। भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी आई अरुमन्नायगम को खेल मंत्रालय ने अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम से सम्मानित करने की घोषणा की। पुरुष क्रिकेट में गाल में भारत और श्रीलंका के बीच पहले टेस्ट मैच के 4th दिन का खेल आज आगे बढ़ेगा। 372 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका ने 4th दिन 4 विकेट पर 84 रन बनाए। भारत जीत से 6 विकेट दूर। नीदरलैंड में FHI पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी मुकाबले में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। और फुटबॉल में 135वें डूरंड कप के पहले सेमीफाइनल में आज कोलकाता में ईस्ट बंगाल FC का मुकाबला स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली से होगा। ये थे अभी तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी। हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना, माफ कीजिएगा अर्चना।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।